सुप्रभात। मीडियम वेव 330.03 मीटर अर्थात 909 किलोहर्ट्स और FM 100.1 मेगाहर्ट्स पे आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र आप सभी श्रोताओं का स्वागत करता है। आज दिन सोमवार, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की तृतीया तिथि, तदनुसार 22 जून सन 2026 है। स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:55:47 हो चुके हैं। प्रारंभ होती है हमारी आज की प्रातःकालीन प्रसारण सभा।

0: ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। कुछ क्षणों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसी भी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति उसके समुद्री सामर्थ्य पर काफी हद तक निर्भर करती है, इसलिए भारत अपनी समुद्री क्षमताओं को लगातार मजबूत कर रहा है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर स्वदेश निर्मित 3 युद्धपोतों को भारतीय नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने ये बात कही। इनमें अत्याधुनिक स्टील्थ फ्रिगेट INS दूनागिरी, संशोधक और अग्रय शामिल है।
2: भारत अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, नदी जलमार्गों का विस्तार कर रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है, सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 को वैश्विक उत्सव बनाने के लिए विश्व भर के लोगों का आभार व्यक्त किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये देखकर खुशी होती है कि योग सभी क्षेत्रों और विभिन्न देशों के लोगों को स्वस्थ जीवन तथा कल्याण की साझा खोज में एकजुट कर रहा है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि योग दिवस आने वाले समय में अधिक लोगों को दैनिक जीवन में योग अपनाने के लिए प्रेरित करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के श्योपुर स्थित कूनो राष्ट्रीय उद्यान का दौरा करेंगी। वे चीता पुनर्स्थापन परियोजना की प्रगति की समीक्षा करेंगी और चीतों की देखभाल करने वाले वनकर्मियों तथा स्थानीय लोगों से बातचीत करेंगी। राष्ट्रपति ने कल चीता कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का दौरा किया। इस दौरान अधिकारियों ने उन्हें बताया कि इस समय देश में 52 चीते हैं, जिनमें 49 कूनो राष्ट्रीय उद्यान में हैं। भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की 2 दिवसीय बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में साइबर सुरक्षा, डिजिटल खतरों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े जोखिमों तथा अन्य गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। प्रतिनिधि आतंकवादी रोधी सहयोग और सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी के सुरक्षित

0: उपयोग से जुड़े मुद्दों पर की भी समीक्षा करेंगे। बैठक में भारत, ब्राजील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स के 11 सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुख भाग लेंगे। चीन के विदेश मंत्री वांग यी भी इसमें शामिल होंगे। नीट यूजी पुनर्परीक्षा कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच संपन्न हो गई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने बताया कि देश भर के 5,440 जबकि विदेश के 14 केंद्रों पर 20 लाख से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। ये परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी सहित 13 भाषाओं में आयोजित की गई। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कक्षा 12वीं के अंकों के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के परिणाम जारी करने शुरू कर दिए हैं। बोर्ड के अनुसार 87% से अधिक आवेदनों के परिणाम घोषित किए जा चुके हैं, जबकि शेष परिणाम जल्द ही जारी किए जाएंगे। तमिलनाडु के पेरियापालियम स्थित सी फूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव के कारण 7 लोगों की मौत हो गई और 70 से अधिक श्रमिक प्रभावित हुए हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 6 विकेट से हरा दिया। मैनचेस्टर में ग्रुप ए मुकाबले में भारत के 159 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए दक्षिण अफ्रीका ने 5 गेंद शेष रहते 4 विकेट पर 161 रन बना लिए। दक्षिण अफ्रीका की मारिजान केप ने नाबाद 81 रन की शानदार पारी खेली और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। फीफा फुटबॉल विश्व कप में ग्रुप जी के मुकाबले में ईरान और बेल्जियम के बीच मैच बिना किसी गोल के ड्रॉ रहा। वहीं ग्रुप एच में स्पेन ने सऊदी अरब को 4-0 से हराकर अगले दौर में जगह बनाई। आज ग्रुप एच में उरुग्वे और केप वर्डे के बीच मुकाबला 2-2 गोल से बराबर रहा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी गोरखपुर के इस विशेष भक्ति संगीत कार्यक्रम वंदना में आपका हार्दिक स्वागत है। ईश्वर के प्रति श्रद्धा, भक्ति और समर्पण की भावनाओं से ओतप्रोत इस प्रस्तुति में हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ ऐसे मधुर भजन और भक्ति गीत जो मन को शांति और आत्मा को आनंद से भर देते हैं। आइए प्रभु स्मरण के साथ आरंभ करते हैं आज की संगीत यात्रा।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी गोरखपुर से भक्ति संगीत कार्यक्रम वंदना। भक्ति के सुर जब हृदय में गूंजते हैं तो मन में विश्वास और सकारात्मकता का संचार होता है। इसी भाव के साथ प्रस्तुत है अगली भक्तिमय रचना।

0: वंदना कार्यक्रम में वक्त हो चुका है एक छोटे से अंतराल का।
1: जिंदगी बहुत कीमती।

0: उससे तो सस्ता ही है।
1: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टीसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
2: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की DVDs और CDs हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
3: कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक, आकाशवाणी से विज्ञापन के अंदाज अनेक।
4: अपनी बात को आसाम से गुजरात तक पहुंचाने की हो बात, आकाशवाणी से बेहतर भला कौन देगा आपका साथ।
3: देश के कोने कोने में विज्ञापन बजा, अपनी बनाओ पहचान, केंद्रीय विक्रय एकांश मुंबई ने यह राह बनाई आसान।
4: देश के सबसे बड़े नेटवर्क आकाशवाणी पर विज्ञापन प्रसारित करने के लिए ऑल इंडिया रेडियो की सिंगल विंडो बुकिंग CSU मुंबई से संपर्क करें।
3: हमारा फोन नंबर है 2202407 या 2288 6016 और STD कोड 022।
4: आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारा मेल आईडी है csumumbai@gmail.com।
0: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
1: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, आम सरिये के मुकाबले लगभग 10% ज्यादा भूकंप रोधक, RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
2: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
5: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
6: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे TV चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
5: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट,
6: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
5: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की,
6: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
5: For details, log on to www.ddindia.com।
7: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी गोरखपुर से भक्ति संगीत कार्यक्रम वंदना। भक्ति का रस मन को निर्मल बनाता है और जीवन में आशा तथा उत्साह का संचार करता है।

0: गंदगी को दूर भगाएं, साफ सफाई को अपनाएं।
1: अखबार, प्लास्टिक, कागज सबका सही ढंग से निपटान, स्वच्छता का संदेश फैलाएं, यही है हमारी पहचान।
0: स्वच्छता है जीवन की धारा, साफ सफाई संकल्प हमारा।
1: स्वच्छता अभियान सबकी जिम्मेदारी, स्वस्थ जीवन की है ये तैयारी।
2: आशा है कि भक्ति और संगीत से सजी यह प्रस्तुति आपको पसंद आई होगी और आपके मन में शांति तथा सकारात्मक ऊर्जा का संचार हुआ होगा। इसी शुभकामना के साथ भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना यहीं समाप्त होता है।

0: ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। आइए सुनते हैं आज का चिंतन बिंदु।
1: भारत उत्सवों का देश है। यहाँ के सभी उत्सव किसी न किसी तरह शास्त्र और लोक दोनों से जुड़े हुए हैं। अन्य देशों की तरह यहाँ के उत्सव बाह्य आचरण की तरफ नहीं, बल्कि मनुष्य की अंतः साधना की तरफ, भीतरी तहों की तरफ ले जाते हैं। तभी ये उत्सव मनुष्य के उल्लास का प्रतीक बन पाते हैं, उसके मन की भावनाओं को चित्रित करते हैं। हमारे यहाँ वर्ष में दो नवरात्र माने गए हैं और दोनों नवरात्रों में शक्ति की उपासना की जाती है, किंतु देखा जाए तो नवरात्र का समापन जिस दिन होता है, वे दोनों किसी न किसी तरह राम के चरित्र से जुड़े हुए हैं। चैत्र का नवरात्र, जिसे हम वासंतिक नवरात्र कहते हैं, उसमें 9 दिन देवी की उपासना के बाद राम के जन्म का उत्सव मनाया जाता है। और विजयादशमी के त्यौहार में, जो हमारे शारदीय नवरात्र का त्यौहार है, उत्सव है, इसमें 9 दिन देवी की उपासना करने के बाद हम राम के विजय का उत्सव मनाते हैं। कथा आती है कि 9 दिनों तक रावण से युद्ध करने के बाद राम की सेना पराजित होती रही। ऐसा लग रहा था राम को कि सीता हरण का भाव उनके भीतर से खत्म नहीं होगा, सीता का उद्धार नहीं हो सकेगा। सीता के उद्धार के लिए, रावण के पराभव के लिए राम ने शक्ति की उपासना की। यह भी कथा आती है कि शक्ति की उपासना के लिए जो कमल पुष्प 108 संख्या में थे, जिन्हें राम ने एकत्रित किया था, उनमें से जब राम ने ध्यान लगाया, अपनी आंखें बंद की, तो एक कमल पुष्प गायब हो गया। ध्यान के बाद राम की जब आंखें खुली, तो उन्हें एक पुष्प कम दिखाई दिया और लगा

0: कि अब यह साधना यह अनुष्ठान पूरा नहीं होगा। उन्हें याद आया कि उन्हें कौशल्या राजीव नयन कहा करती थीं। उन्होंने अपनी एक आँख को कमल पुष्प की तरह अर्पित करने के लिए अपनी आँख निकालने का मन बनाया। तत्क्षण देवी प्रकट हुईं और उन्हें आशीर्वचन दिया देवी ने कि राम विजयी होंगे, रावण पराजित होगा, रावण का पराभव होगा। यह कथा शास्त्रों में भी वर्णित है। यह कथा भारतवर्ष के लोक जीवन में भी चित्रित है, कही जाती है और हिंदी के यशस्वी कवि महाप्राण निराला ने इसी को आधार बनाकर राम की शक्ति पूजा जैसा काव्य रचा। यह कथा सिर्फ इतना ही नहीं कहती, यह कथा यह भी कहती है कि बाहर चाहे लाख अंधेरा हो, बाहर पराजय की भीषण आंधी चलती हो, बाहर आपदाओं का समुद्र गरजता हो, यदि मनुष्य के भीतर की अंतः शक्ति, उसका आत्मविश्वास, उसका आत्मबल न झुका तो कहीं कुछ ऐसा नहीं है जो अवरोध बनकर खड़ा हो और वह कायम रहे, उसका समाधान न हो सके, उसे खत्म न किया जा सके। बस आवश्यकता है तो भीतर की अंतः शक्ति की साथ ही साथ आवश्यकता है तो प्रयोजन के मंगलमय होने की, आवश्यकता है तो शुभ की। यही यह बात भी ध्यान देने लायक है कि जीवन में संसार में ऐसा नहीं कहा जा सकता कि झूठ नहीं है, असत्य नहीं है, बुराई नहीं है। हर जगह सत्व ही सत्व है, हर जगह प्रकाश ही प्रकाश है, अंधकार का नाम ही नहीं है। जीवन में सब सत्य है, सब सच्चा है। लेकिन बात यहाँ यह आती है कि मनुष्य अपने विवेक का प्रयोग करते हुए किसे चुनता है, वह सत्य को चुनता है या असत्य को। विजयादशमी का पर्व, विजयादशमी का त्योहार यह बताता है कि विजय सत्य की होती है, असत्य की नहीं। विजय मंगल की होती है, अमंगल की नहीं। विजय जय वस्तुतः भाव जो मंगलमय होता है, कल्याणकारी होता है, उसी की होती है, अकल्याणकारी की, अहित की, अशिव की नहीं। यही मनुष्यता की पहचान है और यही तत्व मनुष्य को देवत्व से जोड़ देता है।
1: अभी आप सुन रहे थे चिंतन बिंदु, आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है। आइए सुनते हैं आज प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों के विवरण। रामचरित मानस से संगीतमय पाठ का समय होगा प्रातः 6:40 पर।

दिल्ली से समाचारों का समय होगा 6:55, 7 बजे और 7:05 पर। प्रादेशिक समाचार का समय होगा 7:20 पर। प्रातः 7:31 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम पूर्वा सुहानी। इसके अतिरिक्त फिल्म संगीत के कार्यक्रमों का प्रसारण समय रहेगा 8:45 पर हिट्स सुपर हिट्स, पूर्वान 10:05 पे 11:30 और अपराह्न 12:30 पर

सुगम संगीत का आप आनंद लेंगे प्रातः 9:50 और अपराह्न 12:55 पर।

लोकगीतों का समय होगा प्रातः 11:05 पर और सायं 6:45 पर। शहरी महिलाओं का कार्यक्रम नारी जगत प्रसारित होगा अपराह्न 1:45 पर। युवा साथियों के कार्यक्रम युवाणी का समय है सायं 5:05 पर।

किसान भाइयों का कार्यक्रम खेती किसानी आप सुनेंगे दोपहर 1:50 पर, सायं 5:35 पर आप सुनेंगे ग्राम जगत और 6:10 का समय होगा कार्यक्रम खेती बारी का। ये थे आज प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रम।

श्री राम लक्ष्मण और सीता को वन के मार्ग पर छोड़ अयोध्या लौटते हुए सुमंत्र को वैसा ही पश्चाताप हो रहा है जैसा किसी विवेकशील वेद के ज्ञाता तथा साधु चरणों में आसक्त व्यक्ति के मन में हो सकता है यदि वो धोखे से मदिरा पान कर ले। भयानक संताप के कारण उनकी आंखों में आंसू उमड़ आए हैं, दृष्टि मंद हो गई है, कानों से कुछ भी सुनाई नहीं देता और बुद्धि काम नहीं कर रही, होठ सूख गए हैं, जीवा काम नहीं करती। आसन्न मृत्यु के इन सभी लक्षणों के बावजूद प्राण शरीर नहीं छोड़ रहे, क्योंकि मन के किसी कोने में ये आशा बंधी है कि 14 वर्ष बीत जाने पर श्री राम अयोध्या लौटेंगे और एक बार फिर उनके दर्शन हो सकेंगे। परंतु रह रहकर वो इस सोच से व्याकुल होते हैं कि अयोध्या लौटकर वो लोगों को क्या उत्तर देंगे। उन्हें अकेला वापस आया देख कोई उनसे बात भी नहीं करेगा। शोक में डूबी माताओं का सामना वो किस प्रकार कर सकेंगे। आशंकाओं में डूबते उतराते सुमंत्र अयोध्या के समीप पहुंचे, किंतु दिन के प्रकाश में नगर में प्रवेश करने का उन्हें साहस नहीं हुआ।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें रविवार सुबह 11 बजे मन की बात।
1: स्वच्छता से बदले अपना परिवेश, स्वच्छ जीवन की ओर एक कदम बढ़ाएं।
2: स्वच्छता अपनाएं, स्वास्थ्य का आनंद उठाएं।
1: गंदगी हटाओ, स्वच्छता लाओ, स्वस्थ जीवन जीने का सपना साकार करो।
2: स्वच्छता की आदत स्वस्थ जीवन की शुरुआत।
3: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbharatiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbharatiarchives.co.in। देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
4: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
5: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH service DD Direct Plus की हो तो

0: इसमें मिलेंगे टीवी चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
1: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट।
0: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
1: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की।
0: दूरदर्शन डीटीएच सर्विस डीडी डायरेक्ट प्लस।
1: फॉर डिटेल्स लॉग ऑन टू www.ddindia.com।
2: कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक, आकाशवाणी से विज्ञापन के अंदाज अनेक।
3: अपनी बात को आसाम से गुजरात तक पहुंचाने की हो बात, आकाशवाणी से बेहतर भला कौन देगा आपका साथ।
2: देश के कोने कोने में विज्ञापन बजा, अपनी बनाओ पहचान, केंद्रीय विक्रय एकांश मुंबई ने यह राह बनाई आसान।
3: देश के सबसे बड़े नेटवर्क आकाशवाणी पर विज्ञापन प्रसारित करने के लिए ऑल इंडिया रेडियो की सिंगल विंडो बुकिंग CSU मुंबई से संपर्क करें।
2: हमारा फोन नंबर है 2202407 या 2288 6016 और STD कोड 022।
3: आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारा मेल आईडी है CSU मुंबई @gmail.com।

0: स्वच्छ भारत सुंदर भारत स्वच्छता शब्द भर नहीं सक्रिय सचेत कर्म है।
1: ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। कुछ क्षणों में आप सुनेंगे क्रमशः संस्कृत हिंदी और अंग्रेजी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: বৈশ্বিক উৎসব ইয়ম আকাশবাণী সম্প্রতি বার্তাঃ শ্রূয়ন্তাম প্রবাচিকা সাধনা শর্মা। अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अवदत् यत् आधुनिके विश्वस्मिन् सामुद्रिक शक्तिः राष्ट्रस्य सामरिक प्रभावस्य प्रमुखा आधारा अस्ति। कोलकातायां श्यामा प्रसाद मुखर्जी जलपोत स्थात्रे तेन स्वदेश निर्मिताः त्रयः नौ सैनिक पोताः आईएनएस दुनागिरिः, आईएनएस संशोधकः, आईएनएस अग्रयश्च भारतीय नौसेनायै समर्पिताः।
1: INS विक्रांत से लेकर आज तक की यात्रा केवल नए युद्ध पोतों की यात्रा नहीं है, यह भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता की यात्रा भी है। इनका निर्माण भारत में हुआ है, इनकी डिजाइन भारत में तैयार हुई है, इनके निर्माण में भारतीय उद्योगों की प्रतिभा लगी है और यही नए भारत की सबसे बड़ी ताकत है।
0: तेन उक्तं यत् एतेषां पोतानां निर्माणे द्विशताधिकाः सूक्ष्म लघु मध्यमोद्यमाः योगदानम् अकुर्वन्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी साम्प्रतिकवर्षस्य अन्ताराष्ट्रिय योग दिवसस्य वैश्विक उत्सवरूपेण आयोजनार्थं विश्वस्य जनान् प्रति कृतज्ञतां व्यक्तवान्। तेन उक्तं यत् योगः विभिन्नेषु देशेषु समाजेषु च स्थितान् जनान् स्वास्थ्यकल्याणयोः समानलक्ष्ये संयोजयति। प्रधानमन्त्री एतत् विश्वस्य कृते प्रेरणादायकम् अस्ति इति अवदत्। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः कुनो राष्ट्रिय उद्यानस्य भ्रमणं करिष्यति। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः मध्यप्रदेशस्य कुनो नेशनल पार्क इत्यस्य राष्ट्रिय उद्यानस्य भ्रमणं करिष्यति। सा प्रोजेक्ट चीता इति योजनायाः प्रगतेः समीक्षां करिष्यति, तथा च व्याघ्रपालकैः वनकर्मचारिभिः स्थानीयजनैश्च सह संवादं करिष्यति। अधिकारिणाम् अनुसारेण भारते सम्प्रति 500+ व्याघ्राः सन्ति, तेषु अधिकांशतः कुनो राष्ट्रिय उद्याने वसन्ति। भारतम् अद्यारभ्य नवदिल्ल्यां ब्रिक्स राष्ट्राणां राष्ट्रिय सुरक्षा परामर्शदातॄणां द्विदिवसीय सम्मेलनस्य आयोजनं करोति। अस्य अध्यक्षताम् अजीत डोभालः करिष्यति। नीट यूजी 26+2000 पुनर्परीक्षा सुदृढ सुरक्षा व्यवस्थायां सुसम्पन्ना। राष्ट्रिय परीक्षा

0: स्वच्छता से बदले अपना परिवेश, स्वच्छ जीवन की ओर एक कदम बढ़ाए।
1: स्वच्छता अपनाएं, स्वास्थ्य का आनंद उठाएं।
0: गंदगी हटाओ, स्वच्छता लाओ, स्वस्थ जीवन जीने का सपना साकार करो।
1: स्वच्छता की आदत, स्वस्थ जीवन की शुरुआत।
2: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbharatiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbharatiarchives.co.in।
3: ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे केंद्र से।
4: चलिए सुबह का पहला संकल्प ये लें कि मैं दुनिया में किसी से नहीं डरूंगा, केवल भगवान से डरूं। मैं किसी के प्रति बुरा भाव न रखूं, मैं किसी के अन्याय के समक्ष झुकूं नहीं, मैं असत्य को सत्य से जीतूं और असत्य का विरोध करते हुए मैं सभी कष्टों को सह सकूं। महात्मा गांधी।
5: मन का धर्म है मनन करना, मनन में ही उसे आनंद है, मनन में बाधा प्राप्त होने से उसे पीड़ा होती है। रविंद्रनाथ ठाकुर।
4: अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है। सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। एपीजे अब्दुल कलाम।
5: जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह विद्या वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी।
4: आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं, सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। एपीजे अब्दुल कलाम। निरंतर विकास जीवन का नियम है और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा अपनी रूढ़िवादिता को बरकरार रखने की कोशिश करता है, वह खुद को गलत स्थिति में पहुंचा देता है। महात्मा गांधी।
5: मानव का दानव होना उसकी हार है, मानव का महामानव होना उसका चमत्कार है और मनुष्य का मानव होना उसकी जीत है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
6: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं विकास राय। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महोबा और हमीरपुर में विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, डबल इंजन सरकार की नीतियों से विकास की राह पर तेजी से अग्रसर है बुंदेलखंड। उत्साह के साथ मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने झांसी में आयोजित कार्यक्रम में किया योगाभ्यास। प्रदेश के 59 जिलों में नीट यूजी की पुनर्परीक्षा शांतिपूर्वक हुई संपन्न। करीब 3.5 लाख अभ्यर्थी हुए शामिल। और प्रदेश के अधिकांश जिलों में पड़ रही भीषण गर्मी से जनजीवन हुआ प्रभावित। अगले 3-4 दिन तक गर्मी से राहत के नहीं है आसार। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि नए भारत की तर्ज पर उत्तर प्रदेश ने भी अपनी नई और विशेष पहचान बनाई है। डबल इंजन सरकार की नीतियों से बुंदेलखंड विकास की राह पर तेजी से अग्रसर है। मुख्यमंत्री कल बुंदेलखंड के महोबा में 697 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 88 विकास परियोजनाओं और हमीरपुर जिले में 636 करोड़ से अधिक लागत की 75 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। महोबा जिले की आध्यात्मिकता, ऐतिहासिकता और वीरता की चर्चा करते हुए कहा कि महोबा गुरु गोरखनाथ की साधना स्थली है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों के सहयोग से गोरखगिरी, पर्यटन स्थल के नए केंद्र के रूप में स्थापित हुआ है। श्री योगी ने कहा कि गोरखगिरी में रोपवे लगाया जाएगा और इसे एडवेंचर टूरिज्म के केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि बुंदेलखंड का विकास राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। इस क्रम में विभिन्न विकास योजनाओं से बुंदेलखंड को आच्छादित किया गया है। श्री योगी ने कहा कि जल्द ही बुंदेलखंड मिसाइल हब के तौर पर भी जाना जाएगा।
7: उत्तर प्रदेश की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर में बनी हुई मिसाइल ने साबित करके दिखाया और उसका हब हम चाहते हैं आने वाले समय में हमारा महोबा बने, हमीरपुर बने, चित्रकूट बने, झांसी बने, ऊर्जा के केंद्र के रूप में विकसित हो। और इसलिए विकास की योजनाओं को लेकर के औद्योगिक निवेश के लिए भी हम लोगों ने एक औद्योगिक क्लस्टर यहां विकसित करने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। करबई बांध के जिन किसानों ने जमीन दी थी, वर्षों से की भूमि का पैसा नहीं मिला था, उसको निस्तारित करके उसका भुगतान की कार्रवाई को संपन्न किया गया।
6: मुख्यमंत्री ने कहा कि बुंदेलखंड में जल समाधान, संरक्षण, पर्यटन की संभावनाओं और कनेक्टिविटी बेहतर करने के लिए डबल इंजन सरकार काम कर रही है। इस अवसर पर महोबा के विकास को समर्पित लघु फिल्म भी दिखाई गई। अंतर्राष्ट्रीय योग

0: दिवस कल उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर देश ही नहीं दुनिया भर में योगाभ्यास के कार्यक्रम आयोजित किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मुख्य समारोह से देश की अगुवाई की। श्री मोदी ने योगाभ्यास कर योग को दिनचर्या का अनिवार्य हिस्सा बनाने का संदेश दिया।
1: योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है। इसलिए योग के विषय में युक्त चेष्टस्य कर्मसु कहा गया है, यानी हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका बोध।
0: प्रदेश में भी योग दिवस के अवसर पर सभी जिलों में कार्यक्रम आयोजित किए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुंदेलखंड के झांसी में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए और योगाभ्यास कर निरोगी रहने का संदेश दिया।
2: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पूरे प्रदेशवासियों को हृदय से बधाई देता हूँ। हम सब आभारी हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने भारत की परंपरा को, भारत की विरासत को वैश्विक मान्यता देकर के भारत के 140 करोड़ भारतवासियों को दुनिया के अंदर गौरव के साथ आगे बढ़ने और उसकी नींव पर एक विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए हम सबके लिए एक विजन प्रस्तुत किया।
0: इस अवसर पर लखनऊ के जन भवन में महिला योग सत्र आयोजित किया गया, जिसमें राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के नेतृत्व में महिलाओं ने योगासन, प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास किया। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज और ब्रजेश पाठक लखनऊ में योग दिवस पर हुए कार्यक्रमों में सम्मिलित हुए। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और X हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। प्रदेश के 59 जिलों में आयोजित नीट UG की पुनर्परीक्षा कल शाम शुचिता के साथ शांतिपूर्वक रूप से संपन्न हो गई। एक रिपोर्ट।
3: देश के विभिन्न जिलों में बनाए गए परीक्षा केंद्रों पर करीब 3.5 लाख अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। ये मेडिकल प्रवेश परीक्षा उत्तर प्रदेश सहित देश के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में आयोजित की गई। इस परीक्षा में 22 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल हुए। इससे पहले 3 मई को हुई नीट की परीक्षा कथित पेपर लीक विवाद की वजह से रद्द कर दी गई थी। NTA ने परीक्षा को पारदर्शी, शांतिपूर्ण और नकलविहीन तरीके से कराने के लिए सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए थे। सभी केंद्रों पर CCTV कैमरों से हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही थी। केंद्रों पर स्टेट और पर्याप्त सुरक्षा बल तैनात थे। समाचार कक्ष से फजल इनाम।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने का आह्वान करते हुए कहा है कि मौसम की अनिश्चितता और मानसून की संभावित अनियमितता को देखते हुए प्रत्येक प्रदेशवासी को जल संचयन एवं जल संरक्षण के प्रयासों से जुड़ना होगा। उन्होंने कहा कि पानी की एक भी बूंद व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। कैच द रेन अभियान को और अधिक प्रभावी ढंग से संचालित किया जाए तथा वर्षा जल संचयन को व्यापक जन भागीदारी से जोड़ा जाए। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य कल प्रयागराज में खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों और खेल संगठनों के पदाधिकारियों द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। इन सभी से संवाद करते हुए श्री मौर्य ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है और इस दिशा में कई योजनाएं जारी हैं। उन्होंने खिलाड़ियों और खेल संगठनों के पदाधिकारियों को आश्वस्त किया कि वह खिलाड़ियों के सहयोग के लिए तैयार हैं, ताकि प्रयागराज सहित सभी जिलों के खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना सकें। केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस दावे का खंडन किया है, जिसमें कहा गया था कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 6,550 रुपये के प्रोसेसिंग शुल्क पर 10 लाख रुपये तक का ऋण दिया जा रहा है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इसे पूरी तरह से फर्जी बताया है। राज्य सरकार ने आदिवासी बाहुल्य सोनभद्र जिले में 257 करोड़ रुपए लागत से 86 किलोमीटर लंबी सड़कों का जाल बिछाने का फैसला किया है। जिलाधिकारी चर्चित गौड़ ने जानकारी देते हुए बताया कि सड़क निर्माण के संबंध में जल्द ही सर्वे और टेंडर प्रक्रिया संपन्न कराकर सड़क निर्माण का कार्य शुरू करा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इन सड़कों के बन जाने से सीमावर्ती 4 राज्यों से कनेक्टिविटी बेहतर हो जाएगी। इस कनेक्टिविटी से उद्योगों के लिए कच्चे माल और तैयार उत्पादों की ढुलाई में लोगों को आसानी होगी। प्रदेश के अधिकांश जिलों में इस समय भीषण गर्मी पड़ रही है। कई जिलों का अधिकतम तापमान 40 डिग्री से अधिक रिकॉर्ड किया जा रहा है। गर्मी के चलते जनजीवन प्रभावित हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार गर्मी का ये सिलसिला अगले 3-4 दिन तक जारी रहेगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश में महीने के अंत तक मानसून के पहुंचने की संभावना है। उधर प्रदेश में बढ़ते तापमान और लू की स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने बेसिक शिक्षा परिषद से जुड़े स्कूलों और मान्यता प्राप्त स्कूलों में ग्रीष्मकालीन अवकाश को 24 जून तक बढ़ा दिया है। इसे लेकर शासन से जारी निर्देश के अनुसार अब तक हर साल गर्मियों की छुट्टियां 20 मई से 24 जून तक रहेंगी और नियमित शैक्षणिक गतिविधियां 25 जून से शुरू होंगी। हालांकि शिक्षक, शिक्षा मित्र, प्रशिक्षक और गैर शिक्षण कर्मचारी 22, 23 और 24 जून को स्कूलों में उपस्थित रहेंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महोबा और हमीरपुर में विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, डबल इंजन सरकार की नीतियों से विकास की राह पर तेजी से अग्रसर है बुंदेलखंड। उत्साह के साथ मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने झांसी में आयोजित कार्यक्रम में किया योगाभ्यास। प्रदेश के 59 जिलों में नीट यूजी की पुनर्परीक्षा शांतिपूर्वक हुई संपन्न। करीब 3.5 लाख अभ्यर्थी हुए शामिल। और प्रदेश के अधिकांश जिलों में पड़ रही भीषण गर्मी से जनजीवन हुआ प्रभावित। अगले 3-4 दिन तक गर्मी से राहत के नहीं है आसार। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
4: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
5: यदि युवा को है रोजगार पाना तो होगा उसे कौशल बढ़ाना। अपने कौशल का विकास कीजिए, अपने भविष्य को संवारिए। वृद्धों का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें। बड़े बुजुर्गों की करें मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत। जो सिखाएं हमें व्यवहारिक ज्ञान, करें ज्येष्ठ लोगों का सम्मान।
6: असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
7: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार हमारे केंद्र से। ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम पूर्वा सुहानी, बस कुछ ही क्षणों में।
8: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार सुबह 11 बजे मन की बात।
9: स्वच्छता से बदले अपना परिवेश, स्वच्छ जीवन की ओर एक कदम बढ़ाएं।
10: स्वच्छता अपनाएं, स्वास्थ्य का आनंद उठाएं।
9: गंदगी हटाओ, स्वच्छता लाओ, स्वस्थ जीवन जीने का सपना साकार करो।
10: स्वच्छता की आदत, स्वस्थ जीवन की शुरुआत।

उदित नारायण की आवाज़ में आप सुन रहे थे जोश फिल्म से ये गीत। कार्यक्रम का अगला गीत है फिल्म बागी से, आवाज़ अभिजीत की।

0: अभिजीत की आवाज़ में आप सुन रहे थे यस बॉस फिल्म से ये गीत। इसी के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम पूर्वा सुहानी यहीं समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। सुनिए समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मजबूत समुद्री क्षमता किसी भी देश के आर्थिक और रणनीतिक प्रभाव में निर्णायक है और भारत इस ओर अग्रसर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मध्य प्रदेश के कोनो राष्ट्रीय उद्यान के दौरे पर हैं, चीता परियोजना की समीक्षा की। भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की दो दिवसीय बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी आज से UGC नेट जून 2026 परीक्षा का आयोजन करेगी। अमरीका के उपराष्ट्रपति JD वेंस ने कहा, स्विट्जरलैंड में प्रतिनिधिमंडलों की बैठक के बाद ईरान वार्ता में प्रगति। और पुरुष हॉकी में भारत ने FIH प्रो लीग रॉटरडम चरण के अपने अंतिम मैच में नीदरलैंड को 3-2 से हराया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति में समुद्री क्षमता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और भारत इसे मजबूत बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। कोलकाता में कल स्वदेश निर्मित 3 नौसैनिक पोतों दूनागिरी, संशोधक और अग्रय को नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है और केवल हथियारों का खरीदार देश बनकर नहीं रहना चाहता।
2: आज भारत रक्षा क्षेत्र में केवल खरीदार बनकर नहीं रहना चाहता। हमारी सैन्य शक्ति दुनिया के लिए बाजार नहीं बन सकती। मेरी शक्ति की सामर्थ्य की पहचान मेरी आत्मनिर्भरता पर है।
1: श्री मोदी ने कहा कि समुद्री सामर्थ्य के बिना कोई भी देश वैश्विक शक्ति नहीं बन सकता। विकास, सुरक्षा और समृद्धि का सीधा संबंध समुद्र से है। श्री मोदी ने कहा कि INS विक्रांत से शुरू हुई आत्मनिर्भरता की यात्रा को इन नए पोतों के शामिल होने से और गति मिलेगी।
2: INS विक्रांत से लेकर आज तक की यात्रा केवल नए युद्ध पोतों की यात्रा नहीं है, यह भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता की यात्रा भी है। इनका निर्माण भारत में हुआ है, इनकी डिजाइन भारत में तैयार हुई है, इनके निर्माण में भारतीय उद्योगों की प्रतिभा लगी है और यही नए भारत की सबसे बड़ी ताकत है।
1: प्रधानमंत्री ने बताया कि पिछले कुछ वर्षों में 40 से अधिक युद्धपोत और पनडुब्बियां नौसेना में शामिल की गई हैं।
2: भारत निर्माता बनना चाहता और जिस दिन निर्माता होगे ना उस दिन हम निर्णायक भी होंगे। बीते वर्षों में 40 से अधिक मेड इन इंडिया युद्धपोत और पनडुब्बियां नौसेना में शामिल हुई है। वर्तमान में भी 45 बड़े नौसैनिक प्लेटफॉर्म निर्माणाधीन है। यह केवल संख्या नहीं है, यह भारत की औद्योगिक क्षमता का प्रमाण है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 को वैश्विक उत्सव बनाने के लिए विश्व भर के लोगों का आभार व्यक्त किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये देखकर खुशी होती है कि योग सभी क्षेत्रों और विभिन्न देशों के लोगों को स्वस्थ जीवन तथा कल्याण की साझा खोज में एकजुट कर रहा है।

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान का दौरा किया। उन्होंने भारत के प्रमुख पहल चीता पुनर्वास परियोजना की प्रगति की समीक्षा भी की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज सुबह कुनो नेशनल पार्क में सफारी की। इसके बाद वे कुनो के चीता कमांड एवं कंट्रोल सेंटर का दौरा कर चीता परियोजना से जुड़ी प्रदर्शनी का अवलोकन किया था। अधिकारियों ने उन्हें बताया कि वर्तमान में भारत में 52 चीते हैं। उन्हें चीतों की निगरानी और ट्रैकिंग व्यवस्था के बारे में भी जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2022 में अपने जन्मदिन पर नाम्बिया से लाए गए 8 चीतों को कुनो नेशनल पार्क में छोड़कर भारत की महत्वाकांक्षी चीता पुनर्स्थापन परियोजना की शुरुआत की थी। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना से भी चीते लाए गए। संरक्षण और प्रजनन के प्रयासों के कारण अब कुनो में चीतों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिसे परियोजना की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी न्यूज, भोपाल।
0: भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 2 दिवसीय बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: इस दौरान साइबर सुरक्षा, डिजिटल खतरों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े जोखिमों तथा अन्य गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। प्रतिनिधि आतंकवाद रोधी सहयोग और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के सुरक्षित उपयोग से जुड़े मुद्दों की भी समीक्षा करेंगे। बैठक में भारत, ब्राजील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स के 11 सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुख भाग लेंगे। चीन के विदेश मंत्री वांग यी भी इसमें शामिल होंगे। ये चौथी बार है जब भारत ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। इस वर्ष भारत की अध्यक्षता का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास का निर्माण। समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की UGC नेट जून 2026 परीक्षा आज से शुरू होगी। ये राष्ट्रीय स्तर की पात्रता परीक्षा कंप्यूटर आधारित टेस्ट CBT माध्यम से 30 जून तक प्रतिदिन 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। UGC नेट परीक्षा उन अभ्यर्थियों के लिए आयोजित की जाती है जो जूनियर रिसर्च फेलोशिप JRF, सहायक प्रोफेसर के पदों और PhD पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पात्रता प्राप्त करना चाहते हैं। नीट UG पुनर्परीक्षा कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच संपन्न हुई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया कि देशभर के 5,440 जबकि विदेश के 14 केंद्रों पर 22 लाख से अधिक अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हुए। इस बीच NTA ने नीट UG पुनर्परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने के दावे को खारिज किया है। सोशल मीडिया पर प्रसारित एक वीडियो में प्रश्न पत्र टेलीग्राम पर लीक होने का दावा किया गया था। NTA ने कहा है कि परीक्षा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सफलतापूर्वक आयोजित की गई है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कक्षा 12वीं के अंकों के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के परिणाम जारी करने शुरू कर दिए हैं। बोर्ड के अनुसार 87% से अधिक आवेदनों के परिणाम घोषित किए जा चुके हैं, जबकि शेष परिणाम जल्द ही जारी किए जाएंगे। पश्चिम बंगाल विधानसभा में आज भाजपा सरकार अपना पहला पूर्ण बजट पेश करेगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली सरकार के इस बजट पर सभी का ध्यान है। 19वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 कल शाम संपन्न हो गया। मुंबई में आयोजित समापन समारोह को संबोधित करते हुए महाराष्ट्र के राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा ने महोत्सव को गैर काल्पनिक सिनेमा के लिए विश्व के सबसे प्रतिष्ठित समारोहों में से एक बताया। हमारी संवाददाता ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता वर्ग में पोलैंड के वृत्तचित्र सिल्वर ने सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र के लिए प्रतिष्ठित गोल्डन कॉन्च पुरस्कार जीता।
3: अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता विभाग में माया सॉन्ग को सर्वश्रेष्ठ एनिमेशन फिल्म के लिए सिल्वर कॉन्च और अंडर द स्नो को सर्वश्रेष्ठ लघु कथा फिल्म का सिल्वर कॉन्च दिया गया। राष्ट्रीय प्रतियोगिता विभाग में आर्मस्ट्रॉन्ग फ्रॉम अंगलम्मन कोविल स्ट्रीट को सर्वश्रेष्ठ एनिमेशन फिल्म का सिल्वर कॉन्च मिला। वही स्मॉल क्लाउड्स को सर्वश्रेष्ठ लघु कथा फिल्म और वाई को सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फिल्म का सिल्वर कॉन्च प्रदान किया गया। द ओल्ड बुल नोज और वंस न्यू को सर्वश्रेष्ठ छात्र फिल्म का पुरस्कार मिला, जबकि द लास्ट शेल्टर को विकसित भारत वंदे मातरम के 150 वर्ष भारत एट 2026 विषय पर बनी सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म का पुरस्कार दिया गया। इसी के साथ मिफ 2026 का समापन हुआ। अंकिता आप्टे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि ईरान के साथ वार्ता में प्रगति हो रही है। स्विट्जरलैंड में ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों पर अमेरिका और ईरान के वरिष्ठ प्रतिनिधिमंडलों के बीच बातचीत जारी है। एक रिपोर्ट।
4: लेक ल्यूर्सन के निकट बर्गेनस्टॉक रिजॉर्ट में बंद कमरे में हो रही इस वार्ता से पहले जेडी वेंस ने कहा कि अब तक की बातचीत के उत्साहजनक परिणाम सामने आए हैं और आगे भी प्रगति की उम्मीद है। वार्ता का मुख्य केंद्र ईरान का परमाणु कार्यक्रम है। इसके साथ ही इसराइल और लेबनान के बीच युद्ध विराम बनाए रखने सहित क्षेत्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर भी चर्चा जारी है। जेडी वेंस ने कहा कि हाल के कूटनीतिक प्रयासों से सकारात्मक परिणाम मिले हैं और क्षेत्र में शांति तथा स्थिरता बनाए रखने के लिए अमरीका लगातार प्रयासरत है। पश्चिम एशिया में तनाव कम करने और कूटनीतिक समाधान की दिशा में इस वार्ता पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की नजर बनी हुई है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नागरिक अलंकरण वर्ष 2026 के दूसरे समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर हम अपनी विशेष श्रृंखला पीपुल्स पद्म ऑन आकाशवाणी के तहत 15 विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं।
5: हम लिख के गया ऐसा करते करते लेखक का दर्जा मिल गया।
6: सोना घाटी की पहाड़ी, पहाड़ी को देखा तो उस पहाड़ी पर एक भी पेड़ नहीं था, वृक्ष विहीन पहाड़ी हो गई थी, झाड़ियाँ कुछ बची थी और वहाँ पर 8000 से ज्यादा हमने जल संरचनाएं बनाई।
7: समाज चेतना के लिए हम सोचा, समाज जागरण के लिए, आदमी के लिए हम सोचा क्या करना है और क्या नहीं करना है।
8: मेरे मन माया कि हम इनको आत्मनिर्भर करना है तो इनको साक्षरता बनाना है, इनको शिक्षा देना है।
0: ये विशेष कार्यक्रम आज और कल प्रातः 9:10 पर आकाशवाणी गोल्ड से प्रसारित होंगे, जिन्हें न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में अपर केंद्रीय आयुक्त पूर्णेंदु भूषण वर्मा इस परिचर्चा में भाग लेंगे। पुरुष हॉकी में भारत ने कल रॉटरडैम में FIH प्रो लीग के अपने अंतिम मुकाबले में नीदरलैंड्स को 3-2 से हराकर शानदार जीत दर्ज की। भारत की ओर से जुगराज सिंह, अभिषेक और राजेंद्र सिंह ने गोल किए। मौसम विभाग ने असम और मेघालय में आज मूसलाधार बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तराई वाले इलाकों और सिक्किम में भी आज तेज वर्षा की संभावना है। मौसम विभाग ने बताया कि बिहार, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, माहे, कोंकण, गोवा और लक्षद्वीप में कल तक तेज बारिश का अनुमान है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
9: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठों पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के भव्य आयोजन और कड़ी सुरक्षा के बीच फिर से नीट परीक्षा कराए जाने के समाचार छाए हुए हैं। वीर अर्जुन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कथन को शीर्ष समाचार बनाया है। शांति का मार्ग प्रशस्त कर सकता है योग। कोलकाता में योग दिवस समारोह के दौरान एक प्रतिभागी की मदद करते हुए प्रधानमंत्री की तस्वीर भी अखबार में प्रमुखता से प्रकाशित है। दैनिक जागरण ने इस खबर को शीर्षक दिया है, पहाड़ से मैदान तक योगमय हुई दुनिया। सियाचिन ग्लेशियर की बर्फीली ऊंचाइयों और पानी की गहराइयों में योग करते सैनिकों के चित्र भी ध्यान आकर्षित करते हैं। पंजाब केसरी और दैनिक भास्कर ने क्रिकेट खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी की तस्वीरों को पहले पन्ने पर सबसे ऊपर छापते हुए उनकी उपलब्धियां बयां की हैं। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, वैभव क्रिकेट की दुनिया का अजूबा। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, नीट देने 2 लाख कम अभ्यर्थी पहुंचे। दैनिक जागरण बताता है कि देश विदेश के 5,454 केंद्रों पर ये परीक्षा हुई और गड़बड़ी की कोई सूचना नहीं है। परीक्षा में भाग ले रहे उम्मीदवारों को कोई कठिनाई ना हो इसलिए प्रधानमंत्री मोदी के हवाई अड्डे पर 45 मिनट प्रतीक्षा करने को भी अखबार ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। जनसत्ता ने पहलगाम हमले की जांच के सामने आए कुछ तथ्यों को

0: मानचित्र प्रकाशित करते हुए खबर को शीर्षक दिया है, सीमा पार से आए ड्रोन ने गिराए थे हथियार।
1: और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मजबूत समुद्री क्षमता किसी भी देश के आर्थिक और रणनीतिक प्रभाव में निर्णायक है और भारत इस ओर अग्रसर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान के दौरे पर हैं, चीता परियोजना की समीक्षा की। भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 2 दिवसीय बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी आज से UGC नेट जून 2026 परीक्षा आयोजित करेगी। और पुरुष हॉकी में भारत ने FIH प्रो लीग रॉटरडैम चरण के अपने अंतिम मैच में नीदरलैंड्स को 3-2 से हराया। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सायरा मुज्तबा। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेज स्ट्रॉन्ग मैरिटाइम केपेबिलिटी इज डिसाइडिंग फैक्टर फॉर अ कंट्रीज इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस एंड इंटर इज प्रिपेयरिंग फॉर इट। President Draupadi Murmu visits Kuno National Park in Madhya Pradesh, reviews progress of Project Cheetah. India to host 2-day meeting of BRICS National Security Advisors in New Delhi today. National Testing Agency to commence UGC NET June 2026 examination from today. US Vice President J.D. Vance says Iran talks making progress as delegations meet in Switzerland. And in men's hockey, India beat Netherlands 3-2 in the last match of FIH Pro League Rotterdam leg. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has said that a strong maritime capability is the deciding factor for a country's economic and strategic influence, and India is preparing for it. He said a country with maritime capabilities is strong and has more economic and strategic influence.
3: Bharat aaj apne pure maritime ecosystem ko sashakt bana raha hai. Isliye aaj Bharat apne bandargahon ka aadhunikaran kar raha hai. Nayi kshamta tayar kar raha hai. Nayi connectivity bana raha hai. Nadi jalmargon ka vistar kar raha hai. मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है। सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
2: प्राइम मिनिस्टर मोदी मेड दीज रिमार्क्स आफ्टर कमिशनिंग 3 इंडिजिनसली बिल्ट इंडियन नेवी प्लेटफॉर्म्स, INS दूनागिरी, INS संशोधक एंड INS अग्रय एट द श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट इन कोलकाता यस्टरडे। Designed by the Navy's Warship Design Bureau and built by Garden Reach Shipbuilders and Engineers, the vessels are intended to strengthen combat operations, hydrographic surveying, and anti-submarine warfare.
3: जब समुद्री विरासत की बात होती है, तो बंगाल का नाम स्वाभाविक रूप से सामने आता है। यह भारत के समुद्री संपर्कों की भी महत्वपूर्ण भूमि रही है। हुगली की धाराओं ने इतिहास को बदलते हुए देखा है, व्यापार के नए अध्याय देखे हैं, विकास की नई यात्राएं देखी है और संयोग देखिए, ये पोर्ट बंगाल के ही सपूत देश के पहले उद्योग मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर है।
2: Prime Minister Modi has expressed gratitude to people around the world for making the International Day of Yoga 2026 a global celebration. The Prime Minister said it is encouraging to see yoga bringing together people from all walks of life across nations in the shared pursuit of wellness and good health. He expressed hope that the day would inspire more people to make yoga a part of their daily lives in the times to come. President Draupadi Murmu visited Madhya Pradesh's Kuno National Park yesterday and reviewed the progress of Project Cheetah, India's flagship initiative to reintroduce the species in the wild after its extinction in the country. During the visit, the president toured the park's cheetah management area and was briefed by officials on the status of the project. Kuno, the country's first cheetah reintroduction site, has been developed under Project Cheetah because of its suitable habitat, adequate prey base, and relatively low human disturbance. More from our correspondent.
4: President Draupadi Murmu went on a safari

0: ceremony tomorrow. On this occasion, we bring 15 special programs as part of our series, People's Padma on Akashvani.
1: I've been working for the last 25 years on traditional Siddha-based ethno-veterinary medicine to counteract some of the issues affecting the livestock production in India.
2: But as a country, we need microprocessors that should be indigenously developed.
3: Award is an acknowledgement to the great teamwork from DRDO and industries, inspection agencies.
0: In these episodes, listeners will get an insight into the work and life of Padma awardees. These programs will be broadcast today and tomorrow on 100.1 Akashvani Gold. They can also be heard on News on AIR app and News on AIR official YouTube channel. So stay tuned to Akashvani today and tomorrow from 9:10 a.m. onwards. The 19th Mumbai International Film Festival, or MIFF 2026, concluded last evening. Addressing the closing ceremony held in Mumbai, Maharashtra Governor Jishnu Dev Verma hailed MIFF as one of the most prestigious festivals in the world for non-fiction cinema. Polish documentary Silver bagged the prestigious Golden Conch for Best Documentary in the international competition section. More from our correspondent.
4: The best films across various categories were honored with 18 awards by Maharashtra Governor Jishnu Dev Verma, Additional Secretary, Ministry of Information and Broadcasting, Mr. Prabhat, and others. In the international competition section, Maya's Song won the Silver Conch for Best Animation Film and Under the Snow received the Silver Conch for Best Short Fiction Film. In the national competition category, the Silver Conch for Best Animation Film was awarded to Armstrong from Angalamman Kovil Street. The Silver Conch for Best Short Fiction Film went to Small Clouds, while Y won the Silver Conch for Best Documentary Film. The Old Bull Nose, or Once New, won the award for Best Student Film, while The Last Shelter received the award for Best Short Film on Vikasit Bharat, 150 Years of Vande Mataram, Bharat at 2026. Ankita Apte, Akashvani News, Mumbai.
0: U.S. Vice President J.D. Vance has said that talks with Iran were making progress as senior delegations met in Switzerland to address Tehran's nuclear program and regional security issues. Vance also expressed optimism that negotiators could advance discussions further. We have more details in this report.
5: Delegations from the U.S. and Iran began closed-door talks at the Bergenstock Resort overlooking the Lake Lucerne. Speaking to the reporters before the meeting, J.D. Vance said negotiations have already yielded encouraging results. The talks are focused primarily on Iran's nuclear program through regional security issues, including the efforts to maintain ceasefire between Israel and Lebanon are also expected to feature prominently.
6: The opening of the Strait of Hormuz, the ending of the Iranian nuclear program, all of these things have already been accomplished. The question before us now is how much more can we accomplish together? Can we turn over a new leaf? Can we change relations in the Middle East permanently? Or do we go back to doing things the old way, which is not our preference, but is certainly very much something that can't happen?
5: When asked about the situation in Lebanon and Israel's military operations there, J.D. Vance said recent diplomatic efforts had produced positive results while acknowledging that differences remained over how best to achieve long-term stability. He further defended Washington's role in seeking to end the conflict, saying the United States had played a leading role in efforts to reduce tensions and support peace initiatives in recent months. Meanwhile, the outcome of the talks is being closely watched by regional and international stakeholders amid efforts to revive diplomacy with Tehran and prevent a wider conflict in West Asia. With Mayur's report, Jigyasa Pandey, Akashvani News, Delhi.
0: On to sports now. In men's hockey, India defeated Netherlands 3-2 in the last match of FIH Pro League Rotterdam leg yesterday. Jugraj Singh, Abhishek and Rajinder Singh scored the goals, helping India register their second win of the leg against the Dutch side. And now for a look at today's newspapers, it's over to Shagun Chopra.
7: Thank you, Saira. Papers have widely noticed the observance of the International Day of Yoga, along with fresh developments in the US-Iran talks. The Statesman writes, PM leads International Yoga Day celebrations, says yoga has unique power to unite nations. The Hindu carries a beautiful picture of army personnel taking part in a yoga session in Ladakh with the picturesque Himalayas in the background. NEET re-exam, government passes litmus test, writes the Pioneer. India-US to hold trade talks this week to finalize interim pact, reports the Statesman. The Hindu in its editorial Just Roots writes, DNA tests for paternity allowed as a last resort must not violate other rights. And finally, the Indian Express writes, IIT Bombay finds a new way to lower LDL cholesterol, adding researchers stop bad fat from reaching liver cells that release it into the blood. And with that, it's back to you, Saira.
0: Thanks, Shagun. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Modi says strong maritime capability is deciding factor for a country's economic and strategic influence, and India is preparing for it. President Draupadi Murmu visits Kuno National Park in Madhya Pradesh, reviews progress of Project Cheetah. India to host two-day meeting of BRICS National Security Advisors in New Delhi today. National Testing Agency to commence UGC NET June 2026 examination from today. US Vice President J.D. Vance says Iran talks making progress as delegations meet in Switzerland. And in men's hockey, India beat Netherlands 3-2 in the last match of FIH Pro League Rotterdam leg. And with that, we end the morning news. Have a great day.
8: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मुस्तहकम बहरी सलाहियतें किसी मुल्क के इक्तसादी और दिफाई तौर पर मौसर होने में एक फैसला कुन उंसुर का किरदार अदा करती हैं और भारत इसके लिए तैयारी कर रहा है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क का दौरा किया। उन्होंने प्रोजेक्ट चीता की पेशरफ्त का जायजा लिया। भारत आज नई दिल्ली में ब्रिक्स मुल्कों के कौमी सलामती के मुशीरों की दो रोज़ा मीटिंग की मेज़बानी करेगा। इम्तहानात का इनेकाद कराने वाली कौमी एजेंसी 2026 के यूजीसी नेट इम्तहानात का आगाज आज से कराएगी। अमरीका के नायब सदर जे डी वांस ने कहा है कि ईरान के साथ बातचीत में पेशरफ जारी है। वफूद ने स्विट्जरलैंड में मीटिंग की है। और मर्दों के हॉकी में एफआईएच प्रो लीग रोटरडम मरहले के अपने आखिरी मैच में भारत ने नीदरलैंड्स को 3-2 से हराया। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि एक मजबूत समंदरी सलाहियत किसी मुल्क के इक्तसादी और दिफाई तौर पर मौसर होने का फैसला कुन उंसुर होती है और भारत इसके लिए तैयारी कर रहा है। उन्होंने कहा कि समंदरी सलाहियतों का हामिल कोई मुल्क मजबूत होता है और इक्तसादी और दिफाई तौर पर ज्यादा मौसर होता है।
9: भारत आज अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए आज भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, नदी जलमार्गों का विस्तार कर रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है, सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
8: वजीर आजम ने यह राजधानी मुल्क ही में तैयार किए गए जंगजू जहाज दूनागिरी, जायजा लेने वाले जहाज संशोधक और गहरे पानी में सरगर्मियां अंजाम देने वाले आबदोस शिकन बहरी जहाज एग्रे को कल बहरिया के कामकाज में शामिल करते हुए किया। इन जहाजों को बहरिया के जंगजू जहाज तैयार करने वाले ब्यूरो ने डिजाइन किया है और इनकी तामीर गार्डन रिसर्च शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने की है। इन बहरी जहाजों का मकसद जंगी सरगर्मियों को मुस्तहकम बनाना, समंदर के जायजे लेना और आबदोज शिकन कार्रवाइयां अंजाम देना है।
9: जब समुद्री विरासत की बात होती है तो बंगाल का नाम स्वाभाविक रूप से सामने आता है। यह भारत के समुद्री संपर्कों की भी महत्वपूर्ण भूमि रही है। हुगली की धाराओं ने इतिहास को बदलते हुए देखा है, व्यापार के नए अध्याय देखे हैं, विकास की नई यात्राएं देखी है और संयोग देखिए, ये पोर्ट बंगाल के ही सपूत देश के पहले उद्योग मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर है।
8: वजीर आजम मोदी ने दुनिया भर के लोगों का शुक्रिया अदा किया है कि उन्होंने योग के 2026 के बैन अलाक्वामी दिन को एक आलमी तकरीब की शक्ल दी। वजीर आजम ने कहा कि ये बात हिम्मत अफजा है कि योग की वजह से दुनिया के मुल्कों में जिंदगी के सभी शोबों के लोग तंदुरुस्ती और अच्छी सेहत के लिए यकजा हो रहे हैं। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि इस दिन से मजीद लोगों को तहरीक मिलेगी और वो योग को आने वाले वक्त में अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाएंगे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कल मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क की सैर की। उन्होंने चीता प्रोजेक्ट की पेशरफ्त का जायजा लिया जो मुल्क में

0: चीतों के खत्म हो जाने के बाद जंगल में इनकी बाजाबादकारी के लिए भारत का एक अहम कदम है। सदर जमहूरिया ने अपने दौरे में चीतों के बंदोबस्त के इलाके का दौरा किया। उन्हें अफसरों ने इस प्रोजेक्ट की मौजूदा सूरत हाल की जानकारी दी। कुनो मुल्क की पहली ऐसी जगह है जहां चीतों की बाजाबादकारी की गई है। इस जगह को प्रोजेक्ट चीता के तहत तैयार किया गया है क्योंकि ये इनके लिए एक मुनासिब और वाफर शिकार वाली जगह है। इसके अलावा यहाँ इंसानी मुदाखलत भी निस्बतन कम होती है।
1: सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज कुनो नेशनल पार्क की सफारी का दौरा किया। उन्होंने सहारिया कबीले के अरकान से भी बातचीत की, जो चीता प्रोजेक्ट के तहत चीता मित्रों, चीता ट्रैकर्स, मकामी जंगलाती अमले और सयाहों के गाइड्स के तौर पर काम कर रहे हैं। इससे पहले इतवार को सदर जमहूरिया ने कुनो में चीता कमान व कंट्रोल मरकज का दौरा किया था और चीता प्रोजेक्ट से मुतालिक एक नुमाइश देखी थी। अफसरों ने उन्हें बताया कि भारत में फिलहाल 52 चीते हैं, जिनमें से 49 चीते कुनो नेशनल पार्क में हैं। तीनों चीतों को गांधी सागर जंगलाती तहफुजगाह में मुंतकिल कर दिया गया है। सदर जमहूरिया को मवेशियों पर नज़र रखने और उनकी ट्रैकिंग के निज़ाम के बारे में जानकारी दी गई। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने चीतों की बाजाबादकारी का प्रोजेक्ट 2022 में शुरू किया था, जिसके लिए उन्होंने अपने यौम पैदाइश पर कुनो नेशनल पार्क में नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को लाकर बसाया था। इसके बाद जनूबी अफ्रीका और बोत्सवाना से मज़ीद चीते लाए गए। भोपाल से अभिनव गोयल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।
0: भारत आज नई दिल्ली में शुरू होने वाली ब्रिक्स कौमी सलामती के मुशीरों की 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी के फ़राइज़ अंजाम देगा। कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल कॉन्फ्रेंस की सदारत करेंगे, जिसमें इस ब्लॉक के 11 रुकन मुल्कों के सलामती से मुतालिक सरबराहान शिरकत करेंगे। इनमें भारत, ब्राज़ील, चीन, मिस्र, एथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, जनूबी अफ्रीका और मुत्तहिदा अरब अमारात शामिल हैं। एक रिपोर्ट।
2: कॉन्फ्रेंस में सभी अरकान आज दुनिया को दरपेश सलामती के गैर रिवायती चैलेंजेस के मौजू पर तबादले ख्याल करेंगे। साथ ही वो कौमी सलामती को दरपेश खतरात की नौइयत पर बातचीत करेंगे और सलामती के उभरते हुए खतरात में नई टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर भी तवज्जो मरकूज करेंगे। वफूद साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल खतरात और मसनूई ज़हानत से पैदा होने वाले खतरात पर भी गौरखोज करेंगे। सभी रुकन ममालिक के कौमी सलामती के मुशीर और वफद के सरबराहान इंफॉर्मेशन और मवासिलाती टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर सिक्योरिटी और इंसदाद दहशतगर्दी से मुतालिक ब्रिक्स की वर्किंग ग्रुप्स की हालिया मीटिंग के नतज का जायज़ा भी लेंगे। भारत की सदारत का मरकजी मौजू लचक पजीरी, इख्तरा, बाहमी ताउन और पायदारी को फ़रोग देना है, जिसकी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के आवाम पर मरकूज विज़न की अक्कासी होती है, जिसे 2025 की रियो समिट में पेश किया गया था। चीन ने तस्दीक की है कि उसके वज़ीर ख़ारजा वांग ई इस मीटिंग में शिरकत करेंगे। दिल्ली से रिशु जायसवाल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फैसल खान।
0: ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। इम्तिहानात कराने वाली कौमी एजेंसी एनटीए आज से यूजीसी नेट 2026 का इम्तिहान शुरू कराएगी। कौमी सतह की एहलियत का टेस्ट हर रोज 2 शिफ्ट में इस माह की 30 तारीख तक कंप्यूटर पर मबनी टेस्ट CBT मोड में कराया जाएगा। यूजीसी नेट इम्तिहान उन उम्मीदवारों के लिए कराया जाएगा जो जूनियर रिसर्च फेलोशिप, असिस्टेंट प्रोफेसर की पोजीशन और PhD कोर्सेज के दाखिले के लिए क्वालिफाई करने की ख्वाहिशमंद हैं। NTA ने सभी उम्मीदवारों को मशवरा दिया है कि वो अपने एडमिट कार्ड्स डाउनलोड करें और इम्तिहान की सभी तफसीलात के पूरे ध्यान से तस्दीक करें। उसने कहा है कि उम्मीदवारों को इम्तिहान से पहले अपने इम्तिहान की तारीख, शिफ्ट, वक्त और इम्तिहान के मरकज़ के बारे में मालूमात हासिल कर लेनी चाहिए। मजीद ये कि PWD या PWBD उम्मीदवारों को भी मशवरा दिया गया है कि वो अपने मुकर्रा इम्तिहानात के मराकिस का पहले से दौरा करें ताकि मकाम और दस्तयाब सहूलियात से वाकफियत हासिल की जा सके। इम्तिहान कराने वाली कौमी एजेंसी NTA ने सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली एक वीडियो के इन दावों को मुस्तरद कर दिया है कि इम्तिहान से पहले टेलीग्राम पर नीट UG 2026 के दोबारा इम्तिहान का सवालनामा इफ्शा हुआ था। एक सोशल मीडिया पोस्ट में NTA ने कहा है कि नीट का इम्तिहान जामे सिक्योरिटी और निगरानी के तहत कामयाबी के साथ मुनक़िद कराया गया। उसने मजीद कहा कि तलबा के लिए इस तरह की गलत मालूमात जानबूझकर फैलाना एक संगीन जुर्म है। CBSE ने 12वीं जमात से मुतालिक मामलात के तस्दीक नामे और दोबारा जांच के नतीजे

0: जारी करना शुरू कर दिए हैं। बोर्ड ने एक बयान में कहा कि इन नतीजों का ऐलान मरहलेवार किया जा रहा है, जिनमें से 87% से ज्यादा दरखास्तों के नतीजों का ऐलान कल कर दिया गया। बकिया दरखास्तों के नतीज दीगर मरहलों में जाहिर कर दिए जाएंगे और उम्मीद है कि यह अमल जल्द ही मुकम्मल हो जाएगा। दरखास्त किस मरहले में है इसकी मालूमात results.digilocker.gov.in पर की जा सकती है। CBSE ने तलबा को यकीन दिलाया है कि हर एक दरखास्त एक बड़े शफाफ और करीबी नज़र रखने वाले निज़ाम से गुजारी गई है। तलबा को मशवरा दिया जाता है कि वो अफवाहों या गैर तस्दीक शुदा सोशल मीडिया पोस्ट पर ध्यान न दें और वो सही मालूमात के लिए CBSE के सरकारी बयान पर ही भरोसा करें। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू 2026 के पद्म इनामात सिविल अवार्ड्स की कल दूसरी तकरीब में अदा करेंगी। इस मौके पर हम अपनी सीरीज आकाशवाणी पर लोगों के पद्म के हिस्से के तौर पर आपके लिए 15 खसूसी प्रोग्राम नशर कर रहे हैं।
1: हम लिख के गया ऐसे करते करते लेखक का एक दर्जा मिल गया।
2: सोना घाटी की पहाड़ी को देखा तो उस पहाड़ी पर एक भी पेड़ नहीं था, वृक्ष विहीन पहाड़ी हो गई थी, झाड़ियाँ कुछ बची थी और वहाँ पर 8000 से ज्यादा हमने जल संरचनाएं बनाई।
3: समाज चेतना के लिए हम सोचा, समाज जागरण के लिए आदमी के लिए हम सोचा क्या करना है और क्या नहीं करना है।
4: मेरे मन माया कि हम इनको आत्मनिर्भर करना है तो इनको साक्षरता बनाना है, इनको शिक्षा देना है।
0: आप इस गुफ्तगू का आज और कल 100.1 आकाशवाणी गोल्ड पर सुबह 9:10 से सुन सकते हैं। ये प्रोग्राम आप न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन ऑफिशियल YouTube पर भी सुन सकते हैं। 19वां मुंबई बैन अलावामी फिल्म फेस्टिवल MIFF 2026 कल शाम एक शानदार तकरीब के साथ इख्तिताम पसीर हो गया। मुंबई में इख्तितामी तकरीब से खिताब करते हुए महाराष्ट्र के गवर्नर जिष्णु देव वर्मा ने गैर अफसानवी सिनेमा के लिए दुनिया में मुंबई बैन अलावामी फिल्म फेस्टिवल को एक सबसे पुरवकार फेस्टिवल करार दिया। पोलैंड की दस्तावेजी फिल्म सिल्वर को बैन अलावामी मुकाबला जाति जुमरे में बेहतरीन दस्तावेजी फिल्म के लिए पुरवकार गोल्डन कॉन्च एजाज से नवाजा गया। एक रिपोर्ट।
5: महाराष्ट्र के गवर्नर जिष्णु देव वर्मा, इत्तलात और नशरियात की वजारत में एडिशनल सेक्रेटरी जनाब प्रभात और दीगर शख्सियात ने मुख्तलिफ जुमरों में बेहतरीन फिल्मों को 18 एजाजात अता किए। बैन अलावामी मुकाबला जाति जुमर में बेहतरीन एनिमेशन फिल्म के लिए माया सॉन्ग को सिल्वर कॉन्च के एजाज से नवाजा गया, जबकि अंडर द स्नो को बेहतरीन मुख्तसर अफसानी फिल्म के लिए सिल्वर कॉन्च एजाज से नवाजा गया। कौमी मुकाबला जाति जुमर में बेहतरीन एनिमेशन फिल्म के लिए सिल्वर कॉन्च का एजाज आर्म स्ट्रॉन्ग फ्रॉम अमंगलम कोविल स्ट्रीट को दिया गया, जबकि द लास्ट शेल्टर ने विकसित भारत वंदे मातरम के 150 साल भारत एट द रेट 2026 से मुतालिक बेहतरीन शॉर्ट फिल्म के लिए अवार्ड हासिल किया। मुंबई से अंकिता आपटे की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।
0: अमरीका के नायब सदर जेडी वांस ने कहा है कि ईरान के साथ बातचीत में खातिरख्वाह पेशरफ्त हुई है, जबकि स्विट्जरलैंड में ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम और इलाकाई सलामती के मामलों से निपटने के लिए भी सीनियर वफूद की बातचीत हुई। जेडी वांस ने इस उम्मीद का इजहार किया है कि मुजाकरातकारों के दरमियान बातचीत में मजीद पेशरफ्त का इम्कान है। अमरीका और ईरान के वफूद के दरमियान स्विट्जरलैंड के सियाहती मकाम बर्जन स्टॉक पर बंद कमरे में बातचीत शुरू की गई। मीटिंग से पहले नामाधिकारों से बात करते हुए जेडी वांस ने कहा कि मुजाकरात के सबब पहले ही हौसलाकुन नताइज बरामद हुए हैं। मुजाकरात के दौरान इसराइल और ईरान के दरमियान जंगबंदी बरकरार रखने की कोशिशों समेत इलाकाई सिक्योरिटी के मामलों के जरिए ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर खसूसी तवज्जो दी गई। मर्दों की हॉकी में भारत ने कल FIH प्रो लीग रोटरडम मरहले के अपने आखिरी मैच में नीदरलैंड्स को 3-2 से हरा दिया। भारत की तरफ से जुगराज सिंह, अभिषेक और राजेंद्र सिंह ने गोल किए। कप्तान हार्दिक सिंह को उनकी बेहतरीन क़यादत और शानदार कारकर्दगी के लिए मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं फैसल खान।
6: शुक्रिया असलम। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के तकरीबन सभी उर्दू अखबारात ने भारतीय बहरिया में 3 जंगी जहाज़ों को शामिल किए जाने की खबर को अव्वलियत के साथ शाये किया है। रोजनामा प्रताप ने सुर्खी लगाई है, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क में तैयार करदा 3 नए जंगी जहाज को भारतीय बहरिया में शामिल किए। वजीर आजम ने कहा कि तरक्की, सलामती और खुशहाली सब समुद्र से जुड़े हुए हैं। रोजनामा इनकलाब ने आलमी योम योग से मुतालिक खबर को नुमाया तौर पर शाया करते हुए सुर्खी लगाई है, आलमी योगा डे पर सदर जमहूरिया और वजीर आजम समेत दिगर पार्टियों के लीडरों ने योगा में हिस्सा लिया। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि सेहतमंद रहने के लिए योगा ज़रूरी, योग ने इंसानियत को सेहतमंद, मुतवाजन और बामकसद ज़िंदगी का रास्ता दिखाया है।
0: और आखिर में खास खास खबरों का खुलासा एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मुस्तकम बहरी सलाहियतें किसी मुल्क के इक्तसादी और दिफाई तौर पर मौसर होने में एक फैसलाकुन अंसर का किरदार अदा करती हैं और भारत इसके लिए तैयारी कर रहा है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के पूनो नेशनल पार्क का दौरा किया। उन्होंने प्रोजेक्ट चीता की पेशरफ्त का जायजा लिया। भारत आज नई दिल्ली में ब्रिक्स मुल्कों के कौमी सलामती के मुशीरों की दो रोज़ा मीटिंग की मेज़बानी करेगा। इम्तहानात का इनेकाद कराने वाली कौमी एजेंसी 2026 के UGC नेट इम्तहानात का आगाज आज से कराएगी। और अमरीकी सदर जेडी वांस ने कहा है कि ईरान के साथ बातचीत में पेशरफ जारी है। वफूद ने स्विट्जरलैंड में मीटिंग की है। इसी के साथ खबरनामा खत्म हुआ।
7: आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का विशेष कार्यक्रम हिट्स सुपर हिट्स और मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त अपर्णा। आज के कार्यक्रम में हम सुनेंगे फिल्म फगली के कुछ लोकप्रिय और रिवाजों से भरपूर गीत। तो आइए बिना किसी विलंब के संगीत की इस खूबसूरत यात्रा का आरंभ करते हैं।

0: फगली फिल्म के इस गीत को अपने विशिष्ट शैली में स्वर दिया है योयो हनी सिंह ने। गीत के बोल हैं योयो हनी सिंह के और संगीत भी उन्हीं का है। और अब बारी है एक जोशीले और उत्साह से भरपूर गीत की, जिसे स्वर दिया है रफ्तार ने। गीत के बोल है रफ्तार के और संगीत तैयार किया है प्रशांत वाद्यार ने।
1: डीजे वाले भाई साहब लगा दो कोई डुबचिक डुबचिक।

0: पार्टी खत्म, चलो।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी गोरखपुर और कार्यक्रम है हिट सुपर हिट्स, जिसमें आप सुन रहे हैं फिल्म फगली के गीत। तो आइए अब सुनते हैं एक और भावपूर्ण मधुर गीत जो जीवन की राहों और सपनों की बात करता है। इस गीत को स्वर दिया है यो यो हनी सिंह ने। गीत के बोल हैं यो यो हनी सिंह के और संगीत भी उन्हीं का है।

एक्सक्विजिट स्किल, कुड़ियों को पागल कर लेता है विदाउट द फ्रिल्स, सब पूछे हाउ ही डज इट, सब पूछे उसका सीक्रेट, एंड दिस इज व्हाट ही हैज टू से। ओ बेबी मेरे पास पैसा नहीं है, बेबी मेरे पास बंगला नहीं है, बेबी मेरी लंबी गाड़ी नहीं है, वो वो वो वो वो

और सुनैना सरकार ने। गीत के बोल हैं नितिन रहेजा के तथा संगीत है प्रशांत वाद्यार का। और कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं अरिजीत सिंह और पौनी पांडे की आवाज़ में, बोल अर्शिया नाहिद के तथा संगीत है प्रशांत वाद्यार के।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती

0: ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार सुबह 11 बजे मन की बात।
1: स्वच्छता से बदले अपना परिवेश, स्वच्छ जीवन की ओर एक कदम बढ़ाएं।
2: स्वच्छता अपनाएं, स्वास्थ्य का आनंद उठाएं।
1: गंदगी हटाओ, स्वच्छता लाओ, स्वस्थ जीवन जीने का सपना साकार करो।
2: स्वच्छता की आदत, स्वस्थ जीवन की शुरुआत।
3: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbharatiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbharatiarchives.co.in। देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
4: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
5: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे टीवी चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
4: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट,
5: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
4: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की।
5: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
4: For details, log on to www.ddindia.com।
6: कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक, आकाशवाणी से विज्ञापन के अंदाज अनेक।
7: अपनी बात को आसाम से गुजरात तक पहुंचाने की हो बात, आकाशवाणी से बेहतर भला कौन देगा आपका साथ।
6: देश के कोने कोने में विज्ञापन बजा, अपनी बनाओ पहचान। केंद्रीय विक्रय एकांश मुंबई ने यह राह बनाई आसान।
7: देश के सबसे बड़े नेटवर्क आकाशवाणी पर विज्ञापन प्रसारित करने के लिए ऑल इंडिया रेडियो की सिंगल विंडो बुकिंग CSU मुंबई से संपर्क करें।
6: हमारा फोन नंबर है 2202407 या 2288 और STD कोड 022।
7: आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारा मेल आईडी है csumumbai@gmail.com।
8: ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है और आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम हिट्स सुपर हिट्स। और अब बारी है एक मनोरंजक और चटपटे गीत की, जिसे स्वर दिया है अमन त्रिखा, पौनी पांडे और प्रशांत वाध्यार ने। गीत के बोल हैं सुमित अरोड़ा के और संगीत है प्रशांत वाध्यार का। आप सुन रहे हैं फिल्म फगली का गीत।

0: अरे भाई डंडा तो बहुत हो लिया, ये बता दे ताई कहाँ है।
1: आज पहली बार स्पेशल फरमाइश पे भाई आपके सामने कमर तोड़ मनोरंजन पेश करने आ रही हैं लवली।

इस गीत को स्वर दिया है पौनी पांडे, संतोख सिंह और प्रशांत वाध्यार ने। गीत के बोल हैं नितिन रहेजा के तथा संगीत है प्रशांत वाध्यार का। तो श्रोताओं, फिल्म फगली के गीतों पर आधारित आज का यह विशेष कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आशा है कि आपको यह संगीत यात्रा पसंद आई होगी। आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है। कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे जिले की हलचल हमारे लखनऊ केंद्र से।

0: कार्यक्रम में तमकुही राजवा फाजिलनगर विधानसभा क्षेत्रों की 424 करोड़ की लागत वाली 278 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण किया। इस अवसर पर आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए श्री योगी ने अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि पिछली सरकारों ने यहाँ जनता से कोई सरोकार नहीं रखा। यहाँ बुनियादी सुविधाओं का अभाव था, युवाओं के रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं थी। 25 साल पहले यहाँ जंगल पार्टी का आतंक था, इंसेफेलाइटिस से पूरा जिला प्रभावित था, मुसहर समुदाय में भूखमरी थी, लेकिन डबल इंजन की सरकार आने के बाद कुशीनगर जिले की तस्वीर बदल गई है। उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि यह तभी संभव हुआ है जब आपने अपना अच्छा जनप्रतिनिधि चुना है। उन्होंने कहा कि अब फाजिलनगर को पावागढ़ के नाम से जाना जाएगा, हम इसकी मान्यता देने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट कुशीनगर से शीघ्र ही उड़ान शुरू होगी तथा इसी सत्र से कुशीनगर में महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में पढ़ाई शुरू हो जाएगी। उन्होंने कहा कि वे जल्द ही जिले की अन्य विधानसभाओं में भी जनसभा करेंगे।
1: भगवान महावीर से नाम होगा, भगवान महावीर के साथ 24वें तीर्थंकर के साथ पावागढ़ का नाम और पावागढ़ की परंपरा और पावागढ़ की संस्कृति के साथ जुड़ करके देश और दुनिया आपके पास आएगी। अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित कैसे होती है सनातन धर्मावलंबियों से ज्यादा कौन जानता है।
0: इससे पहले उन्होंने विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को चेक और प्रमाण पत्र सौंपा। जनसभा को क्षेत्रीय सांसद शशांक मणि त्रिपाठी, गोरखपुर के सांसद रवि किशन तथा अन्य स्थानीय विधायक गण ने संबोधित किया। बाद में कुशीनगर स्थित निर्माणाधीन महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का निरीक्षण किया। इस अवसर पर उनके साथ प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, जनप्रतिनिधिगण तथा वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने निर्माण कार्यों के प्रगति की समीक्षा करते हुए कार्यदायी संस्था को गुणवत्ता एवं समयबद्धता के साथ विश्वविद्यालय का निर्माण पूरा करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि लगभग 450 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित हो रहा यह विश्वविद्यालय पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसानों, कृषि वैज्ञानिकों तथा युवाओं के लिए आधुनिक कृषि शिक्षा, अनुसंधान एवं नवाचार का प्रमुख केंद्र बनेगा। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय का उद्देश्य किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों से जोड़ना, खेती की लागत कम करना, उत्पादन बढ़ाना तथा किसानों की आय में गुणात्मक वृद्धि सुनिश्चित करना है। प्रदेश सरकार के कारागार मंत्री एवं कुशीनगर जिले के प्रभारी मंत्री दारा सिंह चौहान ने कुशीनगर में सांसद विजय दुबे एवं राज्यसभा सांसद आरपीएन सिंह व विधायक गण के साथ केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आयोजित प्रेस वार्ता में जन कल्याणकारी योजनाओं, विकास कार्यों एवं सुशासन की उपलब्धियों को साझा किया।
2: पीएम किसान सम्मान निधि योजना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, लखपति दीदी योजना, 3 करोड़ से अधिक महिलाओं को इसका फायदा मिल रहा है। हमारी जो लखपति दीदी हैं, वो अपने सरकार से मुख्यमंत्री जीवा योजना के अंतर्गत जो उनको लोन मिलता है, अपने तो रोजगार पाए, दूसरे को भी रोजगार देने का काम करते।
0: इस अवसर पर जिला मुख्यालय पर सूचना विभाग द्वारा केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विभागीय उपलब्धियों संबंधी तथा विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई विकास प्रदर्शनी और स्टॉलों का उन्होंने उद्घाटन व अवलोकन किया। प्रदर्शनी के माध्यम से आम जन को सरकार की योजनाओं एवं उपलब्धियों की जानकारी प्रदान की गई है। राज्य महिला आयोग की सदस्य जनक नंदिनी की अध्यक्षता में कुशीनगर जिले की हाटा तहसील में महिला उत्पीड़न की समस्याओं पर महिला जनसुनवाई का आयोजन किया गया। सुनवाई के दौरान कुल 23 आवेदन सामने आए, जिसे संबंधित विभागों को निस्तारण हेतु भेजा गया। महिला आयोग की सदस्य ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हाटा, आंगनबाड़ी केंद्र, वृद्धाश्रम व वन स्टॉप सेंटर का औचक निरीक्षण किया। कुशीनगर जिले में जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय में विदाई सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें जनपद में अपना कार्यकाल पूरा करने के उपरांत अवकाश प्राप्त विंग कमांडर आलोक सक्सेना ने अपना प्रभार नवागत अधिकारी अवकाश प्राप्त कर्नल डॉक्टर सुधाकर त्यागी को अपना कार्यभार सौंपा। इस अवसर पर उपस्थित पूर्व सैनिकों ने पुष्प मालाएं भेंट कर विंग कमांडर सक्सेना को

0: भाव भी विदाई दी। अपने संबोधन में उन्होंने सभी पूर्व सैनिकों एवं कार्यालय स्टाफ का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि कुशीनगर में उनका कार्यकाल अत्यंत सुखद एवं यादगार रहा है तथा सभी का भरपूर स्नेह सहयोग और सम्मान प्राप्त हुआ है।
1: कुशीनगर जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं मिर्जापुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है SM सभा का।
2: कालीन और पर्यटन के लिए पहचान रखने वाला मिर्जापुर अब औद्योगिक विकास के नए दौर में प्रवेश करने जा रहा है। जिले में 78,148 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्ताव पहुंचा हुआ है। इन निवेशों से न सिर्फ उद्योगों का विस्तार होगा बल्कि 13,000 से ज्यादा युवाओं को रोजगार का अवसर मिलेगा। जिले को अब तक 192 निवेश प्रस्ताव मिले हैं। इनमें से 104 परियोजनाओं को ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के लिए चयनित किया गया है। इनमें 25,625 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है। प्रदेश की योगी सरकार ने हरियाली बढ़ाने के लिए जन सहभागिता सुनिश्चित करते हुए पौधारोपण का महाअभियान की अभी हाल में ही शुरुआत की है। प्रदेश सरकार का प्रयास है कि अभियान के तहत रोपे गए पौधों को 100% सुरक्षित रखा जाए और आम जन को पौधारोपण के प्रति ज्यादा से ज्यादा जागरूक भी किया जाए। इसी कड़ी में मिर्जापुर जनपद में पौधारोपण अभियान को तीज त्योहारों और संस्कृति से जोड़ते हुए विभिन्न प्रकार के वनों की स्थापना के साथ ही विशिष्ट प्रकार के आयोजन भी किए जाएंगे, जिससे आमजन पौधारोपण के साथ साथ उनकी सुरक्षा के लिए भी जागरूक हो सके। वृक्षारोपण अभियान 2026 के तहत जिले में कुल 87,50,015 पौधे रोपने का लक्ष्य रखा गया है। प्रभागी वनाधिकारी राकेश कुमार ने बताया कि पौधारोपण महाअभियान 2026 के तहत जिले में हरियाली का दायरा बढ़ाने के लिए मानसून में 5 वनों व 2 वाटिकाओं की स्थापना वन विभाग व अन्य विभागों द्वारा की जाएगी। इनमें मुख्य रूप से महर्षि चरक औषधि वन स्थापित किया जाएगा, जहां स्वास्थ्य के लिए लाभकारी जड़ी बूटियों और औषधि पौधों का रोपण होगा। इसके अलावा समरस वन, समृद्धि वन, कपिल वन एवं ऊर्जा वन भी बनाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि 15 अगस्त के अवसर पर जनपद के बरकछा में वंदे मातरम वाटिका की स्थापना की जाएगी, जहां पर स्वतंत्रता सेनानियों के प्रिय पौधों का रोपण किया जाएगा। 28 अगस्त को रक्षाबंधन के पावन पर्व के अवसर पर मणिहान रेंज में कप्फा झरना के पास रक्षाबंधन वाटिका की स्थापना की जाएगी, जहां पर भाई बहन मिलकर फलदार पौधों का रोपण करेंगे। इसके अलावा उद्यान विभाग की ओर से आम भंडारा का भी आयोजन किया जाएगा। इस आयोजन के जरिए लोगों को फलदार पौधे रोपने के लिए जागरूक भी किया जाएगा। इसी तरह ग्राम विकास विभाग द्वारा प्रत्येक विकास खंड में भजन का भंडारा कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस आयोजन के तहत आम जनों को रोपने के लिए सहजन के पौधे भी उपलब्ध कराए जाएंगे। इस आयोजन का उद्देश्य सहजन के औषधि गुणों से आम जन को रूबरू कराते हुए ज्यादा से ज्यादा पौधारोपण के लिए जागरूक करना है। केंद्र में भाजपा की मोदी सरकार के 12 साल पूरा होने पर मिर्जापुर के प्रभारी मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी गत दिनों मिर्जापुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जिला पंचायत के सभागार में प्रेस वार्ता की और मोदी सरकार के कामों को गिनाया। कहा, भारत के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश का विकास हो रहा है। देश के अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति को सरकार के योजनाओं का लाभ मिल रहा है।
3: आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सबसे लंबे समय तक चुने हुए प्रधानमंत्री के रूप में काम करने का रिकॉर्ड बनाया है। देश के सबसे अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति को सरकार की योजनाओं का लाभ मिले, इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने काम किया, जिसका नतीजा है कि 25 करोड़ से अधिक लोग गरीबी रेखा से बाहर हुए हैं। किसानों की आमदनी बढ़ाना, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना, युवाओं को रोजगार देने वाला बनाना, निवेश को नई ऊंचाई पर ले जाना सरकार की प्रमुख प्राथमिकता रही है।
2: केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने गत दिनों मिर्जापुर के BLJ ग्राउंड में जिला प्रशासन एवं सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा लगाई गई विकसित भारत प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। केंद्रीय राज्य मंत्री द्वारा विकसित भारत प्रदर्शनी व जनपद के विभागों द्वारा लगाई गई विकास प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। प्रदर्शनी में केंद्र सरकार की 12 वर्ष की योजनाओं की उपलब्धियों एवं प्रदेश सरकार की 9 वर्ष की उपलब्धियों तथा स्थानीय उपलब्धियों और मिर्जापुर के विकास कार्यों को दिखाया गया था। केंद्रीय राज्य मंत्री स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा रसायन उर्वरक भारत सरकार अनुप्रिया पटेल ने देवरी ब्लॉक हलिया मिर्जापुर में भूमि पूजन कर हरबरा MP बॉर्डर तक मार्ग चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य शुभारंभ किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि चौड़ीकरण व उच्चीकरण इन दिनों कार्यों के शुभारंभ की आवश्यकता बहुत लंबे समय से महसूस की जा रही थी। इसके लिए हम निरंतर प्रयासरत भी थे। उत्तर प्रदेश सरकार के ऊर्जा एवं नगर विकास मंत्री AK शर्मा गत दिनों विंध्याचल धाम पहुंचकर मां विंध्यवासिनी का विधि विधान से दर्शन पूजन किया, विकास और जन कल्याण की कामना की। दर्शन के उपरांत AK शर्मा ने विद्युत विभाग के कार्यों पर प्रकाश डाला और पत्रकारों के सवालों का जवाब दिया।
4: स्मार्ट मीटर जो है वो प्रीपेड मोड में नहीं बल्कि पोस्ट पेड मोड में चल रहे हैं और कहीं कोई मीटर को लेकर की समस्या नहीं है। गर्मी का सीजन है, थोड़ा लोड बढ़ने से कई बार ट्रिपिंग होती है, लेकिन पहले की अपेक्षा बहुत ज्यादा बिजली आ रही है। विंध्याचल जैसे जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ अगर 20 घंटे बिजली आ रही है और 2-4 मिनट के लिए कहीं किसी की आंधी आती है, तूफान आता है, उसमें बिजली की व्यवस्था में थोड़ा विक्षेप होता है, नहीं तो सामान्य रूप से ग्रामीण क्षेत्र में भी 20 घंटे कम से कम बिजली और शहरी क्षेत्रों में तो 24 घंटे बिजली हम देने का पूरा इंतजाम किए हुए।
1: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
5: ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है, प्रस्तुत है देश गान।

0: के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे उर्दू कार्यक्रम हमारे लखनऊ केंद्र से।
1: हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। पेश है उर्दू कार्यक्रम।
2: पेश खिदमत है उर्दू प्रोग्राम। सभी सामईन को निकहत सिद्दीकी का आदाब। सामईन, आज उर्दू बज्म में हम आपके लिए लेकर आए हैं मकाला मिर्जा हादी रुसवा नावेल उमरावजान अदा के आईने में, और कलामी शायर के तहत सुनिएगा जनाब आफताब अहमद अंसारी से उनका कलाम। सबसे पहले समाद फरमाइए डॉक्टर जूही बेगम से मकाला मिर्जा हादी रुसवा नावेल उमरावजान अदा के आईने में।
3: मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रुसवा का शुमार उर्दू के नाबग़े रोज़गार उदबा में होता है। हमा जहत शख्सियत के मालिक रुसवा बयक वक्त मुफक्किर, फ़लसफ़ी, रियाजी दां और मौसीकी के रमज शनास थे। उनकी इल्मी इस्तेदाद ने उनकी तख्लीकी बसीरत को गहराइयों गिराई अता की। यही वजह है कि उनका तख्लीकी जहान जज्बात व एहसासात के साथ साथ फ़िक्र व दानिश की रोशनी से भी मुनव्वर है। मिर्ज़ा हादी रुसवा का ताल्लुक नावल के हवाले से उर्दू अदब के उन अजीम मेमारों में होता है जिन्होंने सिर्फ नावल को इस्तेहकाम बख्शा। उन्होंने नावल निगारी की दुनिया में उस वक्त कदम रखा जब उर्दू फिक्शन दास्तानवी असरात से मुकम्मल तौर पर नजात हासिल नहीं कर सका था। रुसवा ने अपनी खलाकाना सलाहियत, फनी शऊर और हकीकत पसंदाना तर्ज इजहार के जरिए उर्दू नावल को एक नई फिक्री और जमालियाती जहत अता की। उन्होंने इस सिन्फ का रिश्ता न सिर्फ जिंदगी की हकीकतों से जोड़ा बल्कि उसे अजमत, वक़ार, फनी पुख्तगी और नफसियाती बसीरत अता की। अगरचे उर्दू नावल के इब्तदाई नकूश डिप्टी नज़ीर अहमद, रतन नाथ सरशार और अब्दुल हलीम शरर के यहाँ मिलते हैं, लेकिन नावल को इंसानी शख्सियत के दाखिली रमूज व असरार, मुआशरती तजादात और तहजीबी जवाल के शऊर से मुतारफ कराने का कारहाए नुमाया रुसवा ने अंजाम दिया। रुसवा का अहद सियासी, तहजीबी, मुआशी, समाजी हर सतह पर बहरान का शिकार था। बिलखसूस 1857 के बाद हिंदुस्तान की मुआशरती और तहजीबी जिंदगी शदीद तगैरात से गुजर रही थी। कदीम अकदार मिट रही थी और नई तहजीबी क़ुवतें सर उठा रही थीं। रुसवा ने इस उबूरी दौर के इंसानी और तहजीबी मसाइल का बनज़रे गैर मुताला किया और उन्हें अपने नावलों में नहायत हकीकत बीनी से पेश किया। यूं तो रुसवा का तख्लीकी सरमाया इफ़्शाए राज, ज़ाते शरीफ, शरीफ ज़ादा, अख्तरी बेगम जैसे नावलों से मामूर है, लेकिन उनकी शोहरत का तमाम तरदारो मदार उनके शोरह आफाक नावल उमराव जान अदा पर है। उर्दू नावल की तारीख में बाज़ तसनीफ़ात ऐसी हैं जो महज अदबी सरमाया नहीं बल्कि अपने अहद का तहजीबी, समाजी और तारीखी दस्तावेज़ भी हैं। उमराव जान अदा का शुमार ऐसी ही तख्लीकात में होता है। अपने नावलों को अपने ज़माने की तारीख कहकर पुकारने वाले रुसवा ने उमराव जान की सरगुजश्त के पसे पर्दा लखनऊ की उस तहजीब की दास्तान बयान की है जो अपने हुस्न लताफत के बावजूद जवाल के दहाने पर खड़ी है। महफिलें, मुशायरे, मूसीकी, रक्स व सुरूर, ज़बान की शाइस्तगी और मुआशरती आदाब ये सब मौजूद हैं, लेकिन उसके बतन में एक टूटती हुई दुनिया की आहट भी सुनाई देती है। रुसवा ने किसी मुअर्रिख की मानिंद नहीं बल्कि एक हसास फनकार की हैसियत से लखनऊ की जवाल पजीर तहजीब, तवायफाना और ऐश परस्ताना मुआशरत, इंसानी जज्बात और नफसियाती कैफियात को इस फनकाराना महारत से पेश किया है कि नावल उर्दू अदब के नवादिरात में शामिल हो गया। मिर्जा हादी रुसवा की अदबी शख्सियत और उनकी नावल निगारी के फनकाराना महासिन को हम उमराव जान अदा के आईने में बखूबी देख और समझ सकते हैं। उमराव जानदा पहली मर्तबा 1899 में शाया हुआ। ये नावल लखनऊ की एक मशहूर तवायफ उमराव जान की जिंदगी की दास्तान पर मबनी है। उमराव जानदा खुद अपनी जिंदगी की रुदाद रुसवा से बयान करती है। उमराव जान को, जिसका असल नाम अमीरन था, बचपन में ही अगवा करके लखनऊ के कोठे पर फरोख्त कर दिया जाता है जहाँ उस जमाने के दस्तूर के मुताबिक तालीम और तरबियत के जेवर से आरास्ता हो ہو کر وہ ایک

मशहूर तवायफ बन जाती है। जिंदगी के मुख्तलिफ मराहिल, मोहब्बतों, महरूमियों, कामयाबी और नाकामियों से गुजरते हुए उसकी शख्सियत कारी के रूबरू मुकम्मल तौर पर मुजस्सम हो उठती है। दरअसल रुस्वा ने उमराव जान के किरदार के जरिए उस तबके की जिंदगी को मौजूए बयान बनाया है जिसे मुआशरा हकारत की निगाह से देखता है। रुस्वा का कमाल यह है कि उन्होंने एक तवायफ को इंतहाई जहीन, हसास और सुखन शनास औरत के रूप में पेश किया है। मिर्जा रुस्वा के नावलों की सबसे अहम फनी खसूसियत हकीकत निगारी है। उमराव जान अदा में उन्होंने जिंदगी को तखयलाती या रोमानवी अंदाज के बजाय उसके हकीकी पैराए में पेश किया है। इस नावल में लखनऊ की मुआशरत, रस्म और रिवाज, तवायफों की जिंदगी, उमरा, रुसा और नवाबीन की महफिल ऐशो तरब, मौसीकी, तहजीब और सकाफत और माशरती तजादात नहायत जामे और फितरी अंदाज में सामने आते हैं। इस ज़िम्न में रुस्वा की नॉवल निगारी का इम्तियाज ये है कि उनकी हकीकत निगारी महज खारजी मनाजिर तक महदूद नहीं बल्कि इंसानी बातिन तक रसाई हासिल करती है। उमराव जान अदा का प्लॉट नहायत मरबूत और फितरी है। नॉवल की कहानी उमराव जान की जिंदगी के गिर्द घूमती है और वाकयात एक मंतिकी रब्त के साथ इर्तिका पजीर होते हैं। अमीरन का अगवा होकर खानम के कोठे पर पहुंचना, उसका उमराव जान बनना और एक ऐसी दुनिया में दाखिल होना जहां खानम के अलावा बुआ हुसैनी, बिस्मिल्ला और खुर्शीद जान हैं, गौहर मिर्जा, नवाब सुल्तान, फजल अली और फैज अली हैं और उन सब की अपनी अपनी कहानी है। मुख्तलिफ इश्किया और मुआशरती तजरिबात लखनऊ की तबाही और जिंदगी के आखिरी मराहिल तक तमाम वाकयात एक दूसरे से ऐसे मरबूत हैं कि कहीं भी कोई झोल गैर जरूरी पेचीदगी या मस्नूई ड्रामाइयत का एहसास नहीं होता। इस नावल का एक अहम वस्फ इसकी खुद नविश्त नुमा साख्त है। चूँकि उमराव जान खुद अपनी कहानी बयान करती है इसलिए वाकयात में फितरी रवानी और हकीकत पैदा हो जाती है। तकनीक की ये खूबी इस नावल को इनफरादियत अता करने में मुआविन साबित होती है। रुस्वा ने उर्दू अदब को नफसियाती किरदार निगारी से रूशनास कराया। रुस्वा को उर्दू नावल में नफसियाती किरदार निगारी की रिवायत को मजबूत बुनियाद फराहम करने का शरफ हासिल है। रुस्वा ने अपने किरदारों की दाखिली कैफियत को जिस फनी महारत से आश्कार किया है वो उर्दू नावल में एक नई रिवायत का आगाज है। उमराव जान अदा को लाजवाल बनाने में इसके मुतवाजिन और दिलकश प्लॉट के अलावा इसकी फितरी और जानदार किरदार निगारी का बड़ा अमल दखल है। रुस्वा अपने किरदारों को बाहर से नहीं देखते बल्कि उनके अंदरून में उतरकर उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। उमराव जान अदा के किरदार उर्दू अदब के उन चंद किरदारों में शामिल हैं जो मुकम्मल नफसियाती इर्तिका रखते हैं। मसलन रुस्वा उमराव जान के किरदार को बचपन की मासूमियत, जवानी के ख्वाब, मोहब्बत की नाकामियाँ, जिंदगी की तलखियाँ, महरूमियाँ और ना आसूदगी, बढ़ती हुई उम्र का एहसास इन तमाम अज्जा से तश्कील देते हैं। यही वजह है कि उमराव जान एक जीता जागता इंसान महसूस होती है, महज एक अफसानवी किरदार नहीं। सानवी किरदारों को भी उन्होंने इसी फनी महारत से तख्लीक किया है। नवाब सुल्तान मोहब्बत की मासूमियत की अलामत है, फैज अली मुहिम जुई और जिंदगी की गैर यकीनी सूरत हाल की नुमाइंदगी करता है, जबकि खानम जान का किरदार उस मकरूह माशरती निज़ाम का इस्तियारा बन जाता है जिसने उमराव जान की जिंदगी का रुख बदल कर रख दिया। मिर्जा रुस्वा की किरदार निगारी का एक नुमाया वस्फ ये भी है कि उन्होंने अपने मरकजी किरदारों के शाना बशाना जिमनी किरदारों पर भी भरपूर तवज्जो सर्फ की है और उनकी शख्सियत के मामूली से मामूली पहलू को भी नज़रअंदाज नहीं किया। वक्त और हालात की तब्दीलियों के पेश नज़र इस नावल के किरदार भी जीते जागते इंसानों के मानिंद इर्तिकाई मराहिल से गुजरते नजर आते हैं। किरदार निगारी की इन्हीं खसूसियात की बिना पर उमराव जान अदा का हर किरदार कारी के जहन में अपनी जगह बनाने में कामयाब है। प्लॉट और किरदार निगारी की तरह मुकालमा निगारी में भी रुस्वा ने अपनी खल्लाकाना महारत का सबूत देते हुए फनकारी का आला मेयार पेश किया है। इस नावल के मुकालमे मुख्तसर, बरजस्ता, नहायत चुस्त और किरदारों से पूरी मुताबिकत रखते हैं जिनके जरिए रुस्वा इन किरदारों की नफ्सियात और जज्बात की भरपूर अक्कासी करते हैं। ये मुकालमे न सिर्फ किरदारों की शख्सियत के इजहार में बल्कि कहानी को आगे बढ़ाने में भी मददगार साबित होते हैं। उमराव जान अदा

0: के मुकालमों में लखनऊ की शुस्ता और शाइस्ता जबान की हलावत, तहजीबी रख रखाव और अदबी लताफत नुमायाँ नजर आती हैं। इसका उसलूब इंतहाई शगुफ्ता रवां है। रुस्वा ने मुश्किल अल्फाज और गैर जरूरी इबारत आरई से इस नावल के हुस्न को मजरू नहीं होने दिया। इस नावल में हकीकत निगारी, मरबूत प्लॉट, जानदार किरदार निगारी, मुअसर मुकालमे और पुरकशिश उसलूब बयान अपनी पूरी आबोताब के साथ जलवागर हैं। ये नावल न सिर्फ एक तवायफ की सरगुजश्त है, बल्कि जवाल पजीर लखनऊ की तहजीब व सकाफत, इंसानी नफ्सियात और मुआशरती जिंदगी का ऐसा निगार खाना है जिसमें मिर्जा हादी रुस्वा की खलाकाना सलाहियत और फनकाराना आजमत अपनी तमाम तरताबनाकी के साथ नजर आती हैं। यही वजह है कि उमराव जान अदा उर्दू नावल का एक ऐसा लाफानी शाहकार है जो अपने हमरा अपने खालिक को भी हयात जाविदा अता करता है।
1: अभी आप मकाला समात फरमा रहे थे और अब समात फरमाइए जनाब आफताब अहमद अंसारी से उनका कलाम।
2: गजल का मतला पेश खिदमत है कि एक दिन कटेगा जड़ से शजर, उसके बाद क्या। एक दिन कटेगा जड़ से शजर, उसके बाद क्या। बिखरेगी धूप होगा सफर, उसके बाद क्या। बिखरेगी धूप होगा सफर, उसके बाद क्या। उठेगा एक हुजूम कयामत हर एक सू, उठेगा एक हुजूम कयामत हर एक सू। होगी जमीन जेर व जबर, उसके बाद क्या। होगी जमीन जेर व जबर, उसके बाद क्या। और आंखों में पाल रखे हैं जो ख्वाब जिंदगी, आंखों में पाल रखे हैं जो ख्वाब जिंदगी। टूटेंगे सारे ख्वाब अगर, उसके बाद क्या। टूटेंगे सारे ख्वाब अगर, उसके बाद क्या। और कायल नहीं जो लोग वफाओं की राह के, कायल नहीं जो लोग वफाओं की राह के। मिल जाए भी जो उनको डगर, उसके बाद क्या। मिल जाए भी जो उनको डगर, उसके बाद क्या। और मीजान अदल तुमने तो नीलाम कर दिया, मीजान अदल तुमने तो नीलाम कर दिया। हाथों में होगा तेगो सिपर, उसके बाद क्या। हाथों में होगा तेगो सिपर, उसके बाद क्या। और ये मकता देखिएगा कि एक शख्स ले गया मेरे ख्वाबों का आफताब, एक शख्स ले गया मेरे ख्वाबों का आफताब। अब आए भी जो उसकी खबर, उसके बाद क्या। अब आए भी जो उसकी खबर, उसके बाद क्या। एक गजल और देखिए पेश करता हूँ। पेड़ पर मुंतशिर घोंसला देखकर, मतलब है कि पेड़ पर मुंतशिर घोंसला देखकर, गम से पत्थर हुई फाख्ता देखकर, गम से पत्थर हुई फाख्ता देखकर। अब फूल शाखों पे कुछ और खिलने लगे, फूल शाखों पे कुछ और खिलने लगे। तितलियों का हसी मशगला देखकर, तितलियों का हसी मशगला देखकर। और शब की आंखों में भी रोशनी बढ़ गई, बतौर खास देखिएगा कि शब की आंखों में भी रोशनी बढ़ गई। चांद का झील में आईना देखकर, चांद का झील में आईना देखकर। अब फूल पत्तों से बाहर निकलने लगे, फूल पत्तों से बाहर निकलने लगे। शबनमी धूप का दायरा देखकर, शबनमी धूप का दायरा देखकर। और दिल की वीरान दहलीज महकी बहुत, दिल की वीरान दहलीज महकी बहुत। आपके लब पे एक कहकहा देखकर, आपके लब पे एक कहकहा देखकर। और धूप ने ओढ़ ली शाम की चादरें, धूप ने ओढ़ ली शाम की चादरें। अब्र का टूटता हौसला देखकर, अब्र का टूटता हौसला देखकर। और लफ्ज कागज पर थक कर बिखरने लगे, लफ्ज कागज पे थक कर बिखरने लगे। रंग गिरता रहा हाशिया देखकर, रंग गिरता रहा हाशिया देखकर। और एक दरिया किनारे से वापस हुआ, एक दरिया किनारे से वापस हुआ। रेत पर प्यास का हादसा देखकर, रेत पर प्यास का हादसा देखकर। और उम्र भर जिसको तामीर करते रहे, उम्र भर जिसको तामीर करते रहे। खाक में मिल गया जलजला देखकर, खाक में मिल गया जलजला देखकर। फिर निकलने को है आफताब एक नया, फिर निकलने को है आफताब एक नया। शब का बिखरा हुआ सिलसिला देखकर, शब का

0: की बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: पूर्वांचल का पहला इनोवेशन सेंटर KIPM गीड़ा से करें अपने सपने साकार। BTech पॉलिटेक्निक MBA MCA BBA BCA B फार्मा M फार्मा और D फार्मा में एडमिशन ओपन। KIPM गीड़ा गोरखपुर।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति में समुद्री क्षमता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और भारत इसे मजबूत बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। कोलकाता में कल स्वदेश निर्मित 3 नौसैनिक पोतों दूनागिरी, संशोधक और अग्रय को नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है और केवल हथियारों का खरीदार देश बनकर नहीं रहना चाहता।
1: आज भारत रक्षा क्षेत्र में केवल खरीदार बनकर नहीं रहना चाहता। हमारी सैन्य शक्ति दुनिया के लिए बाजार नहीं बन सकती। मेरी शक्ति की सामर्थ्य की पहचान मेरी आत्मनिर्भरता पर है।
0: श्री मोदी ने कहा कि समुद्री सामर्थ्य के बिना किसी भी देश वैश्विक शक्ति नहीं बन सकता। विकास, सुरक्षा और समुद्री का सीधा संबंध समुद्र से है। श्री मोदी ने कहा कि INS विक्रांत से शुरू हुई आत्मनिर्भरता की यात्रा को इन नए पोतों के शामिल होने से और गति मिलेगी।
1: INS विक्रांत से लेकर आज तक की यात्रा केवल नए युद्ध पोतों की यात्रा नहीं है, यह भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता की यात्रा भी है। इनका निर्माण भारत में हुआ है, इनकी डिजाइन भारत में तैयार हुई है, इनके निर्माण में भारतीय उद्योगों की प्रतिभा लगी है और यही नए भारत की सबसे बड़ी ताकत है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 को वैश्विक उत्सव बनाने के लिए विश्व भर के लोगों का आभार व्यक्त किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये देखकर खुशी होती है कि योग सभी क्षेत्रों और विभिन्न देशों के लोगों को स्वस्थ जीवन तथा कल्याण की साझा खोज में एकजुट कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल मध्य प्रदेश के कोनो राष्ट्रीय उद्यान का दौरा किया। उन्होंने भारत के प्रमुख पहल चीता पुनर्वास परियोजना की प्रगति की समीक्षा भी की। इस परियोजना का उद्देश्य देश में विलुप्त हो रही वन्य जीवों की प्रजाति को फिर से बढ़ावा देना है। अपनी यात्रा के दौरान राष्ट्रपति ने उद्यान के चीते प्रबंधन क्षेत्र का दौरा किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की UGC नेट जून 2026 परीक्षा आज से शुरू होगी। ये राष्ट्रीय स्तर की पात्रता परीक्षा कंप्यूटर आधारित टेस्ट CBT माध्यम से 30 जून तक प्रतिदिन 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज से मंगोलिया और दक्षिण कोरिया की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार मंगोलिया यात्रा के दौरान विदेश मंत्री बी बत्सेतिक के साथ द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसके बाद वे 24 और 25 जून को दक्षिण कोरिया का दौरा करेंगे। इस दौरान उनकी दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ वार्ता होगी। डॉ जयशंकर दक्षिण कोरिया के जेजू में आयोजित जेजू शांति और समृद्धि मंच में मुख्य भाषण भी देंगे। भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 2 दिन की बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान साइबर सुरक्षा, डिजिटल खतरों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े जोखिमों तथा अन्य गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। प्रतिनिधि आतंकवाद रोधी सहयोग और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के सुरक्षित उपयोग से जुड़े मुद्दों की भी समीक्षा करेंगे। बैठक में भारत, ब्राजील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स के 11 सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुख भाग लेंगे। इस वर्ष भारत की अध्यक्षता का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास का निर्माण। अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वैंस ने कहा है कि ईरान के साथ वार्ता में प्रगति हो रही है। स्विट्जरलैंड में ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों पर अमेरिका और ईरान के वरिष्ठ प्रतिनिधि मंडलों के बीच बातचीत जारी है। पुरुष हॉकी में भारत ने कल रॉटरडैम में FIH प्रो लीग के अपने अंतिम मुकाबले में नीदरलैंड को 3-2 से हराकर शानदार जीत दर्ज की। भारत की ओर से जुगराज सिंह, अभिषेक और राजेंद्र सिंह ने गोल किए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है। फिल्म संगीत के कार्यक्रम गाते गुनगुनाते में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। आज की इस संगीतमय प्रस्तुति में हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी फिल्मों के कुछ

चुनिंदा और सदाबहार गीत। कार्यक्रम का पहला गीत है फिल्म मोहब्बत से। प्रेम की कोमल भावनाओं को अभिव्यक्त करता यह मधुर गीत अपने सुरीले संगीत और भावपूर्ण गायन के लिए याद किया जाता है।

फिल्म मोहब्बत के इस मधुर गीत को स्वर दिया है कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति ने। गीत के बोल हैं समीर के और संगीत है नदीम श्रवण की। और आइए अब सुनते हैं फिल्म विरासत का लोकप्रिय गीत। इस गीत को अपनी मधुर आवाज से सजाया है उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति ने। गीतकार हैं जावेद अख्तर और संगीतकार हैं अनु मलिक।

और आइए अब सुनते हैं एआर रहमान के संगीत से सजे फिल्म ताल के एक बेहद लोकप्रिय गीत को। प्रेम के बिना जीवन की अधूरी अनुभूति को व्यक्त करता यह गीत अपने संगीत और गायकी के लिए विशेष पहचान रखता है। इस गीत को स्वर दिया है एआर रहमान, अनुराधा श्रीराम और सुजाता मोहन ने। बोल हैं आनंद बख्शी के और संगीत एआर रहमान का।

1997 की हिंदी फिल्म दौड़ का एक बेहद लोकप्रिय सदाबहार गीत अभी आप सुन रहे थे। इसे आशा भोसले और केजे यशुदास ने अपनी आवाज़ दी है। संगीत है एआर रहमान का और बोल महबूब द्वारा लिखे गए। और वक्त हो चुका है एक छोटे से अंतराल का।

पूर्वांचल का पहला इनोवेशन सेंटर KIPM गीड़ा से करे अपने सपने साकार। BTech पॉलिटेक्निक MBA MCA BBA BCA B फार्मा M फार्मा और D फार्मा में एडमिशन्स ओपन। KIPM गीड़ा गोरखपुर।

अर्थ फिल्म के इस सदाबहार गाने को मशहूर गजल गायिका चित्रा सिंह ने अपनी सुरीली आवाज़ में गाया है। गीत को संगीत से सजाया जगजीत सिंह ने। और कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं फिल्म ताड़ीपार से, आवाज़ें अलका याग्निक और कुमार सानू की।

0: जल्दी टिफिन पैक करो। राजू मोबाइल छोड़ो।
1: अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
0: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
1: तो फिर सही नंबर,
0: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
1: आपने तो बचा लिया दीदी।
0: काम से नहीं।
2: आरबीआई कहता है
3: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।

0: स्वच्छ भारत सुंदर भारत स्वच्छता शब्द भर नहीं सक्रिय सचेत कर्म है।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी गोरखपुर फिल्म संगीत का कार्यक्रम गाते गुनगुनाते। श्रोताओं, अब बारी है फिल्म आंदोलन के एक लोकप्रिय गीत की। मिलन की खुशी और लंबे इंतजार के बाद की भावनाओं को व्यक्त करता है यह गीत। श्रोताओं को भाव विभोर कर देता है। इस गीत को स्वर दिया है अलका याग्निक और कुमार सानू ने। संगीत नदीम श्रवण के और बोल समीर के।

कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे आंदोलन फिल्म से ये गीत। और श्रोताओं, अब आइए कार्यक्रम के आखिरी में सुनते हैं फिल्म पालकी का ये गीत, जिसे गाया है मोहम्मद रफ़ी, मन्ना डे, आशा भोसले और साथी कलाकारों ने। संगीतकार है नौशाद और बोल लिखे हैं शकील बदायूनी ने।

0: तो श्रोताओं, फिल्म संगीत के कार्यक्रम गाते गुनगुनाते में बस आज इतना ही। आशा है कि इन मधुर गीतों ने आपके मन को आनंद और सुकून से भर दिया होगा। आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है। कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की दो दिन की बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल

0: सामरिक शक्ति में समुद्री क्षमता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और भारत इसे मजबूत बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। कोलकाता में कल स्वदेश निर्मित 3 पोतों दुनागिरी, संशोधक और अग्रे को नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है।
1: आज भारत रक्षा क्षेत्र में केवल खरीदार बनकर नहीं रहना चाहता, हमारी सैन्य शक्ति दुनिया के लिए बाजार नहीं बन सकती। मेरी शक्ति की सामर्थ्य की पहचान मेरी आत्मनिर्भरता पर है।
0: श्री मोदी ने कहा कि समुद्री सामर्थ्य के बिना कोई भी देश वैश्विक शक्ति नहीं बन सकता। विकास, सुरक्षा और समृद्धि का सीधा संबंध समुद्र से है। श्री मोदी ने कहा कि INS विक्रांत से शुरू हुई आत्मनिर्भरता की इस यात्रा को इन नए पोतों से और गति मिलेगी। प्रधानमंत्री ने बताया कि पिछले कुछ वर्षों में 40 से अधिक युद्धपोत और पनडुब्बियां नौसेना में शामिल की गई हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान का दौरा किया। उन्होंने भारत की प्रमुख पहल चीता पुनर्वास परियोजना की प्रगति की समीक्षा की। इस परियोजना का उद्देश्य देश में विलुप्त हो रही वन्य जीवों की प्रजाति को फिर से बढ़ावा देना है। राष्ट्रपति ने उद्यान के चीता प्रबंधन क्षेत्र का दौरा किया। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर जलपाईगुड़ी के जलदाबाड़ी में एक सड़क दुर्घटना में 2 और घायलों की मृत्यु होने से मृतकों की संख्या 6 हो गई है। मृतकों में 2 महिलाएं और 1 बच्चा शामिल है। 25 घायल यात्रियों का इलाज जलपाईगुड़ी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार लगभग 32 यात्रियों वाली उत्तर बंगाल राज्य परिवहन निगम की एक बस को पीछे से आ रही स्टेशनरी ट्रक ने टक्कर मार दी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और 2 मंत्रियों ने मृतकों के प्रति दुख व्यक्त किया है और घायलों के तीव्र स्वस्थ होने की कामना की है। UGC नेट जून की परीक्षा आज से शुरू हो रही है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने बताया कि कंप्यूटर आधारित परीक्षा CBT के माध्यम से 30 जून तक प्रतिदिन 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज से मंगोलिया और दक्षिण कोरिया की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार मंगोलिया में श्री जयशंकर विदेश मंत्री बी बत्सिस्तेग के साथ द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। 24 और 25 जून को वे दक्षिण कोरिया की यात्रा करेंगे। इस दौरान डॉ जयशंकर विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ वार्ता करेंगे। डॉ जयशंकर दक्षिण कोरिया के जेजू में आयोजित जेजू शांति और समृद्धि मंच में मुख्य भाषण भी देंगे। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि ईरान के साथ वार्ता में प्रगति हो रही है। स्विट्जरलैंड में ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों पर अमेरिका तथा ईरान के वरिष्ठ प्रतिनिधिमंडलों के बीच बातचीत जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सफलता इस बात का प्रमाण है कि योग न केवल विश्वभर में लाखों लोगों को शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने में मदद कर रहा है, बल्कि उन्हें सकारात्मक जीवन जीने के लिए प्रेरित भी कर रहा है। सोशल मीडिया पर संस्कृत श्लोक साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि योग मन को पूर्णतः शांत करने का साधन है। पुरुष हॉकी में भारत ने कल रॉटरडम में FIH प्रो लीग के अपने अंतिम मुकाबले में नीदरलैंड्स को 3-2 से हराकर शानदार जीत दर्ज की। भारत की ओर से जुगराज सिंह, अभिषेक और राजेंद्र सिंह ने गोल किए। विदेश मामलों की स्थायी समिति ने सांसद शशि थरूर की अध्यक्षता में सामरिक सीमा सुरक्षा और विदेश नीति मुद्दों की समीक्षा करने के लिए जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख की 4 दिन की अध्ययन यात्रा शुरू की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे लोकगीतों का कार्यक्रम लोक रंग।
3: जिंदगी बहुत कीमती है,
4: उससे तो सस्ता ही है।
5: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, आम सरिये के मुकाबले लगभग 10% ज्यादा भूकंप रोधक।
6: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास
7: और भरोसा।
6: जानो फिर मानो।
8: पूर्वांचल का पहला इनोवेशन सेंटर KIPM गीड़ा से करें अपने सपने साकार। BTech पॉलिटेक्निक MBA MCA BBA BCA B Pharma M Pharma और D Pharma में एडमिशन ओपन। KIPM गीड़ा गोरखपुर।
9: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार

0: परिवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें रविवार सुबह 11 बजे मन की बात।
1: लोकगीतों के कार्यक्रम में आज के कलाकार हैं रामजी शर्मा व साथी। आइए सुनते हैं इनके स्वर में देवी गीत।

बहुत अच्छे।

0: लोक रंग कार्यक्रम जारी रहेगा, लेते हैं छोटा सा अंतराल।
1: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in। देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
2: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
3: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे टीवी चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
2: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट,
3: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
2: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की।
3: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
2: For details, log on to www.ddindia.com।
0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम लोकरंग, कलाकार हैं रामजी शर्मा व साथी।

0: स्वच्छ भारत सुंदर भारत स्वच्छता शब्द भर नहीं सक्रिय सचेत कर्म है।
1: पूर्वांचल का पहला इनोवेशन सेंटर KIPM गीड़ा से करे अपने सपने साकार। बीटेक पॉलिटेक्निक MBA MCA BBA BCA बी फार्मा एम फार्मा और डी फार्मा में एडमिशन ओपन। KIPM गीड़ा गोरखपुर।
2: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
3: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
2: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
3: अब घर दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
2: डायल कीजिए 8700014242।
3: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
4: अभी आप सुन रहे थे लोकगीतों का कार्यक्रम लोक रंग। कलाकार थे रामजी शर्मा व साथी। ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि।
5: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन।

0: की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें रविवार सुबह 11 बजे मन की बात।
1: गीतांजलि के सुरीले सफर में आप सभी का स्वागत है और आज हम यादों के झरोके से कुछ ऐसे नगमे लेकर आए हैं जो सीधे आपके दिलों में उतर जाएं। चलिए सुरों की इस महफिल की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सुनते हैं फिल्म तेरे मेरे सपने का वो यादगार गीत जो खामोशियों को भी आवाज़ देता है।

श्रोताओं, जब संगीत में सारी भावनाएं और अपनेपन का एहसास जुड़ जाता है तो वो सीधे हमारे हृदय को छू जाता है। आइए सुनते हैं फिल्म वास्तव का ये बेहद ही भावुक और मधुर गीत।

0: गीतांजलि कार्यक्रम जारी रहेगा, पर उसके पहले आइए सुनते हैं कुछ संदेश।
1: कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक, आकाशवाणी से विज्ञापन के अंदाज अनेक।
2: अपनी बात को आसाम से गुजरात तक पहुंचाने की हो बात, आकाशवाणी से बेहतर भला कौन देगा आपका साथ।
1: देश के कोने कोने में विज्ञापन बजा, अपनी बनाओ पहचान। केंद्रीय विक्रय एकांश मुंबई ने यह राह बनाई आसान।
2: देश के सबसे बड़े नेटवर्क आकाशवाणी पर विज्ञापन प्रसारित करने के लिए ऑल इंडिया रेडियो की सिंगल विंडो बुकिंग CSU मुंबई से संपर्क करें।
1: हमारा फोन नंबर है 2202407 या 2288 और STD कोड 022।
2: आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारा मेल आईडी है csumumbai@gmail.com।
3: पूर्वांचल का पहला इनोवेशन सेंटर KIPM गीड़ा से करें अपने सपने साकार। BTech पॉलिटेक्निक MBA MCA BBA BCA B Pharma M Pharma और D Pharma में एडमिशन्स ओपन। KIPM गीड़ा गोरखपुर।

0: स्वच्छ भारत सुंदर भारत स्वच्छता शब्द भर नहीं सक्रिय सचेत कर्म है।
1: आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि। श्रोताओं, और अब वक्त है 90 के दशक के उस सुपरहिट यादगार गाने का जिसे सुनकर पुरानी यादें ताज़ा हो जाते हैं। आइए सुनते हैं आज की फिल्म से ये प्यारा सा गीत।

0: अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू की आवाज़ में आपने सुना आशिकी फिल्म से इस गीत को। गीतांजलि कार्यक्रम आप सुन रहे हैं, पर उसके पहले आइए सुनते हैं कुछ संदेश।
1: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
2: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
3: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे टीवी चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
2: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट।
3: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
2: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की।
3: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
2: For details, log on to www.ddindia.com।
0: और अब आज के सुरीले सफर की आखिरी प्रस्तुति फिल्म संघर्ष से सोनू निगम की खूबसूरत आवाज़ में पेश है ये नगमा।

इस गीत के साथ ही गीतांजलि कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
1: सभी श्रोताओं को आपके साथी अजीत का नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आप सबका उमंग कार्यक्रम में। तो श्रोताओं आइए सबसे पहले सुनते हैं हमें

सकारात्मक भाव को बनाए रखना। और आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है वन बघेरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से योगेश सारवा, आशा सारवा, नीरज, नीलेश, अंजलि और रोशनी सारवा जी का। दूसरा संदेश हमें मिला है डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार देव, डॉली, बेबी, पूजा, पुष्कर, लेहान और जिज्ञासा के साथ साथ विराट तामुरिया, तेजस्वी और गौरव तामुरिया जी का। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिम्पल देवांगन का। अगला संदेश हमें मिला है भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता और कमला देवी गुप्ता जी का। और आइए सुनते हैं संदेश भेजने वाले कुछ और श्रोताओं के नाम। तो अगला संदेश हमें मिला है ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निघत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अबान और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य। अगला संदेश हमें मिला है रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से खिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू और शुभम साहू के साथ साथ सेजल साहू जी का। और अब बारी है श्रोताओं पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की। तो सुनिए हमारा पहला प्रश्न जो कि हमने आपसे पूछा था। हमारा प्रश्न था, एक लोहे की सुई पानी में डूब जाती है लेकिन लोहे का बना हुआ जहाज पानी में नहीं डूबता, ऐसा क्यों? तो इसका उत्तर जान लेते हैं। इसका उत्तर है, लोहे की सुई पानी में इसलिए डूब जाती है क्योंकि उसका घनत्व यानी डेंसिटी पानी के घनत्व से अधिक होता है। इसके विपरीत लोहे का जहाज बहुत बड़ा और अंदर से खोखला होता है जिससे उसका औसत घनत्व पानी से कम हो जाता है और वो अपने भार से अधिक पानी को हटाकर तैरता रहता है। हमारा अगला सवाल था कि लोकटक झील में तैरते हुए द्वीप किस चीज से बने हैं? इसका उत्तर है, लोकटक झील में द्वीप मिट्टी, घास और कई ऑर्गेनिक पदार्थों से बने हैं जिन्हें फुमदी कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न था, मानसरोवर झील के पास की खारे पानी की झील का क्या नाम है? तो इसका उत्तर है, मानसरोवर झील के पास की खारे पानी की झील का नाम है राक्षस ताल। और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न था, चिल्का झील में आने वाले प्रवासी पक्षी मुख्य रूप से किन किन देशों से आते हैं? तो श्रोताओं इसका उत्तर है, चिल्का झील में आने वाले प्रवासी पक्षी मुख्य रूप से चीन, साइबेरिया, रूस और मंगोलिया से आते हैं। और अब सुनिए हमारा अंतिम प्रश्न जो कि हमने आपसे पूछा था। हमारा अंतिम प्रश्न था, डल का अर्थ कश्मीरी भाषा में क्या होता है? तो इसका उत्तर है, डल का अर्थ होता है जलाशय या झील। तो श्रोताओं ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, सूर्य एक गैस का गोला है जो हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना है। ये दोनों गैसें ठंडी होती हैं तो फिर सूर्य से गर्मी कैसे पैदा होती है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए। सूर्य एक गैस का गोला है जो हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना है। ये दोनों गैसें ठंडी होती हैं तो फिर सूर्य से गर्मी कैसे पैदा होती है? 8800440559 है हमारा IVRS नंबर और audio@ciet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन पतों पर हमें प्रश्नों के उत्तर और संदेश भेज सकते हैं। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप ताज़ा जानकारी के लिए CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। और अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। शीर्षक है, राग सिंदूरा। इस कार्यक्रम में राग सिंदूरा की स्वरमालिका, आरोह, अवरोह, थाट और गायन समय के बारे में विस्तार से बताया गया है। श्रोताओं, संगीत विद्यार्थियों और शिक्षकों के साथ साथ ये कार्यक्रम सामान्य श्रोता वर्ग के लिए भी उतना ही उपयोगी है। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम राग सिंदूरा।

राग सिंदूरा। राग सिंदूरा की उत्पत्ति काफी थाट से हुई है। इसे राग सैंधवी भी कहा जाता है। इसमें कोमल गंधार यानी कोमल ग और कोमल निषाद यानी कोमल नी के

अलावा सभी स्वर शुद्ध प्रयोग किए जाते हैं। इसके आरोह में गंधार और निषाद अर्थात ग और नी ये दोनों वर्जित स्वर हैं तथा अवरोह में सातों स्वर प्रयोग किए जाते हैं। इस प्रकार इसके आरोह में पांच और अवरोह में सात स्वरों के प्रयोग होने के कारण इस राग की जाति औड़व संपूर्ण है। इसका वादी स्वर षडज यानी स है, संवादी स्वर पंचम यानी प है। इसका गायन समय रात्रि का दूसरा प्रहर है। राग सिंदूरा के आरोह अवरोह और पकड़ इस प्रकार है। सबसे पहले सुनिए

अब प्रस्तुत है राग सिंदूरा की स्वर मालिका जो तीन ताल मध्य लय में निबद्ध है। इसमें 16 मात्राएं होती हैं। पहले प्रस्तुत है राग सिंदूरा की स्वर मालिका की स्थाई।

अभी आपने राग सिंदूरा की स्वरमालिका सुनी। अब प्रस्तुत है इसी स्वरमालिका पर आधारित एक रचना। बोल हैं, कल कल नदिया बहती जाती। सबसे पहले सुनते हैं इस रचना की स्थाई।

0: और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सीमित मत रहिए। श्रोताओं, ये कार्यक्रम प्रेरक प्रसंग श्रृंखला की एक कड़ी है, जिसके द्वारा बताया गया है कि हमारे पास अनंत संभावनाएं हैं, लेकिन हमारी नकारात्मक सोच ही हमें सीमित कर देती है और इसी कारण हम पूरी कुशलता से कार्य नहीं कर पाते।
1: साथियों नमस्कार।
2: नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: आज हम आपको एक बहुत ही खूबसूरत कहानी बताने जा रहे हैं और हमें आशा ही नहीं लेकिन पूरा विश्वास है कि आपको ये कहानी जरूर पसंद आएगी। कहानी का शीर्षक है सीमित मत रहिए।
2: तो आइए साथियों, सबसे पहले पूछिए एक पहेली। जरा ये बताइए कि दुनिया का ऐसा कौन सा देश है जो दो महादेशों में पड़ता है? सोचिए, जरा बताइए तो।
1: अच्छा चलिए, हम ही बता देते हैं। यदि आपने रूस देश का नाम सोचा है तो बिल्कुल सही सोचा है। जी हाँ, वो देश है रूस। ये एशिया और यूरोप दोनों महादेशों में पड़ता है।
2: और हाँ, आपको हम ये भी बता दें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से ये दुनिया का सबसे बड़ा देश है। इसकी राजधानी है मॉस्को, जिसे रूसी भाषा में मस्कवा कहते हैं।
1: और यहाँ की मुद्रा है रूबल। तो हाँ साथियों, जो कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं वो कहानी है रूस की। तो मित्रों, हम बात कर रहे थे रूस देश की एक कहानी की। जैसा कि आपने सुना कि वहां बहुत जंगल है, एक बार उन जंगलों में आग लग गई।

0: हजारों हेक्टेयर की भूमि उससे प्रभावित हुई।
1: पेड़ पौधे तो जले ही, बहुत से पशु पक्षी भी इस विकराल आग की वजह से जलकर मर गए। लेकिन एक छोटा सा भालू का बच्चा किसी तरह से बचकर पास के एक गांव में पहुंच गया। वो भूखा था और घायल भी।
0: एक किसान ने जब उसे देखा तो उसे बड़ी दया आई। वो उसे अपने घर ले गया।
1: अब वो भालू का बच्चा वहां के पालतू जानवरों के साथ ही रहता, उन्हीं के साथ घूमता और खेलता।
0: वो उन्हीं में घुल मिल गया और जैसा दूसरे घरेलू पशु व्यवहार करते वैसा ही वो भी व्यवहार करने लगा।
1: लेकिन पूरे गांव में वो एक कौतूहल का विषय तो था ही, लोग उसे देखने के लिए उत्सुक रहते थे, खास तौर से बच्चे।
0: धीरे धीरे ये बात आसपास के इलाकों में भी फैलने लगी और लोग बड़ी संख्या में उस भालू को देखने आने लगे।
1: लेकिन साथियों, ऐसा कब तक चलता? जैसे जैसे वो भालू का बच्चा बड़ा होने लगा, उसकी हिंसक प्रवृत्ति दिखाई देने लगी।
0: वो किसान अब उसे छोड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि उस भालू को देखने के लिए बहुत से लोग उसके घर पर आने लगे थे।
1: साथियों, फिर जो हुआ वो बहुत ही दुखद था। उस किसान ने एक लोहे का पिंजरा बनवाया और भालू को उसमें बंद कर दिया।

0: साथियों, अब वही पिंजरा उस भालू की दुनिया हो गया। वो उसी में घूमता और आगे पीछे होता रहता था।
1: फिर जो बात हुई वो और भी दुखद थी। उस किसान ने जब देखा कि लोग बहुत बड़ी संख्या में वहां आते हैं, तो उसने उनसे पैसा लेना शुरू कर दिया।
0: लोग आते और उसे देखते, कुछ लोग डंडे या लोहे की छड़ भी लेकर आते और भालू को परेशान करते। भालू बहुत परेशान और बेचैन रहने लगा।
1: दोस्तों, जरा सोचिए, क्या उस किसान ने ये जो काम कुछ पैसों की खातिर किया, क्या वो ठीक था? क्या पशुओं के साथ ऐसा व्यवहार ठीक है? क्या उन्हें स्वतंत्र होकर अपने पर्यावरण में रहने का अधिकार नहीं है? ये सोचने की बात है। जब आप किसी चिड़ियाघर में घूमने जाते हैं, तो पशुओं के प्रति हमारा क्या रवैया रहता है?
0: ये बात धीरे धीरे वन विभाग तक पहुंची। पर्यावरण और वन विभाग के कर्मचारी आए और वे उस भालू को ले गए।
1: वो उसे एक बहुत बड़े जंगल में ले गए। उसका पिंजरा खोल दिया गया और उसे आजाद कर दिया गया।

0: वे देखना चाहते थे कि भालू इस नए वातावरण में कैसा व्यवहार करेगा।
1: उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब उन्होंने देखा कि वो भालू कहीं नहीं जा रहा था। वो वहां भी आगे पीछे घूम रहा था। उसके सामने स्वतंत्रता थी, उसके सामने विशाल विस्तृत जंगल था। वो जहां चाहता वहां जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। निरीक्षण में पाया गया कि वो बहुत समय तक वहीं आगे पीछे घूमता रहा। लेकिन प्रश्न ये है कि ऐसा व्यवहार वो क्यों कर रहा था।
0: बात स्पष्ट है, उस पिंजरे में बहुत लंबे समय तक रहकर उसने सीख लिया था, या यूं कहें उसे सिखा दिया गया था कि उसकी दुनिया बस इतनी सी है, वो आगे जा ही नहीं सकता।
1: हाँ दोस्तों, उसे शायद अब लगने लगा था कि इससे अधिक अब वो कहीं नहीं जा सकता। लंबे समय की पराधीनता, या कह लीजिए कि उसकी नकारात्मक स्थिति की वजह से वो मान चुका था कि उसकी दुनिया सीमित है और वो इसके आगे कुछ भी नहीं कर सकता।
0: बहुत धीरे धीरे उस भालू ने सीखा कि उसकी दुनिया इतनी सीमित नहीं है, बल्कि उसके सामने आजादी का असीमित संसार है।
1: मित्रों, क्या हम भी कई बार उसी भालू की तरह नहीं हो जाते? हमारे आपके साथ भी अक्सर ऐसा हो सकता है। नकारात्मक परिस्थितियों से हम सीखने लगते हैं कि हम जितना कर रहे हैं उससे ज्यादा कर ही नहीं सकते। हो सकता है कि कभी किसी ने ऐसा कह दिया हो कि इससे अच्छा तुम कर ही नहीं सकते।
0: लेकिन मित्र, कोई कुछ भी कहे, कोई चाहे आपको बार बार याद दिलाता रहे कि आपसे कुछ नहीं होगा, आप स्वयं को याद दिलाइए कि आप में बहुत सी असीमित क्षमताएं मौजूद हैं और आप बहुत अच्छा कर सकते हैं।
1: तो विश्वास रखिए कि आप जितना कर रहे हैं उससे और भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। और हाँ, याद रखिए कि आपको अपनी तुलना किसी और से नहीं करनी है।
2: अभी आपने सुना कार्यक्रम सीमित मत रहिए, और अब इसी के साथ अपने साथी अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग।
4: अभी आप सुन रहे थे एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम गाने सुहाने।
5: कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक, आकाशवाणी से विज्ञापन के अंदाज अनेक।
6: अपनी बात को आसाम से गुजरात तक पहुंचाने की हो बात, आकाशवाणी से बेहतर भला कौन देगा आपका साथ।
5: देश के कोने कोने में विज्ञापन बजा, अपनी बनाओ पहचान। केंद्रीय विक्रय एकांश मुंबई ने यह राह बनाई आसान।
6: देश के सबसे बड़े नेटवर्क आकाशवाणी पर विज्ञापन प्रसारित करने के लिए ऑल इंडिया रेडियो की सिंगल विंडो बुकिंग CSU मुंबई से संपर्क करें।
5: हमारा फोन नंबर है 2202407 या 2288 6016 और STD कोड 022।
6: आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है csumumbai@gmail.com।

श्रोताओं, गाने सुहाने कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाएंगे देशभक्ति के उन तरानों को जिन्होंने हर हिंदुस्तानी के दिलों में जोश भर दिया। आज का हमारा ये कार्यक्रम समर्पित है उन जाबाज सैनिकों और वतन के रखवालों के नाम जिनके साहस की कहानियां हमारी फिल्मों के गानों में रची बसी हैं। चलिए सफर की शुरुआत करते हैं उस फिल्म से जिसने हर युवा को अपना रास्ता खुद चुनने का जज्बा दिया। फिल्म लक्ष्य का ये गीत सुनिए, महसूस कीजिए उस जुनून को।

0: गाने सुहाने कार्यक्रम जारी रहेगा, लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।
1: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
2: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
3: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे TV चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
2: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट,
3: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
2: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की,
3: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
2: For details log on to www.ddindia.com।

0: स्वच्छ भारत, सुंदर भारत, स्वच्छता शब्द भर नहीं, सक्रिय सचेत कर्म है।
1: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीतांजलि।

श्रोताओं, जब बात देश की शान की हो तो हमारे खिलाड़ी भी किसी से कम नहीं। फिल्म मैरी कॉम का ये गीत हमें सिखाता है कि जीत की कोई सीमा नहीं होती।

श्रोताओं, चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, पर आखिर में हम यही कहते हैं कि दिल तो बस हिंदुस्तानी है। आइए सुनते हैं फिल्म फिर भी दिल है हिंदुस्तानी से ये प्यारा सा गीत, वंदे मातरम।

श्रोताओं, एकता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। जब कंधों से कंधे मिलते हैं तो बड़ी से बड़ी मंजिल भी आसान हो जाती है। फिर से फिल्म लक्ष्य से एक बेहद ही जोशीला गाना आइए सुनते हैं।

0: श्रोताओं, गाने सुहाने का ये देशभक्ति भरा सफ़र अब यहीं पर समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे कार्यक्रम सुगम संगीत।
1: कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक, आकाशवाणी से विज्ञापन के अंदाज अनेक।
2: अपनी बात को आसाम से गुजरात तक पहुंचाने की हो बात, आकाशवाणी से बेहतर भला कौन देगा आपका साथ।
1: देश के कोने कोने में विज्ञापन बजा, अपनी बनाओ पहचान। केंद्रीय विक्रय एकांश मुंबई ने यह राह बनाई आसान।
2: देश के सबसे बड़े नेटवर्क आकाशवाणी पर विज्ञापन प्रसारित करने के लिए ऑल इंडिया रेडियो की सिंगल विंडो बुकिंग CSU मुंबई से संपर्क करें।
1: हमारा फोन नंबर है 2202407 या 2288 6016 और STD कोड 022।
2: आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है csumumbai@gmail.com।
3: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
4: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, सीमेंट से 9.5% तक आम सरिया के मुकाबले बेहतरीन पकड़।
5: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
0: सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज की कलाकार हैं तमन्ना बानो।

0: सुगम संगीत का कार्यक्रम जारी रहेगा, पर उसके पहले आइए सुनते हैं कुछ संदेश।
1: कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक, आकाशवाणी से विज्ञापन के अंदाज अनेक।
2: अपनी बात को आसाम से गुजरात तक पहुंचाने की हो बात, आकाशवाणी से बेहतर भला कौन देगा आपका साथ।
1: देश के कोने कोने में विज्ञापन बजा, अपनी बनाओ पहचान। केंद्रीय विक्रय एकांश मुंबई ने यह राह बनाई आसान।
2: देश के सबसे बड़े नेटवर्क आकाशवाणी पर विज्ञापन प्रसारित करने के लिए ऑल इंडिया रेडियो की सिंगल विंडो बुकिंग CSU मुंबई से संपर्क करें।
1: हमारा फोन नंबर है 2202407 या 2288 6016 और STD कोड 022।
2: आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है CSU मुंबई @gmail.com।

0: स्वच्छ भारत, सुंदर भारत, स्वच्छता शब्द भर नहीं, सक्रिय सचेत कर्म है।
1: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत, कलाकार हैं तमन्ना बानो।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुगम संगीत। कलाकार थीं तमन्ना बानो। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। अगला कार्यक्रम हमारे लखनऊ केंद्र से।

0: ये आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरों के साथ मैं आमिर हुसैन सिद्दीकी। वजीर आला योगी आदित्यनाथ आज फिरोजाबाद में 658 करोड़ रुपए से ज्यादा लागत के 81 तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर वजीर आला ने कहा कि फिरोजाबाद और अलीगढ़ तरक्की और लोगों को बाइख्तियार बनाने के एक नए बाब का मुशाहिदा करेंगे। उन्होंने बताया कि फिरोजाबाद में 658 करोड़ रुपए से ज्यादा लागत की 81 तरक्यासी मंसूबों और अलीगढ़ में 462 करोड़ रुपए की लागत के 85 तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखा जाएगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के इस्तेफादा कुनिंदगान में घर की चाबियां तकसीम की जाएंगी और मुख्तलिफ स्कीमों के फायजीन को सर्टिफिकेट, चेक और आलात वगैरह भी तकसीम किए जाएंगे। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उत्तर प्रदेश ने न्यू इंडिया की मिसाल पर चलते हुए अपनी एक नई अलग पहचान बनाई है। डबल इंजन वाली हुकूमत की पॉलिसियों की बदौलत बुंदेलखंड तेजी से तरक्की की राह पर गामजन है। वजीर आला ने महोबा और बुंदेलखंड में 697 करोड़ रुपए से ज्यादा लागत के 88 तरक्याती प्रोजेक्टों और हमीरपुर जिले में 636 करोड़ रुपए से ज्यादा के 75 तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखने के बाद मुनक्किद एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए ये बात कही। वजीर आला ने कहा कि बुंदेलखंड की तरक्की रियासती हुकूमत की तरजीह है। इस सिलसिले में बुंदेलखंड में मुख्तलिफ तरक्याती स्कीमों का अहाता किया गया है। जनाब योगी ने कहा कि बुंदेलखंड जल्द ही मिजाइल हब के तौर पर भी जाना जाएगा।
1: उत्तर प्रदेश की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर में बनी हुई मिसाइल ने साबित करके दिखाया और उसका हब हम चाहते हैं आने वाले समय में हमारा महोबा बने, हमीरपुर बने, चित्रकूट बने, झांसी बने, ऊर्जा के केंद्र के रूप में विकसित हो। और इसलिए विकास की इन योजनाओं को लेकर के औद्योगिक निवेश के लिए भी हम लोगों ने एक औद्योगिक क्लस्टर यहाँ विकसित करने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। करबई बांध के जिन किसानों ने जमीन दी थी, वर्षों से की भूमि का पैसा नहीं मिला था, उसको निस्तारित करके उसका भुगतान की कार्रवाई को संपन्न किया गया।
0: गुज़िश्ता रोज़ बैनुल अक़वामी योगा डे जोश व खरोश के साथ मनाया गया। इस मौके पर न सिर्फ मुल्क बल्कि दुनिया भर में योगा पर प्रोग्राम मुनक्किद किए गए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कोलकाता के तारीखी रेड रोड पर मुनक्किद मरकजी बैनुल अक़वामी योगा डे की तकरीब में कौम की क़यादत की। जनाब मोदी ने योगा की मशक की और योगा को हमारे रोज़मर्रा के मामूलात का लाजमी हिस्सा बनाने का पैगाम दिया। रियासत में योगा डे के मौके पर तमाम अजला में प्रोग्राम मुनक्किद किए गए। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने झांसी और बुंदेलखंड में मुनक्किद तकरीब में शिरकत की और लोगों को योगा के मशक करके सेहतमंद रहने की तरगीब दी। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने पानी के तहफ्फुज़ को एक अवामी तहरीक बनाने पर जोर देते हुए कहा कि गैर यकीनी मौसम और मुमकिन मानसून की तब्दीलियों के पेश नज़र रियासत के हर बाशिंदे को पानी के तहफ्फुज़ के लिए कोशिशों में शामिल होना चाहिए। उन्होंने कहा कि पानी की एक बूंद भी ज़ाय नहीं होनी चाहिए। कैच द रेन मुहिम को ज़्यादा मौसर तरीके से लागू किया जाना चाहिए और बारिश के पानी को ज़खीरा करने को वसी पैमाने पर अवामी शिरकत से मुंसलिक किया जाना चाहिए। रियासती हुकूमत ने कबायली अक्सरियती ज़िले सोनभद्र में 257 करोड़ रुपए की लागत से 86 किलोमीटर सड़कों का जाल बिछाने का फैसला किया है। जिला मजिस्ट्रेट चर्चित गौड़ ने बताया कि सड़क की तामीर के लिए सर्वे और टेंडर का अमल जल्द मुकम्मल हो जाएगा और काम शुरू हो जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि इन सड़कों की तामीर से चार सरहदी रियासतों के साथ राबते में बेहतरी आएगी। ये राबता सनअतों के लिए खाम माल और तैयार मसनूआत की नकलो हमल में सहूलत फराहम करेगा। रियासत के बेशतर अजला में इस वक्त शदीद गर्मी पड़ रही है। कई अजला में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा रिकॉर्ड किया जा रहा है। गर्मी ने आम जिंदगी को दरहम बरहम कर दिया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक गर्मी की यह लहर आइंदा 3 से 4 रोज तक जारी रहेगी। मानसून के मशरकी उत्तर प्रदेश में महीने के आखिर तक पहुंचने की आमद है। दूसरी तरफ रियासत में बढ़ते हुए दर्जा हरारत और गर्मी की लहर की सूरत हाल के पेश नज़र रियासती हुकूमत ने बुनियादी तालीमी काउंसिल से मुंसलिक स्कूलों और तस्लीमशुदा स्कूलों में गर्मियों की तातीलात 24 जून तक बढ़ा दी हैं। इसके साथ ही आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
2: आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है। आइए सुनते हैं शहरी महिलाओं का कार्यक्रम नारी जगत। नमस्कार बहनों, हर घर में हरियाली हो, प्रकृति से अपनी यारी हो, इसी प्यारे संदेश के साथ आप सभी का आपके अपने मनपसंद कार्यक्रम नारी जगत में स्वागत है। मैं हूं आपकी बहन संध्या त्रिपाठी और हमेशा की तरह आज भी कुछ नई जानकारी भरी बातों के साथ आपके समक्ष उपस्थित हुई हूं। बहनों, जो आप सभी के जीवन, परिवार और समाज से जुड़ी बातें हैं उनको लेकर के आपकी इसी जिज्ञासा और सीखने की भावना को ध्यान में रखते हुए एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रही हूँ जो हमारे स्वास्थ्य, पर्यावरण और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य से जुड़ा है। बहनों, आज का विषय है जैव विविधता एवं शहरी घर। बहनों, जब हम जैव विविधता की बात करते हैं तो हमारे मन में जंगल, नदियाँ, पहाड़ और वन्य जीवों की तस्वीरें उभर कर सामने आने लगती हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि हमारे घर की बालकनी, छत, आंगन और खिड़की पर रखे छोटे छोटे पौधे भी जैव विविधता का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। बहनों, आज तेजी से बढ़ते शहरीकरण के बीच प्रकृति हमसे दूर होती जा रही है। बड़े बड़े भवनों और कंक्रीट के जंगलों के बीच हरियाली सिमटती सी जा रही है। ऐसे समय में यदि हम अपने घरों में पौधे लगाकर, पक्षियों के लिए दाना पानी रखकर और प्रकृति के प्रति संवेदनशील बनकर छोटे छोटे प्रयास करें तो हम अपने घर को ही नहीं बल्कि पूरे पर्यावरण को बेहतर बना सकते हैं।

आज के इस कार्यक्रम में आगे जानेंगे कि कैसे हमारे छोटे छोटे शहरी घर भी जैव विविधता के संरक्षण में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं और कैसे घर में लगाए गए पौधे हमारे जीवन में खुशहाली, स्वास्थ्य और सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर सकते हैं। तो लेकिन अभी सुनते हैं ये गीत।

बहनों, अभी आप सुन रहे थे प्रकृति की सुंदरता से भरपूर गीत ये कौन चित्रकार है। यह सदाबहार गीत 1967 में बनी फिल्म बूद जो बन गया मोती से है। इस गीत को अपनी मधुर आवाज़ महान गायक मुकेश जी ने दी थी। बहनों, कितना सुंदर प्रश्न पूछता है यह गीत, ये कौन चित्रकार है। जब हम नीला आकाश देखते हैं, रंग बिरंगे फूल देखते हैं, तितलियों को उड़ते देखते हैं, पक्षियों को मधुर कलरव सुनते हैं, तब मन स्वतः ही सोचने लगता है कि आखिर इस अद्भुत सृष्टि का रचयिता कौन है। बहनों, प्रकृति स्वयं ईश्वर की सबसे सुंदर चित्रकला है। इसी चित्रकला को सुरक्षित रखने का नाम है जैव विविधता, और यही हमारे आज के विषय जैव विविधता एवं शहरी घर का मूल संदेश भी है। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं, इंडोर पौधे केवल सजावट का साधन नहीं बल्कि हमारे जीवन के सच्चे साथी हैं। बहनों, घर में रखे जाने वाले इंडोर पौधों का महत्व आज के समय में, जहां शहरों में जगह कम होती जा रही है और प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, वहां इंडोर पौधे हमारे लिए प्रकृति का एक छोटा लेकिन अनमोल उपहार है। सबसे पहले बात करते हैं शुद्ध हवा की। बहनों, हम दिन भर जिस हवा में सांस लेते हैं उसकी गुणवत्ता का सीधा प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है। स्नेक प्लांट, मनी प्लांट, स्पाइडर प्लांट जैसे पौधे हवा को शुद्ध करने में मदद करते हैं और घर के वातावरण को ताजगी भी देते हैं। तो ऐसे पौधे आप घर में जरूर लगाएं। दूसरा बड़ा लाभ, मानसिक शांति। आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में तनाव एक आम समस्या बन गया है, लेकिन जब हम सुबह उठकर हरे भरे पौधों को देखते हैं और उन्हें पानी देते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, तो मन को एक अलग ही सुकून सा मिलता है। बहनों, पौधे हमारे तनाव को कम करने और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने में बहुत ही मदद करते हैं। तो इनकी देखभाल करिए और घर की सुंदरता को बढ़ाइए। बहनों, एक साधारण कमरा भी यदि कुछ हरे भरे पौधों से सज जाए तो उसकी सुंदरता कई गुना बढ़ जाती है। पौधे घर को जीवंत बनाते हैं और सकारात्मक माहौल तैयार करते हैं। बच्चों के लिए भी पौधे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। बहनों, जब बच्चे पौधों की देखभाल करते हैं तो उनमें जिम्मेदारी की भावना विकसित होती है। वे प्रकृति से जुड़ना सीखते हैं और पर्यावरण संरक्षण का महत्व भी समझते हैं। इसके अलावा बहनों, छोटे छोटे पौधे, तितलियाँ, मधुमक्खियाँ और अन्य लाभकारी जीवों को यह पौधे आकर्षित भी करते हैं। यही तो जैव विविधता है, विभिन्न जीवों और पौधों को एक सुंदर संतुलन। बहनों, शहरों में जगह कम होने का मतलब यह नहीं है कि हम प्रकृति से दूर हो जाएं। छोटी सी बालकनी, खिड़की के या छत पर भी पौधे लगाकर हरियाली का संसार हम बसा सकते हैं। हमारे बीच कुछ ऐसे पौधे हैं जैसे तुलसी, एलोवेरा और पुदीना, औषधीय गुणों से भरपूर पौधे हैं। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी हैं और घरेलू उपयोग में भी ये आते हैं। ऐसे पौधे आप जरूर लगाएं और इनका लाभ भी उठाएं। सबसे महत्वपूर्ण बात, जब हम एक पौधा लगाते हैं तो हम केवल अपने घर को सुंदर नहीं बनाते बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर पर्यावरण का निर्माण भी करते हैं। बहनों, यदि हर परिवार केवल 2 या 3 पौधे लगाने का संकल्प ले तो पूरा शहर हरियाली से भर सकता है और हमारा वातावरण अधिक स्वच्छ, सुंदर और स्वच्छ भी बन सकता है। तो बहनों, पौधे केवल मिट्टी में उगने वाले जीव नहीं हैं बल्कि वे हमारे जीवन के साथी, हमारे स्वास्थ्य के रक्षक और प्रकृति के सच्चे दूत हैं। जब हम प्रकृति के गोद में होते हैं, चारों ओर हरियाली होती है, पक्षियों का कलरव सुनाई देता है और शीतल हवा मन को छूती है, तब जीवन का हर सफर सचमुच सुहाना लगने लगता है। आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

पहनो कितना सुंदर गीत है। सन 2000 में बनी रिफ्यूजी फिल्म का ये गीत, जिसे अपनी मधुर आवाज़ से सोनू निगम और अलका याग्निक ने गाया है। इस गीत को सुनते ही मन मानो प्रकृति की गोद में पहुंच जाता है। हरे भरे पहाड़, बहती नदियाँ और मनमोहक वातावरण की तस्वीरें आंखों के सामने उभर आती है। यह संदेश है प्रकृति की, कोई शक्ति रुकती नहीं है हम सभी के लिए। वैसे ही है जैसे नारी भी अब हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा और परिश्रम से आगे बढ़ रही हैं, चाहे वो बाहर की दुनिया हो या बच्चों की परवरिश की। मैं बात कर रही हूँ प्रकृति से जुड़ी बातों पर, यानी जैव विविधता पर। तो बहनों, बच्चों को रखिए प्रकृति के नज़दीक, क्योंकि आज के समय में बच्चों का अधिकांश समय मोबाइल, टीवी और इंटरनेट के बीच बीत रहा है। ऐसे में प्रकृति से उनका जुड़ाव धीरे धीरे कम होता जा रहा है। लेकिन हम सभी जानते हैं कि प्रकृति ही जीवन का आधार है। इसलिए बहनों, बच्चों में बचपन से ही प्रकृति के प्रति प्रेम और जागरूकता विकसित करना बहुत ही आवश्यक है। बच्चे वही सीखते हैं जो अपने आसपास देखते हैं। यदि घर के बड़े पेड़ पौधों की देखभाल करते हैं, जल संरक्षण करते हैं और स्वच्छता का ध्यान रखते हैं, तो बच्चे भी इन अच्छी आदतों को सहज रूप से अपनाने लगते हैं। बहनों, बच्चों को प्रकृति से जोड़ने का सबसे सरल तरीका है उन्हें पौधे लगाने और उनकी देखभाल करने की जिम्मेदारी देना। जब कोई बच्चा अपने हाथों से एक पौधा लगाता है, उसे बढ़ते हुए देखता है, तो उसके मन में प्रकृति के प्रति आत्मीयता और जिम्मेदारी की भावना विकसित होने लगती है। बहनों, इसके अलावा बच्चों को पार्क, उद्यान, पक्षी विहार और प्राकृतिक स्थलों पर ले जाना बहुत ज़रूरी है।

क्योंकि वहां वे पेड़ पौधों पक्षियों और विभिन्न जीव जंतुओं को देखकर प्रकृति की विविधता को भी समझते हैं। यह अनुभव उनकी किताबों के ज्ञान से कहीं अधिक उपयोगी साबित होगा। बहनों, प्रकृति जागरूकता का एक महत्वपूर्ण पहलू जल संरक्षण भी है। बच्चों को सिखाना चाहिए कि पानी की एक एक बूंद कीमती है, नल को खुला न छोड़ना, वर्षा जल संचयन के महत्व को समझाना और पानी का सदुपयोग करना जैसी आदतें उन्हें जिम्मेदार नागरिक बनाती हैं। तो उनमें यह भावना जरूर जगाइए। आज पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक है। बहनों, यदि हम अपने बच्चों को प्रकृति का महत्व नहीं बताएंगे तो आने वाली पीढ़ियां स्वच्छ हवा, निर्मल जल और हरियाली से वंचित हो सकती है। इसलिए हमें उन्हें केवल शिक्षा ही नहीं बल्कि पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता का संस्कार भी देना बहुत ही जरूरी है। बच्चों को छोटे छोटे पर्यावरणीय कार्यों में शामिल किया करना सिखाइए और करवाइए भी, जैसे जन्मदिन पर पौधा लगाना, पक्षियों के लिए दाना और पानी रखना, प्लास्टिक का कम उपयोग करना, घर और आसपास स्वच्छता बनाए रखना। ये छोटे प्रयास बच्चों में बड़े संस्कार पैदा कर सकते हैं और उनकी भावना भी जागृत होगी कि अगर हम प्रकृति का संरक्षण करेंगे तभी हमारा भविष्य भी सुरक्षित रहेगा। बहनों, याद रखिए, आज का जागरूक बच्चा ही कल का जिम्मेदार नागरिक बनेगा। यदि हम अपने बच्चों को प्रकृति से जोड़ देंगे तो वे न केवल पर्यावरण की रक्षा करेंगे बल्कि ये एक स्वस्थ और सुंदर भविष्य का निर्माण भी करेंगे। बहनों, सच ही कहा गया है कि बच्चे कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं। हम उन्हें जैसा आकार देते हैं वे वैसे ही बनते हैं। यदि हम उनके मन में प्रकृति प्रेम का बीज बो देंगे तो भविष्य में वही बीज एक विशाल वृक्ष बनकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश देगा। तो अपने बच्चों को जागरूक करिए और सुनिए ये प्यारा सा गीत।

0: बहनों, 1954 में प्रदर्शित बनी ये फिल्म बूद बूट पॉलिश का है यह गीत, जिसे अपनी आवाज़ मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले ने दी है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कंपोस्ट की, जो घर में निकलते हैं, हमारे किचन से निकलते हैं कचरे, उनका हम उपयोग कहाँ कर सकते हैं। बहनों, अक्सर हम रसोई में निकलने वाले फलों और सब्जियों के छिलकों, चाय की पत्ती, सूखे पत्तों और अन्य जैविक कचरों को बेकार समझकर फेंक देते हैं, लेकिन क्या आप जानती हैं कि यही कचरा हमारे पौधों के लिए पौष्टिक खाद बन सकता है? इसे ही हम कंपोस्ट कहते हैं। कंपोस्ट एक प्राकृतिक खाद्य है जो घर में निकलने वाले जैविक कचरे से तैयार की जाती है। इससे न केवल कचरे की मात्रा कम होती है, बल्कि पौधों को भी भरपूर पोषण मिलता है। बहनों, कंपोस्ट बनाने के लिए किसी बड़े खर्चे की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि घर में मौजूद एक बाल्टी, डिब्बा या मिट्टी का घड़ा भी इसके लिए पर्याप्त है। सबसे पहले बहनों, एक पात्र लें और उसमें रसोई से निकलने वाले जैविक पदार्थ, जैसे सब्जियों के छिलके, फलों के छिलके, चाय की पत्ती, सूखे फूल आदि, उसी में सब डालें। इसके ऊपर सूखे पत्ते, पुराना अखबार या थोड़ी मिट्टी डाल दें। इस तरह परत दर परत सामग्री डालते रहें। ध्यान रखें कि प्लास्टिक, कांच, धातु या रासायनिक पदार्थ इसमें न डालें। बहनों, समय समय पर इसे हिलाते रहें ताकि हवा मिलती रहे। कुछ सप्ताह बाद यही सामग्री सड़कर गहरे भूरे रंग की खाद में बदल जाएगी। इस खाद का उपयोग गमलों, किचन गार्डन और फूलों के पौधों में किया जा सकता है। इसमें पौधे अधिक स्वस्थ और हरे भरे बनते हैं और रासायनिक उर्वरकों की आवश्यकता भी कम हो जाती है। बहनों, प्रकृति हमें सिखाती है कि इस संसार में कुछ भी व्यर्थ नहीं होता। पेड़ से गिरा पत्ता भी मिट्टी में मिलकर नई ऊर्जा का स्रोत बन जाता है। ठीक उसी प्रकार हमारे घर का जैविक कचरा भी कंपोस्ट बनकर पौधों को नया जीवन देता है। तो आइए आज ही संकल्प लें कि रसोई के कचरे को बेकार नहीं समझेंगे, बल्कि उसे कंपोस्ट बनाकर अपने पौधों और पर्यावरण के लिए उपयोगी बनाएंगे। घर का वेस्ट बने वरदान, कंपोस्ट से महके घर आंगन, मिट्टी की है जो खुशबू, जीवन का है आधा जीवन। बहनों, इसी के साथ समय का भी तकाजा है कि आपसे अनुमति लूं। बातें तो बहुत हैं, फिर अपने अगले कार्यक्रम में मिलूंगी। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे शहरी महिलाओं का कार्यक्रम नारी जगत। ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। आइए सुनते हैं खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं। ग्राम विशुनपुरा, पोस्ट मानिकपुर, थाना मनियर, जिला बलिया से मुखलाल राजभर अपनी पुत्री कुमारी प्रीति के लापता होने की सूचना दे रहे हैं। प्रीति 18 मई सन 2026 से लापता हैं। इनकी उम्र 19 वर्ष है, रंग गोरा, कद 5 फीट है। इन्होंने सफ़ेद टॉप और नीली जीन्स पहनी हुई है। इनके संबंध में कोई भी सूचना मिलने पर कृपया इस नंबर पर संपर्क करें। नंबर है 7379124036, 7379124036। ग्राम नावट नंबर 1, पोस्ट मनियर, थाना मनियर, जनपद बलिया से बाल किशुन राजभर अपनी पुत्री प्रियांशु के गायब होने की सूचना दे रहे हैं। प्रियांशु 12 मई सन 2026 से लापता हैं। इनका रंग गोरा, कद 5 फीट है। इन्होंने बैगनी रंग की सूट सलवार पहनी हुई है, पैरों में हवाई चप्पल है। इनके संबंध में कोई भी जानकारी मिलने पर कृपया इन नंबरों पर संपर्क करें। नंबर नोट करें, 6390114574। नंबर एक बार फिर से सुने, 6390114574। एक और नंबर नोट करें, 9565808716, 9565808716, 9565808716। ग्राम दराव पोस्ट बांसडीह थाना बांसडीह जिला बलिया से संजय राजभर अपनी पुत्री संजीता के गायब होने की सूचना दे रहे हैं। संजीता की उम्र 19 वर्ष है, रंग सांवला, कद 5 फीट 2 इंच है। ये 19 मई 2026 से लापता हैं। इन्होंने हरे रंग का सूट और काला जींस पहना हुआ है, पैरों में सैंडल है। इनके संबंध में कोई भी सूचना मिलने पर कृपया इन नंबरों पर संपर्क करें। नंबर नोट करें 8573854363। नंबर एक बार फिर से सुने 8573854363। एक और नंबर नोट करें 7458054139, 7458054139। ग्राम केवरा पोस्ट केवरा थाना बांसडीह जिला बलिया से पिता सुरेंद्र वर्मा अपनी पुत्री रानी वर्मा के 18 मई सन 2026 से गायब होने की सूचना दे रहे हैं। इनका रंग गोरा, उम्र 18 वर्ष है, इनका कद 5 फीट है। इन्होंने कत्थई रंग का कुर्ता और हरे रंग का प्लाजो पहना हुआ है। इनके संबंध में कोई भी जानकारी मिलने पर कृपया इन नंबर पर संपर्क करें। नंबर नोट करें 8510930784। नंबर एक बार फिर से सुने 8510930784। ग्राम केवरा पोस्ट केवरा थाना बांसडीह जिला बलिया से पिता प्रदीप पटेल अपने पुत्र राजू पटेल के गायब होने की सूचना दे रहे हैं। राजू 18 अप्रैल सन 2026 से लापता हैं। इनकी उम्र 40 वर्ष है, रंग गोरा, कद 5 फीट 3 इंच है। इन्होंने नीले रंग का जींस, लाल टी शर्ट पहना हुआ है। इनके संबंध में कोई भी सूचना मिलने पर इन नंबर पर संपर्क करें 7704071342, 7704071342। ग्राम बादलपुर पोस्ट बाबूबेल थाना हल्दी जिला बलिया से पिता गिरधर यादव अपनी पुत्री अंशु यादव के गुमशुदा होने की सूचना दे रहे हैं। अंशु 11 मई सन 2026 से गुमशुदा हैं। इनकी उम्र करीब 15 वर्ष है, रंग गोरा है, कद 5 फीट 2 इंच है। इन्होंने नीले रंग का टी शर्ट और पैंट पहना हुआ है। इनके संबंध में कोई भी सूचना मिलने पर इन नंबर पर संपर्क करें 8858837028। नंबर एक बार फिर से सुने 8858837028। इसी के साथ ही खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं समाप्त हुईं। 2 मिनट ज़्यादा हो गया था ना उधर आपका। ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। खेती किसानी कार्यक्रम में लीजिए सुनिए वीरेंद्र सिंह और विनय कुमार की बातचीत। विषय है खरीफ में प्याज की प्रजातियों की नर्सरी।

0: आपन देश पूरे दुनिया से एक टुकड़ा काट के बनावल गेल बा। कहला का मतलब ई कि पूरी दुनिया में जौना जौना तरह का जलवायु बा, साल भर मौसम का उतार चढ़ाव बा, वह पूरा नमूना अपने देश में उपलब्ध बा। इहे कारण है कि भारत की विविधता में एकता का परिकल्पना कैल गेल बा, चाहे वो मनुष्य होखे, पेड़ पौधे होखे, आ चाहे हमारे खाद्यान्न उत्पादित करे वाली फसल। आज हमन का बात कैल जाई कि खरीफ में प्याज के खेती कैला से का लाभ बा, कैसन कैसन अवस्था है जौना में खरीफ में प्याज उगावल जा सकेला। एकरे खातिर फोन लाइन से जुड़ल हैं डॉक्टर वीरेंद्र सिंह। आप हैं उप निदेशक उद्यान औद्यानिक शोध एवं प्रशिक्षण केंद्र बस्ती। सबसे पहले डॉक्टर साहब आपका हमारे यहाँ कार्यक्रम में स्वागत बा। खरीफ प्याज के खेती का मंशा काहे आप लोग करेली बार बार?
1: किसान भाइयों को नमस्कार। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि प्याज एक नकदी फसल है, अच्छा मूल्य इसका मिलता है अन्य फसलों की अपेक्षा, और एक निश्चित समय में ज्यादातर पूरे देश में अभी रबी के मौसम का ही प्याज होता रहा है। तो उसके बाद जब कभी प्याज एकदम से बाहर जब निर्यात होने लगता है, विदेशों में खोल दिया जाता है, तो अपने देश में प्याज की मात्रा कम हो जाती है, मांग की अपेक्षा सप्लाई कम हो जाती है, और परिणाम ये होता है कि अचानक मूल्य बढ़ जाते हैं। इसको देखते हुए हम लोग ये देखते हैं कि अच्छा, इसमें संभावनाएं हैं कि अगर हम खरीफ में प्याज पैदा करें, और खास करके उत्तर प्रदेश में, तो हमारे यहाँ के किसानों को बहुत अच्छा फायदा हो सकता है। अब जो खरीफ का सीजन है, जो कि बरसात का सीजन है, इसमें पानी कभी कभी ज्यादा बरसात होने की संभावना रहती है, अगर कम होती है तो कोई दिक्कत नहीं, तब आसानी से हो सकता है जल भराव ना हो, लेकिन कभी कभी ज्यादा हो जाती है तो उस समय थोड़ा सा समस्या आने की वो रहती है चांस। तो ऐसी कंडीशन में जब हम खरीफ प्याज का चयन करने जा रहे हैं, तो हमको सबसे बढ़िया चीज है कि हम खेत का चयन करें। खेत ऐसा होना चाहिए जो ढालू हो, जिसमें पानी भरने की संभावना, कतई लगने की संभावना ना हो। पानी तो गिरेगा ही, बरसात रोक नहीं सकते, लेकिन पानी गिरे और घंटे आधे घंटे में खेत से बाहर हो जाए, ऐसी जल निकासी की व्यवस्था हो, दोमट हल्की बलुआर मिट्टी हो और अच्छा कार्बनिक मैटर हो, उसमें प्याज की खेती, खरीफ प्याज की खेती आसानी से की जा सकती है। अब जब हम खरीफ प्याज की बात करेंगे, तो सबसे पहले करते हैं कि भाई प्रजातियां कौन सी होनी चाहिए। तो इसमें किसान भाई नोट कर लें, जो बहुत अच्छी प्रजातियां हैं, खरीफ में अच्छा उत्पादन दे सकती हैं, उसमें सबसे अच्छी प्रजाति है एग्री फाउंड डार्क रेड, एक प्रजाति है एग्री फाउंड डार्क रेड। दूसरी प्रजाति है जो उसको लाइन 883 कहते हैं, लाइन 883, और चौथी प्रजाति है भीमा रेड, एक और है भीमा सुपर, इसके अलावा एक है नेफार्ड 53, नेफार्ड 53। ये चार पांच प्रजातियां हैं जिनको हम खरीफ के सीजन में इनकी अच्छी तरह से खेती कर सकते हैं। अब इसमें और क्या खास चीज है खरीफ प्याज करने के लिए ध्यान रखने की बात है, सबसे बड़ी चीज है कि हम पौध तैयार करना, पौध अगर अच्छी तैयार कर ले गए किसान भाई खरीफ में, सही समय से और सुरक्षित पौध तैयार कर ले गए, तो समझ लीजिए आधी सफलता मिल गई। तो आधी सफलता मिलने के लिए क्या करना है, खरीफ की जो क्यारी हम तैयार करेंगे, जो पौध तैयार करेंगे, वो थोड़ी ऊंची उठी हुई करा करें करेंगे, मतलब 8 से 10 सेंटीमीटर ऊंची क्यारी होनी चाहिए, बेड होनी चाहिए, चौड़ाई बीज की जो सैया है वो 1 से 1.5 मीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, लंबाई आप चाहे जितनी कर लो आवश्यकता अनुसार, लेकिन चौड़ाई 1 से 1.5 मीटर, कारण कि उसमें आराम से बैठ करके इधर से उधर से उसमें जो भी खरपतवार निकालना है, दवा डालनी है, निराई गुड़ाई करनी है, पौधे की देखभाल करनी है, कर सकते हैं। नंबर 2 कि इसमें ये भी क्यारी भी हमारी ऊंचाई पर होनी चाहिए, जहां पानी का साधन है आपका ट्यूबवेल के पास, वहीं रखें ताकि आवश्यकता अनुसार पानी भी दे सकें। और दो क्यारियां, जब दो क्यारी बनाते हैं सीड बेड की, तो उसमें कम से कम 30 सेंटीमीटर का फासला बीच में जरूर रखें, ताकि पानी जो बरसे क्यारी से वो नीचे बह के नाली में अंदर आ जाए और निकल के खेत से बाहर हो जाए। जब हम क्यारी का चयन कर लेंगे और उसकी तैयारी कर लेंगे, तो तैयारी करने के लिए जरूरी है कि क्यारी को गुड़ाई उड़ाई करके और उसपे पॉलीथीन से ढक दे, मोटी काली पॉलीथीन से ढक देंगे, तो उस क्यारी का तापमान बढ़ जाएगा। तापमान बढ़ने के कारण क्या होगा, जो मिट्टी में भूमि से होने वाले व्याधियां हैं या कीड़े मकोड़े अंडे बच्चे हैं जो लगते हैं, पौधों को नुकसान करते हैं आगे चल के, वो ज्यादा तापमान होने के कारण मर जाएंगे, और जो बीज सैया है वो हमारी अच्छी सुरक्षित तैयार हो जाएगी। तो जब बीज सैया अच्छी तैयार हो गई, तो इसके बाद क्या करते हैं कि अब हमको बीज की बुआई करनी है। तो बीज की बुआई हमेशा ध्यान रखें किसान भाई, बीज बोने के पहले बीज शोधन आवश्यक है, क्योंकि बरसात का सीजन है तो बीज शोधन आवश्यक है। बीज शोधन किसे कर सकते हैं, उसके लिए चार पांच दवाइयां हैं, जैसे थीरम सभी किसान भाई जानते हैं, 2 ग्राम दवा 1 किलो बीज के लिए चाहिए, या मैंकोजेब कार्बंडाजिम का जो मिश्रण आता है उसको 1 ग्राम दवा 1 किलो बीज के लिए। इससे सबसे अच्छा है ट्राइकोडर्मा, जो बहुत प्रचलित है किसान भाइयों में। ट्राइकोडर्मा अगर मिल जाता है सही ताजा बना हुआ तो 4 ग्राम 1 किलो बीज के लिए, इससे बीज को शोधन करने के बाद ही बुआई करनी चाहिए। और बुआई के पहले बीज को हम 12 घंटे पानी में भिगो देना चाहिए, ताकि भिगोने के बाद जमाव उसमें बहुत अच्छा आता है, जमाव अच्छा होगा तो पौध हमारी अच्छी चलेगी।
0: नर्सरी बन गई, बेहन पड़ गई यानी बिजाई हो गई, तो
1: जी
0: एकरे बचाव खातिर कि एकरे अंदर ज्यादा धूप पानी या बरसात में ज्यादा कीड़ा मकोड़ा होके ना जाओ, तो कैसे एक सुरक्षित नर्सरी करे के चाहिए?
1: खुले मौसम में अगर आप कर रहे हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर जो किसान सक्षम है तो लो टनल एक तकनीकी है, बहुत सस्ती होती है, लो टनल पाली हाउस कहलाता है। छोटा सा स्ट्रक्चर सरिया से मोड़ करके बना देते हैं, तिकोना टाइप का, ऊपर गोलाकार बना दीजिए और उसके बाद उसमें एक जाली डाल दीजिए, हल्की पतली सी नेट जो मच्छरदानी का कपड़ा आता है, ताकि उसके अंदर कीड़े मकोड़े ना जा सके। और इसके बाद उसमें ज्यादा पानी ना जाए तो एक पन्नी से उसको ढक दीजिए, तो जब कभी बरसात हो तो तुरंत उसमें पन्नी आप चढ़ा दीजिए, देखभाल करते रहिए, मौसम खराब हो रहा है तो पानी अनावश्यक रूप से, ज्यादा पानी नर्सरी में नहीं जाएगा, पौध सुरक्षित रहेगी। इस समय तापमान बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए लगातार पन्नी से ढक के नर्सरी को ना रखें। हाँ, जाली से जरूर हमेशा ढकी हुई रखें, ताकि कीड़े मकोड़े उसमें ना जाने पाए क्यारी में। बीज की बुआई आप हमेशा लाइन में करिए, और लाइन में करने के बाद इस पे सड़ी हुई, खूब सड़ी हुई गोबर की खाद, केचुए की खाद मिल जाए तो और अच्छी है, उसकी एक परत नर्सरी पे डाल देनी चाहिए, ताकि उससे जो है बहुत ज्यादा धूप सीधे उसमें ना लगे, उससे ढक करके और तुरंत हजारे से हल्की सी सिंचाई कर देनी चाहिए। जब पौध निकलनी शुरू हो जाए तो उसको देखते रहना चाहिए, उसमें गलन रोग कभी कभी लगने की संभावना रहती है, अगर पानी ज्यादा लग गया तो उससे भी बचाव करके हमको फफूंदी नाशक का प्रयोग करना है आमतौर पर।
2: खेती किसानी कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। कुछ ही पलों में अंग्रेजी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: Notorious criminal Lalan Singh, carrying a combined bounty of 1,25,000 rupees, was killed in an encounter with the Uttar Pradesh Special Task Force in Saharanpur last night. Police said the shootout took place on the Sarsawa-Nakur road. A resident of Samastipur district in Bihar, Lalan Singh was wanted in several serious criminal cases, including the shooting of a sub-inspector and robbery of his service pistol in Varanasi, and a firing-cum-robbery case in Chandauli district. This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. Welcome back to the news. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar arrived in Mongolia on a two-day visit to further advance the special partnership between the two countries. In a social media post, Dr. Jaishankar shared this information and said he is looking forward to fruitful engagements. During the visit, the External Affairs Minister will meet with the Mongolian leadership and hold discussions with his counterpart, Foreign Minister B. Batsetseg. On the second leg of his visit, the External Affairs Minister will visit South Korea on Wednesday and Thursday. He will hold discussions with Foreign Minister Cho Hyun. He will also deliver the keynote speech at the Jeju Forum for Peace and Prosperity in Jeju on Thursday. In Colombia, right-wing candidate Abelardo de la Espriella has narrowly won Colombia's presidential election, defeating left-wing senator Ivan Cepeda by a very small margin. According to preliminary results, with almost all votes counted, de la Espriella received about 12.95 million votes, around 49.7% of the votes, while Cepeda received about 12.7 million, around 48.7% of the votes. The election marks a sharp shift in Colombia's power after the presidency of Gustavo Petro, who was constitutionally barred from running again, and backed Cepeda as his successor. An explosion ripped Qatar's key natural gas export infrastructure, injuring at least 54 people, while 18 others remain missing. According to official reports, the blast occurred in the Ras Laffan industrial area last night, one of the world's most important energy hubs, during ongoing efforts to resume operations at the facility following earlier disruptions linked to regional conflict. The incident triggered a major fire at the Barza gas supply facility, prompting emergency response teams to rush to the site. State energy giant Qatar Energy confirmed the incident, saying operations were underway to restart parts of the export terminal when the explosion took place. Officials have not yet confirmed whether the blast was accidental or linked to external factors. Global crude oil prices declined sharply by up to 3% today after talks between the United States and Iran concluded in Switzerland, easing concerns over supply disruptions and raising hopes of increased Iranian oil exports. International benchmark Brent crude fell more than 2% to around $79 a barrel, while U.S. West Texas Intermediate crude traded near $70 per barrel, a decrease of 3%. The decline came after senior U.S. and Iranian officials reportedly wrapped up the first round of talks aimed at extending a fragile ceasefire and reducing tensions in the region. The Intermeteorological Department, IMD, has issued a red alert for extremely heavy rainfall over Assam and Meghalaya today. IMD has also predicted heavy rainfall conditions in isolated places over sub-Himalayan West Bengal, Karnataka, Telangana, Kerala, Goa, Odisha and northeastern parts of the country till tomorrow. Similar conditions will also prevail over Bihar, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Lakshadweep, Puducherry and during the day. The Met Department has also forecast thunderstorms accompanied by lightning and gusty winds over Haryana, Chandigarh, Delhi, Punjab, Himachal Pradesh. News just in, Keir Starmer has resigned as Prime Minister of the United Kingdom in a statement outside 10 Downing Street. He said every decision he has made in office has been about putting the country that he loves first. In the FIFA World Cup 2026, Egypt registered their first ever World Cup victory 3-1 over New Zealand in Vancouver this morning. Liverpool star Mohamed Salah scored his first goal of the tournament. With this win, Egypt took over the first place in Group E. Earlier, Cape Verde held Uruguay to a 2-2 draw in their Group H match in Florida today. Iran and Belgium also played out a goalless draw in their Group B clash in California last night. In today's fixtures, Argentina will take on Austria in Group J. The match will begin at 10:30 p.m. IST. In men's hockey, India defeated the Netherlands 3-2 in their last match of FIH Pro League Rotterdam leg yesterday. Jugraj Singh, Abhishek and Rajinder Singh scored the goals, helping India register their second win of the leg against the Dutch side. Stand-in captain Hardik Singh was named player of the match for his leadership and strong midfield performance. Benchmark domestic equity indices were trading around 0.5% up in the afternoon session today. The Sensex rose 375 points to 77,178, while the Nifty advanced 108 points to 24,121 when reports last came in. In the broader market on the National Stock Exchange, mid-cap 100 index added 0.3%, while the small-cap 100 index was trading 0.5% up a short while ago. And now before we end the bulletin, the headlines once again. BJP government in West Bengal presents first full budget focusing on social welfare, infrastructure development and employment, announces a slew of women-centric schemes. BRICS National Security Advisors meeting begins in New Delhi to discuss emerging security challenges. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar arrives in Mongolia to hold meeting with his counterpart to deepen economic ties. IMD forecasts heavy to very heavy rainfall over Assam and Meghalaya today. And in FIFA World Cup, Egypt beat New Zealand 3-1 to secure first ever World Cup victory. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। सामाजिक कल्याण, अवसंरचना विकास और रोजगार पर ध्यान केंद्रित करते हुए महिलाओं के लिए कई योजनाओं की घोषणा। नई दिल्ली में आज से ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक शुरू, उभरती सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर मंगोलिया पहुंचे, आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने पर अपने समकक्ष से द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया और फीफा विश्व कप में मिस्र ने न्यूजीलैंड को 3-1 से हराकर विश्व कप में पहली जीत दर्ज की। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। रोजगार और जनकल्याण को बढ़ावा देते हुए राज्य के विभिन्न विभागों में 1,00,000 खाली पदों पर नियुक्ति की घोषणा की गई है। वित्त मंत्री स्वप्न दास गुप्ता ने बजट पेश करते हुए बताया कि नौकरियों में 33% पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। इनमें शिक्षकों और शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के लिए 50,000 पद और पुलिस विभाग में 20,000 नियुक्तियां शामिल हैं। अग्निवीरों के लिए आवश्यकता अनुसार 10% आरक्षण शुरू किया गया है। सिविक वॉलंटियर्स, होमगार्ड, ग्रीन पुलिस कर्मियों और एनवीएम कर्मचारियों का मासिक मानदेय 2,000 रुपये बढ़ाया गया है। कोलकाता क्षेत्र के लिए कल्याणी के पास एक नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का प्रस्ताव है। बजट में दो प्रमुख रक्षा केंद्रों के विस्तार और विकास में मदद के लिए हासीमारा एयरफोर्स स्टेशन को 25 एकड़ और कलाईकुंडा एयरफोर्स स्टेशन को 37 एकड़ जमीन सौंपने का प्रस्ताव भी है। एक रिपोर्ट।
2: राज्य सरकार ने सरकारी अर्ध सरकारी कर्मचारी, शिक्षक और शिक्षा कर्मियों के लिए 20% महंगाई भत्ते में वृद्धि की घोषणा की है। महंगाई भत्ता बढ़ के 38% हो जाएगा। यही सुविधा पेंशन भोगियों को भी मिलेगा। वित्त मंत्री ने बताया कि ये दर 1 अक्टूबर से लागू होगी। वित्त मंत्री ने बताया कि वर्तमान में राज्य पर कुल ऋण 8,15,891 करोड़ रुपए की है। इस कारण सामाजिक परियोजनाओं और वित्तीय अनुशासन शासन की बीच संतुलन बनाए रखना सरकार की सबसे बड़ी परीक्षा है। बजट में अन्नपूर्णा योजना के लिए 36,000 करोड़ रुपए की प्रावधान किया गया है। पार्श्व शिक्षक का वेतन 5,000 रुपए बढ़ाया गया है। आंगनवाड़ी कर्मी और आशा कर्मियों के लिए मासिक मानदेय में 5,000 रुपए की वृद्धि की गई है। संदीपन दासगुप्त के साथ काश्मीर नाहर, आकाशवाणी समाचार, कोलकाता।
1: तमिलनाडु विधानसभा में आज कर्नाटक की प्रस्तावित मेकेदातु बांध परियोजना पर चर्चा हुई। AIADMK, PMK और CPM सहित विपक्षी दलों ने आशंका जताई कि इस परियोजना से कावेरी जल बंटवारे पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और तमिलनाडु के हित प्रभावित हो सकते हैं। राज्य सरकार ने परियोजना के विरोध में अपना रुख दोहराते हुए कहा कि वो तमिलनाडु के जल अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार ने मेकेदातु जल न्यायाधिकरण के गठन की मांग से जुड़े विधानसभा के सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव का भी उल्लेख किया। ओडिशा में विधानसभा अध्यक्ष सुरमा पाढ़ी ने मार्च में राज्यसभा चुनाव के दौरान बीजू जनता दल, BJD और कांग्रेस की क्रॉस वोटिंग के आरोपी विधायकों को अयोग्य ठहराने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है। अध्यक्ष ने कहा कि दल बदल विरोधी कानून के अंतर्गत याचिकाओं में गंभीर प्रक्रियात्मक कमियां और सबूतों का मानक अभाव था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में कुनो नेशनल पार्क में चीता मित्रों और सहरिया जनजाति के सदस्यों से बातचीत की। उन्होंने प्रोजेक्ट चीता में उनके योगदान की सराहना की। राष्ट्रपति ने कहा कि इस महत्वाकांक्षी संरक्षण कार्यक्रम की सफलता में स्थानीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। एक रिपोर्ट।
3: राष्ट्रपति ने कूनो नेशनल पार्क में सफारी की और चीता पुनर्वास परियोजना की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने चीता कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का दौरा किया। उन्होंने प्रोजेक्ट चीता पर लगी प्रदर्शनी देखी और जानवरों की निगरानी, ट्रैकिंग और संरक्षण के लिए किए जा रहे उपायों के बारे में जानकारी ली। अधिकारियों ने राष्ट्रपति को बताया कि भारत में अभी 52 चीते हैं, जिनमें 49 कूनो नेशनल पार्क में हैं, जबकि 3 को गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य में स्थानांतरित कर दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ष 2022 में प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत की थी। उन्होंने नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा था। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना से और चीते लाए गए। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
1: नई दिल्ली में ब्रिक्स के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों NSA की बैठक चल रही है। 2 दिन की इस बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल कर रहे हैं। बैठक में समूह के 11 सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुख भागीदारी कर रहे हैं। इन देशों में भारत, ब्राजील, चीन, मिस्र, इथोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं। बैठक का मुख्य विषय वर्तमान समय में गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियां हैं। इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरों के तेजी से बदलते स्वरूप और उभरते सुरक्षा जोखिमों में नई तकनीकों की भूमिका पर चर्चा की जाएगी। गृह राज्य मंत्री बंडी संजय कुमार ने देश के विकास में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF की अहम भूमिका पर जोर दिया है। नई दिल्ली में आज CISF के मुख्यालय के इमारत के भूमि पूजन और ई उद्घाटन समारोह में उन्होंने कहा कि CISF के जवान देश की तरक्की को सुरक्षित रखने वाले आर्थिक सैनिक के तौर पर काम करते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर मंगोलिया पहुंचे। डॉ जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे भारत और मंगोलिया के बीच विशेष साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए सार्थक वार्ता की आशा करते हैं। इस यात्रा के दौरान विदेश मंत्री मंगोलिया के विदेश मंत्री बी बत्सिसक के साथ वार्ता करेंगे। यात्रा के दूसरे चरण में विदेश मंत्री बुधवार और बृहस्पतिवार को दक्षिण कोरिया जाएंगे। यात्रा के दौरान डॉ जयशंकर वहां के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ चर्चा करेंगे। वे बृहस्पतिवार को जेजू में शांति और समृद्धि के लिए जेजू फोरम पर मुख्य भाषण भी देंगे। विदेश मामलों की स्थायी समिति ने सामरिक सीमा सुरक्षा और विदेश नीति मुद्दों की समीक्षा के लिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख की 4 दिन की अध्ययन यात्रा शुरू की। सांसद शशि थरूर की अध्यक्षता में ये समिति सीमांत क्षेत्रों में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा स्थिति का प्रत्यक्ष अवलोकन करेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 25 जून तक समिति जम्मू, श्रीनगर, करगिल और लेह की यात्रा करेगी। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर जलपाईगुड़ी के जलदाबाड़ी में एक सड़क दुर्घटना में दो और घायलों की मृत्यु होने के बाद मृतकों की संख्या 6 हो गई है। मृतकों में दो महिला और एक बच्चा भी शामिल है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी

0: और दो मंत्रियों ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। उत्तर प्रदेश में कुख्यात अपराधी ललन सिंह को कल रात सहारनपुर में उत्तर प्रदेश विशेष कार्यबल एसटीएफ ने मुठभेड़ में मार गिराया। उस पर 1,25,000 रुपए का इनाम था। झारखंड में पिछले 24 घंटे में बिजली गिरने से लगभग 8 लोगों की मृत्यु हो गई और 12 से अधिक लोग घायल हुए हैं। बिजली गिरने की घटनाएं रामगढ़, गिरिडीह, खूंटी, देवघर, धनबाद और साहिबगंज जिलों में हुई हैं। बिजली गिरने की घटना में मरने वालों में सीपीआई के एक नेता, एक वार्ड सदस्य, एक किसान और अन्य निवासी शामिल हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज लुधियाना में प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक और पद्म भूषण से सम्मानित सरदारा सिंह जोहल से मुलाकात की। श्री नवीन ने उनके साथ पंजाब के कृषि संकट पर चर्चा की। बैठक के बाद श्री नवीन ने कहा कि श्री जोहल के साथ बातचीत के दौरान कृषि के मुद्दों पर अमूल्य जानकारी प्राप्त हुई।
1: मैं मानता हूं कि ऐसी शख्सियत जिसने किसानों की भावनाओं को समझा, कृषि को समझा और कृषि को कैसे एक सही रूप से आगे बढ़ाया जाए, इस चीज को उन्होंने एक रिसर्च के रूप में देखा है, तो निश्चित रूप से ऐसे शख्सियत से मिलना मेरे लिए भी सौभाग्य का विषय है।
0: केंद्रीय सूचना और प्रसारण तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉ. एल मुरुगन आज शाम 2 दिन के मध्य प्रदेश दौरे पर भोपाल पहुंच रहे हैं। डॉ. मुरुगन कल देवास जिले की कन्नौज तहसील के डोकाकोई जाएंगे। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में अपर केंद्रीय आयुक्त पूर्णेंदु भूषण वर्मा परिचर्चा में हिस्सा लेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @TIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर एक बयान में प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा कि पद पर रहते हुए उन्होंने जो भी फैसले किए उनमें देश को सबसे पहले रखने की बात ही मुख्य रही है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर में 0.5% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 375 अंक बढ़कर 77,178 पर, जबकि निफ्टी 108 अंक बढ़कर 24,121 पर कारोबार कर रहा था। स्विट्जरलैंड में अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता समाप्त होने के बाद आज कच्चे तेल की वैश्विक कीमत में 3% तक की गिरावट दर्ज की गई। इससे आपूर्ति बाधा को लेकर चिंताएं समाप्त होने और ईरान के तेल निर्यातों में वृद्धि की आशा बढ़ गई है। पश्चिम एशिया में नाजुक संघर्ष विराम को बढ़ाने तथा तनाव को कम करने पर केंद्रित पहले दौर की वार्ता के समापन की खबर अमेरिका और ईरान के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दिए जाने के बाद ये गिरावट आई है। ताइवान की सेना ने 5 दिवसीय तत्काल युद्ध तत्परता अभ्यास शुरू किया है। इस अभ्यास का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि किसी भी आपात स्थिति में सैन्य बल तुरंत और प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया दे सकें। ताइवान के रक्षा मंत्रालय के अनुसार इस अभ्यास के जरिए सैन्य इकाइयों की शांतिकाल से युद्धकालीन संचालन में तेजी से बदलाव करने की क्षमता को मजबूत किया जाएगा। यह अभ्यास ऐसे समय में हो रहा है जब हाल के वर्षों में चीन ने ताइवान के आसपास अपना सैन्य अभ्यास और गतिविधियां बढ़ा दी हैं। फीफा विश्व कप 2026 में मिस्र ने आज सुबह वैंकूवर में न्यूजीलैंड पर इस विश्व कप में 3-1 से अपनी पहली जीत दर्ज की। लिवरपूल के स्टार खिलाड़ी मोहम्मद सलाह ने टूर्नामेंट में अपना पहला गोल किया। इस जीत के साथ मिस्र ग्रुप सी में पहले स्थान पर पहुंच गया है। आज ग्रुप जे में अर्जेंटीना का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। मैच रात 10:30 बजे से शुरू होगा। मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कल तक पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, कर्नाटक, तेलंगाना, केरलम, गोवा, ओडिशा और पूर्वोत्तर के कुछ स्थानों पर तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। बिहार, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, लक्षद्वीप, पुदुचेरी और कार्यकाल में भी दिन के दौरान ऐसी स्थिति रहेगी। आज हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में तेज हवा तथा बादल गरजने के साथ वर्षा का भी अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, विदर्भ और तेलंगाना में कल तक लू चलने की संभावना है। हरियाणा के राखीगढ़ी पुरातात्विक स्थल से खुदाई में मिले मानव कंकाल

0: काल अवशेषों को उन्नत वैज्ञानिक अध्ययन के लिए भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण को सौंप दिया गया है। ये प्रक्रिया भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण के बीच हाल ही में हुए समझौता ज्ञापन के अंतर्गत की गई है। करीब 550 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला राखीगढ़ी सिंधु सरस्वती सभ्यता की सबसे बड़ी ज्ञात बस्ती माना जाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि इन कंकालों के अध्ययन से सिंधु सरस्वती सभ्यता के लोगों के जीवन, स्वास्थ्य और सामाजिक संरचना से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त हो सकेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का एक लेख साझा किया। इस लेख में कानूनी व्यवस्था को मजबूत करने, न्याय की प्रक्रिया को आसान बनाने और नागरिकों के लिए सरकारी सेवाओं को अधिक सुलभ बनाने की सरकार की कोशिशों का उल्लेख किया गया है। अपने लेख में श्री मेघवाल ने कहा कि न्यायिक संस्थान एक पुल की तरह काम करते हैं जो हर हितधारक को न्याय की व्यापक खोज और सामूहिक भलाई के साथ विश्वास, अपनापन और जुड़ाव की भावना विकसित करने में मदद करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सफलता इस बात का प्रमाण है कि योग न केवल विश्वभर में लाखों लोगों को शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने में मदद कर रहा है, बल्कि उन्हें सकारात्मक जीवन जीने के लिए प्रेरित भी कर रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। सामाजिक कल्याण, अवसंरचना विकास और रोजगार पर ध्यान केंद्रित करते हुए महिलाओं के लिए कई योजनाओं की घोषणा। नई दिल्ली में आज से ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक शुरू। उभरती सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर मंगोलिया पहुंचे। मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। और फीफा विश्व कप में मिस्र ने न्यूजीलैंड को 3-1 से हराकर विश्व कप में पहली जीत दर्ज की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे नेपाली कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से।
0: समाप्त हुआ। नमस्कार।

मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलोहर्ट्स तथा FM 100.1 मेगाहर्ट्स पर हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 4 बज रहे हैं। हमारी आज की सभा यहीं संपन्न होती है। शाम 5 बजे हम अपने सायंकालीन प्रसारण सभा कार्यक्रमों के साथ आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। साथ ही विविध भारती का कार्यक्रम जारी रहेगा। इसी के साथ हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: नमस्कार श्रोताओं, सेहतनामा कार्यक्रम में हम आज आपके लिए लेकर आए हैं सुप्रसिद्ध गैस्ट्रो एंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता से एक मुलाकात। आपसे बातचीत की है ममता सिंह ने, आज सुनिए इस बातचीत का पहला भाग।
1: नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह और आज विविध भारती के स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है एक ऐसे डॉक्टर को जो हेपेटोलॉजी गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के सीनियर कंसल्टेंट हैं कोकिलाबेन हॉस्पिटल में। आप हैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता। डॉक्टर साहब, आपका विविध भारती के स्टूडियो में हम बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं। नमस्कार।
2: नमस्कार, धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए और ये अवसर देने के लिए आपसे बात करने के लिए।
1: डॉक्टर साहब, यहाँ विविध भारती के स्टूडियो में आकर आपको कैसा महसूस हो रहा है, कैसा लग रहा है?
2: नहीं, बहुत बढ़िया लग रहा है। काफी दूर है हमारा हॉस्पिटल से, इतना बड़ा स्टूडियो, इतनी बड़ी जगह, इतनी खुली जगह देख के बहुत अच्छा लग रहा है। काफी बड़े स्टूडियोज हैं, फिर सब लोगों को मिलकर बहुत अच्छा लगा
1: जी। आज सेहतनामा कार्यक्रम में हम चर्चा कर रहे हैं फैटी लिवर और पेट की अन्य तमाम बीमारियों के बारे में। तो डॉक्टर साहब, फैटी लिवर आजकल बहुत कॉमन हो गया है, हर चौथा पांचवा मरीज ऐसा सुनने में आता है और सोशल मीडिया के माध्यम से तो हर कुछ पॉपुलर हो जाता है, मशहूर हो जाता है। तो बताइए कि फैटी लिवर है क्या और इससे कौन कौन सी बीमारियाँ उत्पन्न होती हैं?
2: आपने बिल्कुल सही किया, फैटी लिवर अभी बहुत बहुत कॉमन हो चुका है। आपने कहा हर चौथे पांचवें आदमी को फैटी लिवर है, पर मैं कहूंगा हर दूसरे तीसरे आदमी को फैटी लिवर है। अगर आप देखें ओवरऑल फैटी लिवर को, तो कहने में आया है कि बड़े शहरों में जो हम अर्बन पॉपुलेशन कहते हैं उनमें अबाउट 30-40% लोगों को ये बीमारी है फैटी लिवर। अगर आप गाँवों में चले जाएं, छोटे शहरों में चले जाएं, तो ये बीमारी थोड़ी कम है और इसके कारण भी मैं आपको बताऊंगा। फैटी लिवर का मतलब होता है लिवर के अंदर ज़्यादा फैट जमा हो जाना। हमारे लिवर के अंदर फैट होना जरूरी है फॉर बॉडी के कई फंक्शंस के लिए, बट जब ये फैट ज़्यादा हो जाता है तब ये लिवर को नुकसान देता है और

अगर लिवर खराब हो जाए तो बॉडी के कई और ऑर्गन्स पे ये इफेक्ट करता है। अगर हमारे लिवर के अंदर फैट 5% मतलब 5% से ज्यादा हो जाए तो ये

0: लिवर को खराब करता है, डायबिटीज होना, प्री डायबिटीज होना,
1: जी जी
0: एक्सरसाइज नहीं करना
1: जी,
0: आजकल सब ऑटो में जाते हैं, टैक्सी में जाते हैं, वॉक करना तो ऑलमोस्ट सबने छोड़ ही दिया है, सबके वजन बढ़ रहे हैं, तो ये कई कारण है जिससे लिवर में फैट ज्यादा होता है और उससे लिवर को नुकसान पहुंच सकता है।
1: तो फैटी लिवर से और कौन कौन सी बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं, और एक बात, और दूसरी बात ये बताइए कि इसके लक्षण क्या है, कैसे मरीज को पता चले कि फैटी लिवर हो गया है उसको?
0: तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि हमको पता ही नहीं चलता कि ये प्रॉब्लम हो रही है। जब पेशेंट हमारे पास आता है ये प्रॉब्लम के साथ, तब काफी लेट हो चुका होता है, ऑलरेडी लिवर पूरी हद तक खराब हो चुका होता है, जिसको हम सिरोसिस कहते हैं। अगर हम इसको जल्दी पकड़े तो इसकी ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं। आपका फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन का था कि ये क्यों होता है और इसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, लक्षण क्या होते हैं। तो नॉर्मली इसके लक्षण बहुत कम होते हैं, कभी कभी हमको हमारे पेट के ऊपर के हिस्से में थोड़ा दर्द हो सकता है, थकान आ सकती है। अगर हम अपने ब्लड टेस्ट चेक करें उसमें हमको डायबिटीज हो सकती है या प्री डायबिटीज हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ आता है ब्लड के अंदर, तो ये दो तीन लक्षण है जिससे हमको सोचना चाहिए कि हमको शायद फैटी लिवर हो। क्लियरली अगर आपका वजन बढ़े जा रहा है, आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, खाना ठीक से नहीं खा रहे हो, तो आपको फैटी लिवर होने की संभावना है। बट अगेन मैं यही कहूंगा कि चेकअप करना जरूरी है क्योंकि इसके कोई सिम्टम्स होते नहीं है, सिम्टम्स बहुत आगे जाके आते हैं जब हम कुछ नहीं कर सकते।
1: जी, तो क्या है चेकअप का तरीका, क्या होता है डॉक्टर साहब फैटी लिवर का, किस तरह की जांच पद्धति है?
0: तो इस बेसिक चेकअप जो होता है, हमें सादे जो ब्लड टेस्ट होते हैं, जो हम रेगुलर ब्लड टेस्ट करते हैं, उसमें हम देख लेते हैं कि हमको डायबिटीज है कि नहीं, हमारा HbA1c कितना है, हमारा ट्राइग्लिसराइड्स कितना है, LDL कोलेस्ट्रॉल कितना है, हमारा वजन कितना है। अगर वजन हमारा बढ़ रहा है या ज़्यादा है, हम ओबीस कैटेगरी में आते हैं जिसमें एक हम नंबर कैलकुलेट करते हैं BMI, जो हाइट और वेट पे डिपेंड करता है, और अगर वो 23 से ज़्यादा हो तो देयर इज अ रिस्क कि आपको शायद फैटी लिवर हो। फिर एक्चुअल डायग्नोसिस के लिए सोनोग्राफी लगती है। अगर आप पेट की सोनोग्राफी कराओ, कोई और कारण भी कराओ, उसमें अगर लिवर दिखे और उसमें आए कि लिवर फैटी है, तो वो आपकी डायग्नोसिस होगी फैटी लिवर है। पर ये खाली कह रहा है कि आपको फैटी लिवर है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको तकलीफ है। फैटी लिवर कई लोगों को होता है, पूरी जिंदगी लिवर में थोड़ा फैट ज्यादा होता है, पूरी जिंदगी कट जाती है, लिवर को कुछ नहीं होता है। बट ऐसे थोड़े पेशेंट्स हैं जिनको हमको ढूंढना पड़ता है, जिनको आगे जाके ये फैटी लिवर नुकसानदेह दे सकता है। टेस्ट करने के लिए कि कितना लिवर डैमेज है, दो तीन तरह के टेस्ट होते हैं। एक मशीन आती है हमारे OPD में, जिसमें मशीन से लिवर को हाथ लगाते हैं, वो 2 मिनट के अंदर बता देता है कि फैट कितना है पर नुकसान है कि नहीं, क्योंकि अगेन अगर नुकसान है तो उसकी ट्रीटमेंट करने की जरूरत है।
1: जी,
0: कई नए अल्ट्रासाउंड आए हैं जो अगेन लिवर को स्कैन करके बता देते हैं फैट है और डैमेज है कि नहीं। थोड़े एडवांस टेक्नोलॉजीज भी है हमारे हॉस्पिटल में, क्योंकि हम काफी ट्रांसप्लांट्स करते हैं हमारे डिपार्टमेंट में, तो एक MRI करके स्कैन आता है जिससे हम पता करते हैं कि लिवर में डैमेज है कि नहीं, और एक स्पेशल CT स्कैन भी अवेलेबल है। अब ये सारे जो टेस्ट है सिंपल टेस्ट है, हमको आराम से मिल जाते हैं सब जगह से। अगर आपको चाहिए कि कोई फाइनल टेस्ट हो जो बताए कि कितना लिवर खराब है, तो लिवर बायोप्सी करते हैं, लिवर का एक टुकड़ा लेते हैं। पर मुझे याद नहीं है लास्ट मैंने लिवर बायोप्सी फैटी लिवर के लिए कब की थी, क्योंकि हमारे जो न्यू टेक्नोलॉजीज है वो इतने सोफिस्टिकेटेड, इतने एडवांस हो चुके हैं कि 2 मिनट के अंदर मैं पेशेंट को बता देता हूं कि आपको लिवर में खाली फैट है कि फैट के साथ नुकसान है। बट इसके लिए पेशेंट हैज टू बी एजुकेटेड, पेशेंट को पता होना चाहिए कि मुझे ये टेस्ट करने हैं। अगर हमारे पास वो टेस्ट लेके आओगे तो हम आगे आपको टेस्ट करके आंसर दे पाएंगे।
1: जी, और सबसे बड़ी बात यह है कि जरा भी तकलीफ होती है या यूं ही फैट बढ़ रहा है तो डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। अमूमन लोग डॉक्टर के पास जाने में ही परहेज करते हैं, अपने आप ही गूगल के जरिए कुछ कुछ दवाइयां ले लेते हैं, ये भी ठीक नहीं है। खासतौर से उन श्रोताओं के लिए ये बात हम कह रहे हैं जो ग्रामीण इलाकों में, कस्बों में बसते हैं, तो उनकी जानकारी के लिए बड़ी कारगर बातें आपने बताई। डॉक्टर साहब, आगे बढ़ने से पहले एक गाना हम अपने श्रोताओं को सुनवा दें, आपकी पसंद का गाना बताइए।
0: मेरा एक गाना जो बहुत मुझे पसंद है, जब मैं अमेरिका में था काफी साल, 14-15 साल मैंने वहां बिताया।
1: अच्छा।
0: तो यहाँ बॉम्बे का ही हूँ, यहाँ पढ़ा लिखा हूँ MBBS की, मगर बाहर जाके ट्रेनिंग की, एडवांस ट्रेनिंग की, प्रैक्टिस की काफी साल। तो 14-15 साल छोड़ के मैं वापस आ गया क्योंकि मेरे पेरेंट्स यहाँ थे। तो वहां मैंने एक सॉन्ग बहुत सुनता था, वो स्वदेश पिक्चर का एक सॉन्ग था शाहरुख खान का,
1: ये जो देश है मेरा।
0: ये सॉन्ग मुझे बहुत बहुत पसंद।
1: क्या बात है, सुनते हैं यही गाना स्वदेश फिल्म का।

0: डॉक्टर साहब, आपने जिक्र किया कि आप अमेरिका में रहे बहुत साल, तो किस तरह की पढ़ाई वहाँ पर थी आपकी?
1: तो बेसिक MBBS मैंने यहाँ से की, बॉम्बे से की। फिर वहाँ पे मेरे फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली वहाँ रहती थी, तो मैं वहाँ जाके पहले अपना बेसिक MD मेडिसिन की, हमने वहाँ पे तीन
0: जी
1: साल का कोर्स होता है वहाँ पे, जो MD मेडिसिन MBBS के बाद करते हैं। फिर उस टाइम पे मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कि वहाँ पे लिवर के लिए पढ़ाई करूँ एक्स्ट्रा, जो स्पेशल फेलोशिप होती है
0: जी
1: हेपेटोलॉजी की, जब हम लिवर और लिवर ट्रांसप्लांट के बारे में सीखते हैं हाउ टू डू इट, तो मैंने एक साल का कोर्स किया। इसके पीछे भी एक रीज़न है कि क्यों मैंने ये फील्ड चूज़ की थी, मैं बताऊँगा आपको आगे। और सब्सिक्वेंटली पूरी ट्रेनिंग ख़त्म करने के लिए गैस्ट्रोएंटरोलॉजी जो करते हैं
0: जी
1: हम, एंडोस्कोपी वो की, एंड फाइनली मैंने हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में जाके एडवांस एंडोस्कोपी सीखी, जो स्पेशलाइज एंडोस्कोपीज होती है, एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड ERCP करके टेस्ट होते हैं, जो हम हमारे ट्रांसप्लांट पेशेंट्स पे भी करते हैं, वो सीखी। तो ओवरऑल 8 से 9 साल लगे वहाँ पे पढ़ने को, फिर 4-5 साल उधर काम किया, फिर 14 साल बाद आई डिसाइडेड कि वापस आना चाहिए अपने देश। तो जैसे मेरी माँ कहती है ना, वनवास करके आ गया
0: अरे
1: वापस।
0: क्या बात है, ये बहुत बड़ी बात आपने बताई और हमारे बहुत सारे युवा श्रोता सुनते हैं प्रोग्राम, तो कितनी अच्छी बात है कि अपने देश की प्रतिभा को वापस अपने देश में आपने दिया। और अपने श्रोताओं को ये बताते हुए मैं अच्छा लग रहा है कि हम निजी तौर पर भी डॉक्टर साहब को जानते हैं और बड़े अनुभव का खजाना है हमें पता था, लेकिन इतनी सारी नॉलेज का भी खजाना है ये हमें आज पता चला। डॉक्टर साहब, आज फैटी लिवर पे हम पहले बात कर रहे हैं, उसके बाद हम बहुत सारी पेट की बीमारियों पर भी चर्चा करेंगे। हमें बताइए कि दवाइयों से क्या फैटी लिवर का इलाज संभव हो सकता है या कोई ऑपरेशन या परहेज कुछ करना पड़ता है?
1: बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि जब भी पेशेंट हमारे पास आता है, पेशेंट की एक्सपेक्टेशन रहती है कि हम एक दवाई लिख के दें।
0: जी
1: तो फैटी लिवर ऐसी बीमारी है जो अगर जल्दी पकड़े जाए तो इसके लिए दवाई की जरूरत नहीं है। अगर आप अपने बॉडी का 5-10% भी वजन कम कर पाए, किस तरह भी, चाहे आप डाइट करो, एक्सरसाइज करो, अगर 5-10% आपने वेट कम कर लिया, तो बीमारी पूरी तरह से मिट जाती है मोस्ट पेशेंट्स में। पर ये करना बहुत मुश्किल है, कहना आसान है। तो मोस्ट पेशेंट्स को कोई ना कोई दवाई की जरूरत पड़ती है। पहले हम विटामिन ई देते थे, एक गोली आती थी वो देते थे उसके लिए। उसके बाद और नई दवाइयाँ, एक इंडियन दवाई आई है जो हम देते हैं, जिससे फैटी लिवर भी कम होता है और लिवर का डैमेज भी थोड़ा थोड़ा कम होता है। अमेरिका में 2 और दवाइयाँ अभी अप्रूव हुई हैं, एक साल पहले हुई थी, कभी 6 महीने पहले हुई है। आजकल जो सबसे ज्यादा दवाई हम यूज करते हैं इसके लिए, वो है सेमाग्लूटाइड, एक तरह का इंजेक्शन होता है जिससे वेट लॉस होता है, जो आजकल काफी फेमस हो चुका है फॉर गुड एंड बैड रीजंस। तो देर आर मेडिसिन अवेलेबल हैं दवाइयां, मगर ये डॉक्टर के देख के डॉक्टर है डिसाइड कि कौन सी दवाई आपके लिए सही है। मेरा मानना होता है कि पेशेंट्स खुद, जैसे आपने कहा, गूगल करके दवाई ले लेते हैं। स्पेशली ये जो हर्बल मेडिसिन होते हैं, आयुर्वेदिक मेडिसिन होते हैं, उस पर थोड़ा ध्यान से लेना चाहिए, क्योंकि उनमें कभी कभी भस्म होता है, उसमें लिवर को डैमेज करने का और चांस होता है। तो ये दवाइयाँ थोड़ा ध्यान से लेनी चाहिए। अगेन, बिना दवाई के हो सकता है। मेरे हर एक पेशेंट को पहले मैं 3 से 6 हफ्ते का चांस देता हूँ कि वेट लॉस करो। अगर वजन नहीं कम कर पा रहे और नहीं हो रहा है आपका फैटी लिवर रिवर्स, फिर हम दवाई शुरू करते हैं।
0: जी, तो डॉक्टर साहब, आजकल ये समस्या युवाओं में भी बढ़ रही है, उसका कारण स्ट्रेस है, पढ़ाई का बोझ है, और अगर वो कंपनीज में काम कर रहे हैं तो उसका बोझ है, तो क्या तनाव भी एक कारण है? एक बात ये बताइए, और साथ में हमें ये भी बताइए कि लिवर के, इस फैटी लिवर के कारण और कौन कौन सी बीमारियां पैदा हो जाती हैं?
1: हाँ, तो बहुत सही कहा आपने, फैटी लिवर, स्ट्रेस गो हैंड इन हैंड। आजकल मैं देखता हूँ मेरे जो पेशेंट्स आते हैं और फैमिली मेंबर्स भी, उन्होंने 12-12 घंटे काम कर रहे हैं, 14 घंटे काम
0: कर
1: रहे हैं, स्पेशली पढ़ाई कर रहे हैं, बैठे रहते हैं। मैं अपने लड़के के बारे में बोलूं, बैठे रहेंगे, वजन बढ़ेगा, एंड फिर उस टाइम पे कुछ सूझता नहीं है, जो हाथ में आया खा लिया, एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं है, जंक फूड खा लिया, और डाइट इज बेसिकली नॉन एग्जिस्टेंट है अभी। तो आई थिंक स्ट्रेस ऑफ वर्क, स्ट्रेस ऑफ स्टडीज, स्ट्रेस ऑफ जॉब, ट्रैवल, वो सबसे भी अपने बॉडी के हॉर्मोन्स फ्लक्चुएट होते हैं, जिसमें वेट गेन होना बहुत रैपिडली होता है। फिर वो स्ट्रेस को कम करने के लिए हम खाना खाते हैं, जो बोलते हैं स्ट्रेस ईटिंग। हम ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स खाएंगे, प्रोटीन कम खाएंगे, प्रोसेस्ड फूड्स खाएंगे, स्विगी ऑर्डर कर लिया, इंस्टा ऑर्डर कर लिया, 5 मिनट में घर पे आ गया, खा लिया और काम खत्म। तो ऑल दीज कैन देन लीड टू फैटी लिवर, एंड देन वंस फैटी लिवर हो गया देन फैटी लिवर अगेन इज नॉट द प्रॉब्लम. तो फैटी लिवर अगर आपको है तो कह रहा है कि आपको बॉडी में और प्रॉब्लम होने के चांसेस है, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, हार्ट डिजीज, किडनी डिजीज, ये सब वेट से रिलेटेड है, सब फैट से रिलेटेड है. तो लिवर तो बेचारा एक ऑर्गन है जो सब स्टोर कर रहा है, बट उसकी इफेक्ट सारे ऑर्गन्स पे हो सकती हैं.
0: जी, तो ये फैटी लिवर के बारे में अवेयरनेस बहुत कम है, तो हमारे बहुत सारे श्रोता जो विविध भारती के फेसबुक पेज से जुड़े हैं उन्होंने कुछ सवाल भी भेजे हैं, तो फैटी लिवर के बारे में बताया है लेकिन सवाल उन्हें नहीं सूझा, तो मैं ही सब पूछ रही हूँ अपनी तरफ से, उन श्रोताओं की ओर से भी, कि फैटी लिवर पर अगर ध्यान नहीं दिया गया, थोड़ी बहुत लापरवाही या असावधानी की वजह से, तो क्या लिवर सोरायसिस या लिवर कैंसर जैसी बीमारियां भी पनप सकती हैं क्या?
1: बिल्कुल, अगर 100 पेशेंट्स को लें, आप 100 लोगों को लें जिनको फैटी लिवर है और उनको और कोई और बीमारी नहीं है, तो इनमें से 2 से 3% लोगों को आगे जाके लिवर सिरोसिस होगा. ये बहुत बड़ा नंबर है. आई मीन ये मैं डायबिटीज़ वालों को नहीं बोल रहा, मैं रेगुलर पेशेंट्स को बोल रहा हूँ. अगर आप देखें हमारी इंडियन पॉपुलेशन इज क्लोज टू 250 करोड़, उसमें अगर आप 3% लोगों को भी लिवर सिरोसिस दे दें, दैट्स अ वेरी बिग नंबर. बहुत लोगों को लिवर सिरोसिस होता है. एक बार लिवर सिरोसिस हो जाए वो परमानेंट है, तो लिवर सिरोसिस पेशेंट को फिर लिवर कैंसर होने की संभावना 20 से 30 गुना ज्यादा होती है. तो लिवर फैटी लिवर से सिरोसिस होता है, सिरोस के साथ आगे कैंसर होने के चांसेस कई ज्यादा.
0: जी, डॉक्टर साहब यहाँ पर एक गाना सुनते हैं, बताइए आपकी पसंद का कौन सा गाना सुनाएं अपने श्रोताओं को।
1: दूसरा गाना जो मुझे बहुत पसंद है वो मैं एक्सरसाइज के टाइम कभी कभी सुनता हूँ, क्योंकि आई लाइक
0: जी।
1: थोड़ी बीट्स होनी चाहिए. भाग मिल्खा भाग वाला गाना
0: क्या बात है,
1: मुझे
0: फिल्म का
1: पसंद
0: नाम
1: है.
0: भी सुनते हैं, फरहान अख्तर पर्दे पर हैं और अच्छी एक्टिंग करते हैं और भाग रहे हैं सचमुच, तो बेहतरीन गाना चुना है, सुनते हैं यही गाना। और ये भाग मिल्खा भाग फिल्म का गाना सुनते हुए अपने श्रोताओं से ये भी कहना जरूरी है कि बस भागना जरूरी है जिंदगी

0: और अब हमारे श्रोताओं को बताइए कि आपने जो लिवर सोराइसिस के बारे में जानकारी दी, तो इसके क्या लक्षण हैं और किस तरह इसका ट्रीटमेंट हो सकता है?
1: जब लिवर सिरोसिस होता है तो अनफॉर्चुनेटली पेशेंट डॉक्टर के पास आता है, उनको तकलीफें शुरू हो जाती हैं। सबसे बड़ा सिम्टम होता है फिटीग, थकान रहना, पूरे दिन थका हुआ रहता है आदमी। कभी कभी फैमिली मेंबर नोटिस करता है कि आंखें पीली हो रही है, येलो हो रही हैं। कभी कभी पेट फूलना शुरू हो जाता है, वजन कम होता है मगर पेट फूल रहा है, पेट में पानी जमना शुरू हो जाता है। रेयरली कभी कभी पेशेंट को वॉमिटिंग होती है, उसमें कभी कभी खून की उल्टी भी हो सकती है क्योंकि सिरोसिस के कारण खाने के पाइप में कोई नसें फट जाती हैं। तो ये सारे लक्षण जब आते हैं तो वो कह रहा है आपको कि लिवर काफ़ी हद तक ख़राब हो गया है, और तभी नॉर्मली पेशेंट डॉक्टर को मिलने आता है।
0: जी, तो इसका इलाज संभव है पूरी तरह या ये एक लाइलाज बीमारी है, हमेशा दवा खानी पड़ती है?
1: नहीं, दवाई तो हमेशा खानी पड़ती है, इट इज़ इसकी ट्रीटमेंट हो सकती है अगर हमको कोई और कारण पकड़ में आ जाए। कभी कभी सिरोसिस के साथ हेपेटाइटिस होता है, जो इंडिया में कॉमन है, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, उसको हम अगर ट्रीट कर दें तो खराब लिवर को भी बचा सकते हैं और जिंदगी कट सकती है। फैटी लिवर मगर ऐसी बीमारी है जिसमें कोई ट्रीटमेंट नहीं है, अगर आपको सिरोसिस हो जाए तो आगे जाके धीरे धीरे बढ़ती है। हम बेसिकली उसके जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, जैसे खून की उल्टी होना, पेट में पानी बनना, थकान होना, हीमोग्लोबिन कम होना, उसको ठीक कर सकते हैं, पर एक बार सिरोसिस सेट हो गया है तो वो इरिवर्सिबल बीमारी है, और फिर आगे जाके हमको मोस्ट पेशेंट्स का लिवर बदलना पड़ता है, लिवर ट्रांसप्लांट बोलते हैं।
0: डॉक्टर साहब, हम जानना चाहते हैं कि फैटी लिवर से डायबिटीज का क्या संबंध है? क्या ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं कि मतलब फैटी लिवर हो गया तो डायबिटीज होना जरूरी है या क्या
1: हाँ,
0: है?
1: ये अच्छा सवाल है, क्योंकि अगर आप इंडिया में देखा जाए तो अगर आप देखें जिनको फैटी लिवर है
0: जी
1: उनका हम अगर डायबिटीज का चेकअप करें तो काफ़ी लोगों को प्री डायबिटीज़ होता है,
0: जी
1: मतलब
0: जी
1: डायबिटीज शुरुआत होने की चांसेस है। HbA1c जो बोलते हैं वो 5.7 5.8 होता है मोस्ट प्लेसेस में। अगर आप देखें अब्रॉड, अगर आपका HbA1c 5.6 5.7 है, आपको प्री डायबिटीज़ है, आपको 10 या 12 साल बाद डायबिटीज शुरू होनी होनी है। इंडिया में फॉर सम रीजन, ये हमारा जेनेटिक्स है या कुछ है, कि अगर हमको फैटी लिवर है और हमारा HbA1c प्री डायबिटिक रेंज में है, 3 से 4 साल में या 5 साल में आपको डायबिटीज हो सकती है। तो अगर आपको फैटी लिवर है, ये कह रहा है कि आपको आगे जाके डायबिटीज हो सकती है। नाउ उल्टा सवाल, अगर आपको डायबिटीज है तो रिस्क ऑफ फैटी लिवर इज वेरी हाई। नॉट ओनली रिस्क ऑफ फैटी लिवर इज हाई, रिस्क ऑफ फैटी लिवर विद कॉम्प्लिकेशन, मतलब जो डैमेज, फाइब्रोसिस बोलते हैं, वो काफी हाई होती है। तो अगर आप देखें आजकल के जो डायबिटीज की दवाई शुरू हुई है, जो न्यू दे रहे हैं, जो वेट लॉस ड्रग जो डायबिटीज के लिए एक्चुअली अप्रूव्ड है, वो फैटी लिवर को भी हेल्प करती है। सो इट वर्क्स बोथ वेज।
0: अच्छा, तो इसके लिए क्या अवेयरनेस क्या होनी चाहिए कि इन बीमारियों से मरीज मतलब उसके चपेट में ना आए, उसके लिए क्या करना चाहिए
1: ना,
0: पहले?
1: अवेयरनेस यही है कि जैसे हमने कहा है खाने पे ध्यान दो। हमारा जो इंडियन डाइट है वो काफ़ी पुअर है इन टर्म्स ऑफ प्रोटीन इंटेक, कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा है, प्रोटीन बहुत कम है। तो अगर हम प्रोटीन बढ़ाएं डाइट में, कार्बोहाइड्रेट कम करें, तो अपने आप थोड़ा वेट लॉस होगा, मसल मास बढ़ेगा, रिस्क ऑफ डायबिटीज़ कम हो जाएगा। एक्सरसाइज करो, जो मैंने गाना थोड़ी देर पहले बजाया था, भाग मिल्खा भाग, उसका यही है कि भागो, एक्सरसाइज करो। बहुत से पेशेंट हमारे पास आते हैं, हम सबको पूछता हूँ, मेरा पहला सवाल यही होता है कि एक्सरसाइज कर रहे हो, और सबका सवाल, आधे लोग बोलते हैं हाँ वॉक करते हैं। तो वॉक इज नॉट गुड। अगर आप जो भी डेटा देखें तो 150 से 200 मिनट की एक्सरसाइज हफ्ते की जरूरी है अगर आपको अपनी बॉडी को फिट रखना है, जिसमें इट इंक्लूड्स कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज, जिसमें आप वॉकिंग करते हैं, और आपकी सांस फूलनी चाहिए, पसीना आना चाहिए। आप खाली वॉक करो, काम पे जाओ, स्टेशन तक जाओ, वापस आ जाओ, दैट इज नॉट एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में सांस फूलनी चाहिए, हार्ट रेट बढ़ना चाहिए एज अप्रोप्रिएट, और
0: जी
1: थोड़ी मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए। हफ्ते में 2 दिन थोड़े वेट्स करने चाहिए जिससे आपका मसल बढ़े। अगर आपका मसल का साइज बढ़ेगा, आपका वेट लॉस जल्दी होगा, डायबिटीज नहीं होगी या कंट्रोल में आएगी, बॉडी का फैट निकलेगा क्योंकि मसल ज्यादा बर्न करेगा एनर्जी को। तो अगेन चेकअप कराते रहिए, बेसिक ब्लड टेस्टिंग का, एक्सरसाइज कर कीजिए 150 मिनट्स मिनिमम अ वीक, खाने में ध्यान दीजिए, प्रोटीन बढ़ाए अपने खाने में, और रेगुलर अपना हेल्थ चेकअप कराते रहिए।
0: जी, कई बार लोग ये भी भ्रांति है, मतलब गलतफहमी है लोगों में कि प्रोटीन खाने से पाचन की समस्या बढ़ती है, एक उम्र के बाद प्रोटीन लोगों को कम कर देना चाहिए, तो दाल कम कर देते हैं लोग, चने खाना, तो इसके बारे में थोड़ा
1: हाँ,
0: बताइए।
1: ये अच्छा सवाल है बहुत, क्योंकि जब भी मैं पेशेंट को बोलता हूँ कि आपको फैटी लिवर है, तो उनके
0: जी
1: दो जवाब होते हैं सबके, कि हम तो अल्कोहल पीते नहीं है, क्योंकि सबके मन में भ्रम है कि अल्कोहल से फैटी लिवर
0: बिल्कुल
1: होता है,
0: जी
1: और दूसरा होता है कि हम तो शाकाहारी है, हम तो कांदा लहसुन भी नहीं खाते। मेरा मानना है कि इन इंडिया बींग अ वेजिटेरियन इज अ रिस्क फैक्टर फॉर लिवर डिजीज, बिकॉज वेजिटेरियंस में हम ज्यादातर कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं। अगर हमारी डाइट देखे, 70-80% कार्ब्स है, 10% फैट होगा, 10-15% प्रोटीन है, और ये वेस्टर्नाइज डाइट देखो तो 30% तक प्रोटीन होता है डाइट में। तो
0: यस
1: प्रोटीन डाइजेस्ट करना इजी है। इनफैक्ट हमारे जो दालें

0: है वो ज्यादा इजी है डाइजेस्ट करना देन अदर फॉर्म्स ऑफ प्रोटीन, जैसे अपने एग्स हो गए, मीट्स हो गए। तो हम शाकाहारी तो हम नहीं खा सकते, तो ये भ्रम है कि आगे जाके नहीं खाते हम। इनफैक्ट बढ़ाना चाहिए थोड़ा, उससे
1: बिल्कुल
0: आपकी शुगर कंट्रोल में रहेगी, आपकी मसल स्ट्रांग रहेगी, बोन स्ट्रांग रहेंगे, फ्रैक्चर्स होने के चांस कम हो जाते हैं।
1: जी। तो अभी जो भी श्रोता सुन रहे हैं तो अपने डायटिशियन से संपर्क करें या ये खोजें कि कहाँ कहाँ प्रोटीन ज़्यादा मात्रा में है, और आज से प्रोटीन की डाइट शुरू करें। इसमें हम भी शामिल हैं, हम अपने को भी शामिल करते हैं इसमें। और अब एक गाना सुने डॉक्टर साहब।
0: बिल्कुल। तो एक और गाना जो मुझे बहुत पसंद है, स्कूल डेज में हमने सुना था जब मेरे 10th खत्म हुई थी, जो जीता वो सिकंदर का गाना, यहाँ के हम सिकंदर।
1: क्या बात है, बहुत बढ़िया गाना चुना है, और सभी हमारी बातचीत से मेल खा रहे हैं। अगर अपनी सेहत अच्छी रहेगी, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, तो जाहिर सी बात है हम अपने क्षेत्र में सिकंदर बने रहेंगे। सुनते हैं यही गाना।

0: डॉक्टर साहब, ये जो जीता वही सिकंदर फिल्म का गाना था, और इस गाने के साथ खुद को सिकंदर बनाए रखने के लिए अपनी सेहत को ठीक रखना बहुत जरूरी है। अपने श्रोताओं को बता दें, विविध भारती से यह कार्यक्रम सेहतनामा, और आज हम बात कर रहे हैं फैटी लिवर और पेट से संबंधित अन्य बीमारियों के बारे में। हमारे साथ विविध भारती के स्टूडियो में हैं मुंबई के मशहूर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता। डॉक्टर साहब, हमारे श्रोताओं की ओर से कुछ सवाल आए हैं। ये कार्यक्रम विविध भारती के फेसबुक पेज पर भी उपलब्ध है, तो वहां से कुछ श्रोताओं ने लिखा है कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम क्या होता है। मतलब कई श्रोताओं ने लिखा है, किसी ने लिखा है कि हमारी माँ को है, किसी ने लिखा मुझे है, किसी ने लिखा मेरी बहन को है। तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम क्या है, IBS, और कैसा होना चाहिए खान पान इसके लिए?
1: तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम प्रॉबेबली फैटी लीवर के बाद सबसे कॉमन, अगर पेट की बीमारी देखें तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, जिसमें पेशेंट को लगता है कि पेट फूल जाता है, कभी कभी पेट दर्द करता है, कभी लूज मोशन हो जाते हैं, कभी कब्जियत हो जाती है, कभी आगे पीछे होते रहता है। और इन पेशेंट्स को हम सारी जांच पड़ताल कर ले, हमको कुछ नहीं मिलता, सारा कुछ नॉर्मल मिलता है। तो लॉट ऑफ टाइम ये स्ट्रेस रिलेटेड रहता है या सिचुएशन रिलेटेड रहता है।
0: जी
1: जैसे
0: जी
1: बच्चे हों, उनको अगर एग्जाम देने जा रहा हूँ तो बोलते पेट दर्द कर रहा है,
0: जी
1: या
0: जी
1: वॉमिटिंग जैसी फीलिंग हो रही है, उल्टी जैसा लग रहा है, या लूज मोशन शुरू हो जाते हैं स्ट्रेस में, तो इसको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होता है। इसमें इधर आपको डायरिया होता है या कॉन्स्टिपेशन होता है, पेट फूलता है, और अगर पेट साफ हो जाए तो अच्छा लगता है। तो इसकी ट्रीटमेंट बेसिकली होती है, यू नीड टू फाइंड आउट द स्ट्रेस, ट्रीट द स्ट्रेसर, और डाइट के थोड़ा ध्यान दो। अगर अगर कॉन्स्टिपेशन है तो डाइट में फाइबर ज़्यादा लो, फल फ्रूट ज़्यादा लो। अगर लूज मोशन हो रहे हैं तो कच्चा खाना मत खाओ, पका हुआ खाना खाओ, थोड़ा ब्रेड्स खाओ, राइस खाओ, जिससे पेट थोड़ा बन जाए।
0: ये है। और बाकी नॉर्मल किस तरह की तकलीफ होती है, वोमिटिंग और जो एसिडिटी की समस्या भी होती है इससे?
1: इरिटेबल बाउल सिंड्रोम अलग बीमारी है, एसिडिटी अलग बीमारी है। एसिडिटी होता है जब हमको खाने के पाइप में या पेट में या छाती में जलन होनी थी है, वो खाने के बाद हो सकती है, खाली पेट हो सकती है, सोने के बाद होती है, खाना हम लेट खाएं और लेट जाएं और छाती में जलन होती, तो उसको एसिडिटी या गर्ड बोलते हैं। एक बात आपने सही की कि ये IBS गर्ड पेशेंट जब हमारे पास आते हैं तो सबकी एक हमको एसिडिटी हो गई है। तो एसिडिटी इज अ वेरी स्पेसिफिक टर्म। एसिडिटी मतलब जलना, पेट के ऊपर के हिस्से में जलना, छाती में जलना, कभी कभी उसे खांसी भी हो सकती है, कभी कभी खाना अटकता है गले में, ऐसे लग रहा है, तो उसको एसिडिटी बोलते हैं। IBS होता है पेट फूलना, छाती के नीचे का प्रॉब्लम है वो, पेट फूलना, लूज मोशन होना, कॉन्स्टिपेशन होना। तो ये जानना बहुत जरूरी है, इसके लिए जब पेशेंट हमारे पास आते हैं हमको काफी सवाल पूछने पड़ते हैं कि एक्चुअली बीमारी क्या है, क्योंकि इंडिया में सॉर्ट ऑफ हो गया कि सब बीमारी इज एसिडिटी। हर एक बीमारी का, अगर लूज मोशन को एसिडिटी बोल देते हैं, कॉन्स्टिपेशन को एसिडिटी बोल देते हैं, पर एसिडिटी इज अ सेपरेट प्रॉब्लम।
0: जी,

0: डॉक्टर साहब, गाने के बाद हम जानना चाहते हैं कि दरअसल डॉक्टर साहब, कुछ मरीज को ये समस्या भी होती है कि उन्हें जलन नहीं महसूस होती है, एसिडिटी फील नहीं होता है, लेकिन फिर उनको ऐसा लगता है ऊपर ऊपर कुछ आ रहा है और वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है, कई कई वॉमिटिंग, तो ये क्या?
1: हाँ, तो ये भी एक इट्स अ पार्ट ऑफ एसिडिटी ओनली। इसमें बेसिकली खाना ऊपर चढ़ के आ रहा है
0: जी
1: तो जो हमारे खाने का पाइप होती है, इसोफेगस जिसको बोलते हैं, और पेट होता है, उसके बीच में एक वाल्व होता है। किसी किसी का ये वाल्व लूज हो जाता है विद टाइम, उसके कई कारण होते हैं। उसके बाद अगर हम हैवी खाना खा लें तो वो खाना ऊपर चढ़ चढ़ के आएगा, वो शायद ना जले मगर ऊपर चढ़ चढ़ के आएगा, मुंह में आएगा, कभी कभी मुंह में खट्टा पानी आ जाता है, कभी लेट खाना खाओ लेट जाओ तो रात को उठना पड़ता है क्योंकि खट्टा पानी ऊपर आ गया है और खांसी शुरू हो गई है। तो इसको रीगर्जिटेशन बोलते हैं, मतलब जो पेट का खाना है, जो पेट के नीचे जाना चाहिए, वो अभी वापस खाने के पाइप में आ गया है।
0: जी, तो इसका किस तरह से ट्रीटमेंट किया जा सकता है?
1: तो इसका बेसिक ट्रीटमेंट तो हम वही करते हैं कि खाना टाइम पे खाओ, स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स लो, सबसे इम्पॉर्टेंट है खाने में और सोने में 3 घंटे का गैप रखिए, खाने के बाद टहलिए थोड़ा 10-15 मिनट तक, खाना नीचे चले जाए। दूसरी चीज कहूंगा, जो चीज आपको लग रहा है आपको तकलीफ दे रही हो, तो किसी किसी को स्पाइसी फूड तकलीफ देता है, तला हुआ तकलीफ देता है, या ज्यादा पानी नहीं पीना खाने के साथ, जैसे बहुत लोग आजकल कोका कोला पीते हैं या एरिएटेड ड्रिंक्स पीते हैं खाने के साथ, तो वो फिर गैस ऊपर चढ़ के आती है और खाना भी उसके साथ चढ़ के आता है। तो स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स, लेट नाइट मील्स मत खाओ, जो चीज आपको तकलीफ देती है वो मत लो, दैट शुड हेल्प योर सिम्टम्स। अगर इसके बावजूद नहीं ठीक हुआ फिर हम दवाई शुरू करते हैं।
0: जी जी, तो ये जो प्रॉब्लम्स है ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, मैंने तो हर किसी को सुना है कि एसिडिटी की प्रॉब्लम है, तो इसकी जांच की कोई व्यवस्था है कि कैसे पता चले कि एसिडिटी है, क्या वजह, कारण क्या है, असली कारण क्या है?
1: हाँ, तो ये भी बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि मोस्ट टाइम्स हम देखते हैं पेशेंट फार्मेसी के पास जाते हैं, केमिस्ट के पास जाते हैं, एक दवाई ले ली, वो लेते रहते हैं। बट ये दवाई भी लंबे देर तक लेना नहीं चाहिए। दूसरा, थोड़े सवाल हम पूछते हैं पेशेंट्स को, जैसे अगर खाना अटके, जब खाओ खाना अटके तो वो सही नहीं है, मतलब आपको एसिडिटी इतनी होगी कि खाने के पाइप छोटी होगी, तब हमको एंडोस्कोपी से देखना पड़ता है।
0: जी जी।
1: खाना अटकना लगे, वॉमिटिंग होनी शुरू हो जाए, वजन कम हो, या आफ्टर द एज ऑफ 40-50 थोड़ा एज हो गई हो और फिर सडनली न्यू सिम्टम शुरू हो जाए, या खांसी हो रही हो रात भर, तब उस टाइम पे दीज आर व्हाट वी कॉल अलार्म सिम्टम्स। अलार्म सिम्टम्स मतलब ये जब पेशेंट हमको बोलना शुरू करता है तब हमारे सॉर्ट ऑफ एंटीना ऊपर चढ़ जाते हैं कि ये भी देखना पड़ेगा क्या प्रॉब्लम है, तब हम एक एंडोस्कोपी करके देखते हैं खाने के पाइप में और पेट में।

0: एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है।
1: और डॉक्टर साहब, अगर मान लीजिए कुछ मरीज को हमने ये भी सुना है कहते हुए कि एसिडिटी की प्रॉब्लम है, मैंने सारे टेस्ट करवा लिए और सारे ट्रीटमेंट कर लिए, सारी दवाएं खा ली, लेकिन कुछ नहीं हुआ, और मैं तो अभी योगा एक्सरसाइज भी कर रही हूँ, मतलब ये अमूमन लोग कहते हैं, तो फिर क्या होता है? और कई लोगों ने तो ये भी कुछ एक वायरस एच पायलोरी नाम का वायरस होता, उसकी भी जाँच नॉर्मल है, फिर क्या?
0: हाँ, तो एक्चुअली एच पायलोरी एक कॉमन इन्फेक्शन है जो पेट के लाइनिंग में रहता है, पर एक्चुअली जिसको एच पायलोरी होता है उसको छाती की एसिडिटी कम होती है, क्योंकि ये जो ऐसा बैक्टीरिया है जो एसिड बनने नहीं देता है। इनफैक्ट अगर हम एंडोस्कोपी एसिडिटी के लिए कर रहे हैं, गर्ड के लिए जिसको बोलते हैं रिफ्लक्स डिजीज, तब हम एच पायलोरी को ढूंढने की कोशिश नहीं करते। अगर पेट में जलन हो रही है, मतलब छाती में नहीं बोल रहा, खाली पेट में दुख रहा है या पेट में जलन हो रही है, तब हम एंडोस्कोपी करके या कोई स्टूल टेस्ट करके या ब्रेड टेस्ट करके एच पायलोरी को ढूंढते हैं। अगर एच पायलोरी मिले उसको ट्रीट करें तो काफी लोगों के पेट के सिम्टम्स ठीक हो जाते हैं। बट जस्ट बिकॉज हमको एच पायलोरी मिला डज नॉट मीन के दैट इज द फाइनल प्रॉब्लम। बहुत बार पेशेंट को अगेन सिम्टम्स होते हैं, पेट में जलना, अच्छा नहीं लगना, दर्द करना, पर हमने एंडोस्कोपी कर ली, ब्लड टेस्ट कर लिए, सारा कुछ नॉर्मल है, तो ये बीमारी को हम डिस्पेप्सिया बोलते हैं। जैसे आईबीएस बोला मैंने पहले,
1: जी, जी, जी.
0: सब टेस्ट कर लिए कुछ नहीं मिला, ये ऊपर के पेट की बीमारी डिस्पेप्सिया, मतलब आपको दर्द हो रहा है, सिम्टम्स हो रहे हैं मगर सारे टेस्ट नॉर्मल आते हैं, तो उसको हम सिम्टोमेटिकली मैनेज करते हैं, जो तकलीफ है उसकी दवाई दे दो।
1: जी, तो इसका कुछ मतलब इसका फिर इलाज संभव होता है, इसकी दवा दी?
0: ऑफ कोर्स इसकी दवा होती है, तो मोस्ट टाइम्स हम एसिडिटी की दवाइयों से शुरू करते हैं। अगर एसिडिटी की दवाई ना हो तो हम सॉर्ट ऑफ पेशेंट को पूछ के ढूंढने की कोशिश करते हैं। कभी कभी कोई फूड ट्रिगर होता है, कभी कभी फूड एलर्जीज होती है, जैसे एक तरह की गेहूं की एलर्जी इंडिया में अभी ज्यादा आ रही है, सीलैक डिजीज बोलते हैं, जो ग्लूटेन फ्री डाइट लेते हैं वो ढूंढने की कोशिश करते हैं। कभी कभी ये स्ट्रेस रिलेटेड भी रहती है, तो वन ऑफ द मेडिसिन वी गिव पेशेंट्स इज स्ट्रेस कम करने की, एंग्जाइटी कम करने की मेडिसिन देते हो, वो लॉन्ग टर्म ले सकते हो, उससे माइंड काम होता है तो पेट काम होता है, माइंड एंड स्टमक आर कनेक्टेड, उसको गट ब्रेन एक्सेस बोलते हैं। अगर पेट ठीक नहीं होगा तो मन ठीक नहीं होता, इसी तरह अगर मन ठीक नहीं हुआ तो पेट ठीक नहीं होगा,
1: दोनों एक दूसरे के पूरक है।
0: Correct.
1: और वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो अब बहुत सारे मन को ठीक करने के लिए कई बार हम संगीत का दामन थाम लेते हैं, तो एक गाना सुनते हैं और यहाँ पर अपने सारे श्रोताओं के मन को ठीक किया जाए।
0: तो एक गाना मुझे बहुत पसंद है, अगेन शाहरुख खान का ही गाना है, छैया छैया,
1: चल छैया छैया, सुनते हैं यही गाना।

0: डॉक्टर साहब, ये बात जो चल रही थी एसिडिटी की, ये तो बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो गई है। मैंने देखा है कि महानगरों में ये समस्या ज़्यादा होती है, छोटे शहरों में जब जाते हैं तो लोगों को हम कम सुनते हैं ऐसा कहते हुए। तो एक तो ये बात बताइए कि ये जो समस्या है एसिडिटी की, कि सारे टेस्ट नॉर्मल आए हैं, तो क्या इन बीमारियों के लिए जो दवाएं खाई जाती हैं एसिडिटी की, लोग गोली खा लिए, कुछ लोग तो ये भी ट्राई करते हैं कि 2 दिन के गैप के बाद खा लो ठीक रहेगा, तो ये कहाँ तक तर्कसंगत है, ठीक है या नहीं करना चाहिए?
1: हाँ, तो बेसिकली कभी भी हम ये दवाई दें ना, तो हमेशा एंड पॉइंट होना चाहिए कि कब ये दवाई बंद करें। तो मोस्ट टाइम्स हम पेशेंट्स को ये दवाई बंद करने की कोशिश करते हैं। एक प्रॉब्लम हमारे यहाँ ये समस्या है कि हमारे जो फार्मास्यूटिकल जो केमिस्ट है वो रेगुलेटेड नहीं है। आप जाके दवाई मांगो, आपको दे देंगे दवाई। तो ये बाहर के मुल्कों में संभव नहीं है, बिकॉज ये दवाइयाँ के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एसिडिटी की दवाई अगर ज़्यादा देर तक लेते रहो तो बोन लॉस होता है, किसी किसी को विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है। पेट में थोड़ा एसिड तो चाहिए डाइजेशन के लिए, तो कभी कभी पेट के इन्फेक्शन होने के रिस्क भी ज़्यादा रहते हैं। विटामिन, न्यूट्रिएंट्स जो पेट से अब्जॉर्ब होते हैं पेट के आगे से, वो नहीं होंगे, जैसे B12 डेफिशिएंसी हो जाए, कभी कभी

0: भी कम हो जाता है दवाई लंबे देर तक लेने के लिए, तो रेयरली ये किडनी को भी इफेक्ट करता है। तो ये दवाइयाँ जरूरी हैं, है हमारे काफ़ी ऐसे पेशेंट जो सालों साल लेते हैं, मगर वी हैव टू फाइंड अ वैलिड रीजन कि इनको क्यों चाहिए ये दवाई। जितना हो सके हमको दवाई बंद करनी चाहिए। काफ़ी लोग ऐसे भी करते हैं जैसे अपने कहा दवाई दूसरे दिन तीसरे दिन ले लेते हैं, उसको ऑन डिमांड मेडिसिन बोलते हैं, विच इज़ अ प्रॉब्ली अ गुड वे टू डू, कि अगर आपको हमेशा ज़रूरत नहीं तो क्यों लोगे। मैं कई पेशेंट्स को कहता हूँ कि एक बार आपका कोर्स ख़त्म हो जाए, सपोज आपने रात को खाना खाने जाना है, शादी पे जाना है, खाना लेट होने वाला, आपको पता है आपको रात को तकलीफ होगी, तो शादी के जाने के पहले एक गोली लेते हो जाओ।
1: जी जी
0: सो दैट इज कॉल्ड ऑन डिमांड मेडिसिन, विच इज़ प्रॉब्ली बेटर देन टेकिंग अ मेडिसिन रोज।
1: जी, लेकिन वो आदत ना डालने, ये गड़बड़ है। और ये एक जो समस्या उल्टी के बारे में, उल्टियाँ होती हैं कुछ मरीज को, फिर रुकती नहीं है उल्टियाँ, तो क्या वो भी इसी वजह से होती हैं? ये किस तरह की बीमारी का द्योतक है?
0: अगर कंटिन्यूसली पेशेंट्स को उल्टी होते रहे तो दैट इज अ इंडिकेशन कि हमको एक बार एंडोस्कोपी करके देखना चाहिए कि प्रॉब्लम क्या
1: जी,
0: है।
1: जी.
0: इसके कई कारण हो सकते हैं, अगेन माइंड से लेके पेट से लेके। आजकल हम ज़्यादा देखते हैं डायबिटीज़ पेशेंट्स को, जैसे डायबिटीज़ पेशेंट्स को अगर डायबिटीज़ बहुत देर तक हो जाए तो जो मेन नसें होती हैं जो पेट को स्टिमुलेट करती हैं, जब हम खाना खाते हैं तो पेट हिलना शुरू करता है, तो डायबिटीज़ पेशेंट को पेट हिलता नहीं है इतना, तो उसको गैस्ट्रोपरीसिस बोलते हैं कि पेट जो खाना खाया है वो पेट में ही रहता है और थोड़ी देर के बाद वॉमिट हो जाती है। अगेन स्ट्रेस से भी हो सकती है, एंग्जाइटी से वॉमिटिंग, किसी किसी को पेट में अल्सर हो सकता है जिसके कारण पेट की जो एंड पॉइंट है जहाँ से खाना इंटेस्टाइन में जाता है वो छोटा हो जाता है, तो खाना उधर अटक के वॉमिट हो जाता है। एंड रेयरली अगर वॉमिटिंग जारी रहे तो वी हैव टू थिंक अबाउट अदर प्रॉब्लम लाइक कैंसर्स ऑफ द इंटेस्टाइन ऑल्सो।
1: तो मतलब किसी भी बीमारी को, मतलब पेट से संबंधित ये जो एसिडिटी की समस्या है, छोटी समस्या लगती है, लेकिन इग्नोर न करें, डॉक्टर से संपर्क करें, डॉक्टर क्या कहते हैं वैसा करें।
2: आप सुन रहे थे सुप्रसिद्ध गैस्ट्रो एंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता से ममता सिंह की बातचीत का पहला भाग। इस बातचीत का दूसरा भाग आप सुनेंगे अगले हफ्ते आज ही के दिन इसी समय। रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंदल, संपादन सहयोग रीमा जोशी। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: इनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
1: खून से है क्यों भीगा जिसमें ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती है, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
0: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी। इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
1: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव।

नमस्कार। मीडियम वेव 330.03 मीटर अर्थात 909 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5 बजने को हैं। आरंभ होती है हमारी आज की सायंकालीन प्रसारण सभा। पहले सुनते हैं हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: मुलाकात। विदेश मंत्री बत्सते से बटमुख से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चर्चाओं में भारत मंगोलिया रणनीतिक साझेदारी, मजबूती और संभावनाओं पर बात की गई है। दोनों नेताओं ने विकास परियोजनाओं, क्षमता निर्माण, संस्कृति, शिक्षा, सुरक्षा और बहुपक्षीय मंचों में द्विपक्षीय सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। रेलवे ने पूर्वी तट रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच की मंजूरी दे दी है। इससे सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार होगा। रेल मंत्रालय ने बताया कि इस परियोजना में पूर्वी तट रेलवे के 6 महत्वपूर्ण खंड शामिल हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। रोजगार और जन कल्याण को बढ़ावा देते हुए राज्य के विभिन्न विभागों में 1,00,000 खाली पदों पर नियुक्ति की घोषणा की गई। वित्त मंत्री स्वप्न दास गुप्ता ने बजट पेश करते हुए बताया कि नौकरियों में 33% पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। अग्निवीरों के लिए आवश्यकता अनुसार 10% आरक्षण शुरू किया गया है। सिविक वॉलेंटियर्स, होमगार्ड, ग्रीन पुलिस कर्मियों और एनवीएम कर्मचारियों का मासिक मानदेय ₹2,000 बढ़ाया गया है। महाराष्ट्र विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शुरू हुआ। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सदन में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 97,706 करोड़ रुपए से अधिक की अनुपूरक मांगे पेश की। विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने नवनिर्वाचित सदस्यों सुनीत्रा पवार और अक्षय कर्डिले को पद की शपथ दिलाई। कांग्रेस नेता नाना पटोले ने राज्य के कई हिस्सों में जल संकट का मुद्दा उठाया। तमिलनाडु विधानसभा में आज कर्नाटक की प्रस्तावित मेकेदातु बांध परियोजना पर चर्चा हुई। एआईए, डीएमके, पीएमके और सीपीएम सहित विपक्षी दलों ने आशंका व्यक्त की है कि इस परियोजना से कावेरी जल बंटवारे पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और तमिलनाडु के हित प्रभावित हो सकते हैं। राज्य सरकार ने कहा कि वो तमिलनाडु में जल अधिकारों के लिए की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में इजराइल के रक्षा मंत्रालय के महानिदेशक सेवानिवृत्त मेजर जनरल अमीर बराम से मुलाकात की। रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि श्री बराम ने राजनाथ सिंह को दोनों देशों के विशेष रणनीतिक साझेदारी में भारत इजराइल रक्षा सहयोग को बढ़ाने के लिए इजराइल की प्रतिबद्धता से अवगत कराया। सहकारिता मंत्री अमित शाह कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नेफेड के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। पोर्टल का शुभारंभ नीलामी प्रक्रिया में पारदर्शिता, दक्षता और सुगम संचालन को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज लुधियाना में विख्यात कृषि वैज्ञानिक और पद्मभूषण से सम्मानित सरदारा सिंह जोहल से मुलाकात की। श्री नवीन ने उनके साथ पंजाब के कृषि संकट पर चर्चा की। बैठक के बाद श्री नवीन ने कहा कि श्री जोहल के साथ बातचीत के दौरान कृषि के मुद्दों पर अमूल्य जानकारी प्राप्त हुई।
1: मैं मानता हूं कि ऐसी शख्सियत जिसने किसानों की भावनाओं को समझा, कृषि को समझा और कृषि को कैसे एक सही रूप से आगे बढ़ाया जाए, इस चीज को उन्होंने एक रिसर्च के रूप में देखा है, तो निश्चित रूप से ऐसे शख्सियत से मिलना मेरे लिए भी सौभाग्य का विषय है।
0: लखनऊ के अलीगंज इलाके में कोचिंग सेंटर में भीषण आग लग गई, जिससे छात्रों में दहशत फैल गई। कुछ छात्र घायल हो गए हैं, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक घटनास्थल पर पहुंचे और स्थानीय प्रशासन, पुलिस और राज्य आपदा मोचन बल द्वारा चलाए जा रहे बचाव और राहत कार्यों का जायजा ले रहे हैं। झारखंड में पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के विभिन्न हिस्सों में बिजली गिरने से 8 लोगों की मृत्यु हो गई और एक दर्जन से अधिक लोग घायल हुए हैं। मृतकों में सीपीआई के एक नेता एक

0: फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज ग्रुप जे में अर्जेंटीना का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। ये मैच रात 10:30 बजे से शुरू होगा। इससे पहले आज खेले गए एक रोमांचक मुकाबले में मिस ने न्यूजीलैंड को 3-1 से हराकर इस टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे युवा साथियों का कार्यक्रम युवाड़ी।

0: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbharatiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbharatiarchives.co.in।
1: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, आम सरिये के मुकाबले लगभग 20% ज्यादा ताकत।
3: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
4: युवा दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम युवाणी में। मैं हूँ आपका दोस्त मनोज। दोस्तों कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह करते हैं एक सुविचार से। कर्म, ज्ञान और भक्ति, ये तीनों जहाँ मिलते हैं वहीं सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ जन्म लेता है। दोस्तों ये कथन है महर्षि अरविंद जी का। महर्षि अरविंद जी ने जीवन को संतुलित बनाने पर बल देते हैं। वे कहते हैं कि हमें जीवन को संतुलित बनाना चाहिए कर्म यानी कार्य, ज्ञान यानी बुद्धि और भक्ति यानी भावना का समन्वय ही पूर्ण सफलता लाता है। दोस्तों इस सुविचार पे आप भी अमल कीजिए। इस सुविचार के बाद लीजिए, सुन लीजिए एक प्यारा सा गीत।

इस गीत के बाद दोस्तों कार्यक्रम में हम वापस लौटते हैं। दोस्तों अब हम बातें करेंगे अग्निपथ योजना की, एक ऐसी योजना जो देशभक्त युवाओं को भारतीय सेना में सेवा देने का मौका देती है। तो दोस्तों आइए जानते हैं कैसे 10वीं 12वीं पास युवा अग्निवीर बनकर राष्ट्र सेवा कर सकते हैं। दोस्तों अग्निपथ योजना 2022 में शुरू हुई, इसका मकसद सेना को युवा और चुस्त रखना है। 17.5 साल से लेकर 23 साल के अविवाहित युवा लड़के और लड़कियां दोनों आवेदन कर सकते हैं। भर्ती आर्मी नेवी एयरफोर्स में होती है। 4 साल की छोटी लेकिन गहन सेवा, 25% मेरिट वाले स्थायी कमीशन पा सकते हैं, बाकी को कौशल प्रमाण पत्र और ब्रिज कोर्स मिलेंगे ताकि सिविलियन जॉब्स में आसानी हो। दोस्तों जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, उठो जागो जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो, अग्निपथ वो जज्बा जगाता है। इस योजना के अंतर्गत अग्निवीरों को हथियार चलाना, लीडरशिप स्किल्स जैसी अनेक गुणों को सिखाया जाता है। अग्निवीर बनने के लिए आपको न्यूनतम 10वीं में 45% या 12वीं में 50% अंक प्राप्त होने अनिवार्य हैं। फिजिकल टेस्ट जैसे रनिंग, पुशअप और अन्य प्रक्रिया जैसे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन परीक्षा या मेडिकल देकर आप एक अग्निवीर के रूप में चयनित होते हैं। तो दोस्तों अगर आपको भी इस योजना के तहत भारतीय सेना यानी नेवी आर्मी या एयरफोर्स में अपनी सेवा देनी है तो आप जरूर इंडियन आर्मी को ज्वाइन करें और एक अग्निवीर के रूप में अपने देश की सेवा करें।

दोस्तों, इस गीत के बाद कार्यक्रम में हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अब बातें करते हैं एक ऐसी योजना जिसे कहते हैं मेरा युवा भारत, यानी माय भारत स्कीम। यह भारत सरकार की वो पहल है जो 15 से 35 साल के युवाओं को स्वयं सेवा, स्किल और राष्ट्र निर्माण से जोड़ रही है। दोस्तों, आइए जानें कैसे यह योजना आपके जीवन को बदल सकती है। दोस्तों, मेरा युवा भारत पोर्टल और ऐप के जरिए युवाओं को वॉलेंटियरिंग के लाखों अवसर देता है, जैसे पर्यावरण संरक्षण, स्वास्थ्य जागरूकता, करियर गाइडेंस, हर क्षेत्र में भाग लें। 14.5 लाख से ज़्यादा वॉलेंटियर पहले ही जुड़ चुके हैं इस योजना के तहत। ये योजना स्किल ट्रेनिंग के साथ साथ इवेंट्स और सर्टिफिकेट भी प्रदान करती है, जो नौकरी या स्टार्टअप में आपको मदद कर सकती है। दोस्तों, इस योजनाओं के तहत कई युवा वॉलेंटियरों ने गंगा सफाई, स्वास्थ्य या हेल्थ कैंप्स में हिस्सा लेकर देश सेवा की। दोस्तों, इस योजना के तहत 100 से भी अधिक थीम्स हैं, जैसे स्वच्छ भारत, फिट इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल कोर्सेज के अंतर्गत फ्री ऑनलाइन ट्रेनिंग, सॉफ्ट स्किल्स, लीडरशिप स्किल्स के जैसे ऑनलाइन कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। रिवॉर्ड्स भी दिए जाते हैं, सर्टिफिकेट, नेशनल यूथ कार्ड। 75% युवा प्लेसमेंट पाते हैं। योग्यता सरल है, 15 से 35 साल का भारतीय नागरिक होना आवश्यक है, कोई फीस नहीं है। तो दोस्तों, आप भी myBharat.gov.in या MyBharat ऐप डाउनलोड करें, रजिस्ट्रेशन 2 मिनट में। और दोस्तों, आप इस योजना के तहत अपने राज्य में या अपने शहर में हो रहे इवेंट्स में भाग ले सकते हैं और वॉलेंटियरिंग के माध्यम से उसका हिस्सा बन सकते हैं। तो दोस्तों, आज ही इस योजना का लाभ उठाएं और अपना योगदान देश सेवा में दें। इस चर्चा के बाद दोस्तों, लीजिए सुनिए एक प्यारा सा गीत।

दोस्तों, क्या आपको भाषाओं की दुनिया आकर्षित करती है? अगर हाँ, तो अनुवाद का क्षेत्र आपके लिए सुनहरा करियर हो सकता है। आज के वैश्विक युग में, जहाँ हिंदी को दुनिया भर में पहचान मिल रही है, अनुवादक की मांग तेजी से बढ़ रही है। रेडियो, टेलीविजन, फिल्में और डिजिटल मीडिया में हिंदी अंग्रेजी अनुवाद के विशेषज्ञों की ज़रूरत हमेशा बनी रहती है। क्या आप जानते हैं अनुवाद क्या है और क्यों चुने यह करियर? दोस्तों, अनुवादक एक भाषा के कंटेंट को दूसरी भाषा में रूपांतरित करते हैं बिना मूल अर्थ बदले। हिंदी अनुवाद में आप अंग्रेजी, पंजाबी, तमिल या विदेशी भाषाओं का काम कर सकते हैं। रेडियो स्क्रिप्ट्स, विज्ञापन, वेब कंटेंट और सरकारी दस्तावेजों का अनुवाद प्रमुख क्षेत्र है। फ्रीलांसिंग से लेकर सरकारी नौकरियों तक अवसर है। विदेशी कंपनियों के भारत आने से ग्रोथ तेज हुआ है। दोस्तों, आइए जानते हैं इसमें न्यूनतम योग्यता और शिक्षा क्या है। न्यूनतम योग्यता 12वीं पास, कम से कम 55% अंकों के साथ। उसके बाद BA हिंदी, अंग्रेजी या अन्य भाषाओं में कर सकते हैं। उच्च शिक्षा के लिए आप MA अनुवाद अध्ययन में या डिप्लोमा कोर्स जैसे PG डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन इग्नू से कर सकते हैं। आवश्यक स्किल्स हैं दो भाषाओं का फ्लुएंट ज्ञान। रेडियो के लिए वॉइस मॉड्यूलेशन और स्क्रिप्ट राइटिंग सीख सकते हैं। कोई विशेष डिग्री अनिवार्य नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस जरूरी है। दोस्तों, रेडियो में अनुवाद का विशेष महत्व है। रेडियो जिंगल्स, न्यूज स्क्रिप्ट और एजुकेशनल प्रोग्राम्स में अनुवादक विदेशी कंटेंट को हिंदी में ढालते हैं। आज इंटरनेट के कारण फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स बहुत सारे उपलब्ध हैं, जहाँ पर आप अपनी सेवाएं दे सकते हैं। और अगर बात करें दोस्तों शुरुआती सैलरी की, तो ये 10 से 15 हज़ार से शुरुआत होकर आपके क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के साथ बढ़ता है। दोस्तों, हर क्षेत्र की तरह यह क्षेत्र भी चुनौतियों से भरा है, इसलिए आपको सटीकता, समयबद्धता, सांस्कृतिक संवेदनशीलता को देखते हुए कार्य करना होगा। ऑनलाइन कोर्स करें, पोर्टफोलियो बनाएं, फ्रीलांस शुरू करें और आप रेडियो क्लेज वॉइस रिकॉर्डिंग प्रैक्टिस करें। दोस्तों,

अनुवाद के क्षेत्र में करियर चुनकर आप भाषाओं की पुल बन सकते हैं। आज ही कोर्स ज्वाइन करें और इस क्षेत्र में कदम रखें। इस चर्चा के बाद दोस्तों लीजिए सुनिए एक प्यारा सा गीत।

आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। नो रियली आई मीन इट। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है,

0: स्वच्छ भारत सुंदर भारत स्वच्छता शब्द भर नहीं सक्रिय सचेत कर्म है।
1: पूर्वांचल का पहला इनोवेशन सेंटर KIPM गीड़ा से करें अपने सपने साकार। बीटेक पॉलिटेक्निक MBA MCA BBA BCA बी फार्मा एम फार्मा और डी फार्मा में एडमिशन ओपन। KIPM गीड़ा।

अभी आप सुन रहे थे युवा साथियों का कार्यक्रम युववाणी। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे ग्रामीण बहनों का कार्यक्रम घर आंगन।

0: चंदन का एहसास।
1: जिंदगी बहुत कीमती है,
2: उससे तो सस्ता ही है।
3: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, सीमेंट से 9.5% तक आम सरिया के मुकाबले बेहतरीन पकड़।
4: आरएचएल गोल्ड टीएमटी सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
5: घर आंगन कार्यक्रम सुनने वाले सब श्रोता बहन लोगों के हम सुषमा बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने कार्यक्रम में। हमन के अपने कार्यक्रम में बहन लोगों से कोनो न कोनो विषय पर अवश्य चर्चा करल जाला, जौन कि अपने श्रोता बहन लोगों खातिर बहुत महत्वपूर्ण होला। देखिए सब, कोनो भी परिवार के गाड़ी ना दुगो पहिया पे चलेला, एगो स्त्री एगो पुरुष, जौन कि पति पत्नी के रूप में एक परिवार में रहन है। अधिकतर भारत में देखल जाला कि अपने क्षेत्र के जौन महिला बाटी ना घर के कामकाज, परिवार के सदस्यन के देखभाल करेली और आर्थिक रूप से सशक्त नहीं हो पावेली, ये नाते वो आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं रहली। और घर के पुरुष जौन बाटे वो आर्थिक जरूरतन के पूरा करे के जिम्मेदारी उठावेलें। ऐसन परिवार में अगर पुरुष सदस्य के कोनो कारणवश मृत्यु हो जाता तो वो परिवार जौन बा आर्थिक रूप से जौन बा विपन्न हो जाता और वो महिला आर्थिक रूप से अपने के असमर्थ पावेली। ऐसा असमर्थ महिला लोगन के आर्थिक कल्याण तथा उन लोगन के आत्मनिर्भर बनावे खातिर सरकार एगो योजना चलेले बा, जेकर नाम बा विधवा पेंशन योजना। जेकरे तहत ऐसा निराश्रित महिला के बैंक अकाउंट में सीधे हर महीना 1,000 रुपया सरकार द्वारा आर्थिक सहायता दहल जाला। ये योजना के पात्रता केवल उ महिला के बा जौने के आयु 18 वर्ष से ऊपर बा और उ उत्तर प्रदेश के मूल निवासी बाटी। साथ ही साथ उ कोनो भी केंद्र या राज्य सरकार के योजना से लाभान्वित न होक है और महिला के वार्षिक आय के जौन स्रोत बा उ 2,00,000 रुपया से कम होके चाहिए। ई सब त रहल पात्रता, और अपन बहन लो जौन एकर पात्र हो बाटी या आसपास ऐसन विधवा निराश्रित अपन बहन बाटी उ लोन के आप लोग योजना के जानकारी दे सकेनी। साथ ही साथ ई बहन लोग अपन ई योजना से लाभान्वित हो सकेली। आप लोग ऑनलाइन ए फॉर्म के डाल के एकर जौन बा पात्रता का लाभ उठा सकेली। एक ही साथ अपने कार्यक्रम के आगे बढ़ावल जाओ, सुन ले जाए गो गीत।

0: वहीं सब सुन ली लल्ली वर्मा जी की आवाज में ये गीत और यही के साथ अपनी बैठकी के आगे बढ़ावल जा। देखी बहन, कोनो भी देश के विकास में स्त्री पुरुष के विकसित भइल बहुत जरूरी होला। ए नाते उनका सशक्त भूमिका होला। ए नाते अपने बहन लोगन के भी आर्थिक रूप से सशक्त भइल बहुत जरूरी बा। ए बाती के ध्यान दहले खातिर जौन बा सरकार भी तरह तरह के योजना जौन बा चलावल करेले। देखिए आज हमन के एगो और योजना के बात कल जाए, बीमा सखी योजना। एक भारतीय जीवन बीमा द्वारा संचालित कैल गेल बा। एकर मुख्य उद्देश्य बा कि अपने बहिन लोगन के सशक्त कैल और आत्मनिर्भर बनावल। एकर पहल जौन बा महिला लोगन के 3 साल के जौन बा पेशेवर प्रशिक्षण दे के कैल जाला। एकरे दौरान उनके हर महीना निश्चित जौन बा वो वजीफा दिल जाला और साथे साथे पॉलिसी बेचले पे कमीशन भी मिलेला। एक जन योजना बा एकर उद्देश्य जौन बा मुख्य उद्देश्य ई बा कि अपन ग्रामीण और शहरी महिला लोगन के रोजगार प्रदान कैल जा और उनके आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनावल जा। जौन हमन के प्रशिक्षण के बात कैली हैं, प्रशिक्षण के पहले वर्ष जौन बा प्रति माह 7,000 रुपये मिलेला और दूसरे वर्ष जौन बा 6,000 प्रति माह मिलेला और तीसरे वर्ष एकर जौन राशि बा वो कम हो के 5,000 रुपये प्रति माह हो जाले। अतिरिक्त कमाई के अगर बात कर लेल जाए तो वजीफे के साथ साथ पॉलिसी बेचले पे भी अपन बहन सब जौन बा में आकर से कमीशन प्राप्त कर सकेली। एकर अगर योग्यता के बात कर लेल जाए तो बहन सबन के आयु जौन बा 18 वर्ष से 70 वर्ष के बीच हो के चाहिए और जौन बा शैक्षणिक योग्यता कम से कम 10 वर्ष के हो के चाहिए। अगर कोनो बहन स्नातक बाटी तो वो बीमा सखियन खातिर जौन बा 5 वर्ष के बाद LIC में विकास अधिकारी के बनने के भी अवसर बा मिल सकेला। आवेदन आप सब LIC के आधिकारिक वेबसाइट पे जाके कई सकेनी तो आप लोग ये योजना का लाभ उठा सकेनी। और यही के साथ अब अपने कार्यक्रम में आगे बढ़ल जा और सुन लेल जा यही से लगल जुड़ल एगो और जानकारी, ग्रामीण महिला लोन के आर्थिक विकास कैसे हो गए। ये पे जानकारी देते प्रोफेसर सुमित्रा सिंह जी, ताई सुनल जा।
1: एक देश के विकास का आकलन उस देश की जनसंख्या की जीवन गुणवत्ता से होता है। इसमें समाज के कमजोर वर्गों तथा महिलाओं के जीवन स्तर का मानक यह प्रदर्शित करता है कि समग्र विकास की स्थिति कैसी है और इसमें क्या सुधार किए जाने की आवश्यकता है। भारत के ग्रामीण परिवेश में निवास करने वाली महिलाओं के सामाजिक उन्नयन के बिना आर्थिक उन्नति की कल्पना नहीं की जा सकती है। सशक्त नारी सशक्त भारत के नारे के साथ आगे बढ़ने की गति को बरकरार रखना और विकास के

0: अगले पायदान की ओर कदम बढ़ाने की राह का सुगम होना इतना आसान भी नहीं है। इसके मूल में परंपरा और संस्कृति के साथ दृष्टिकोण के परिवर्तन की महती भूमिका होती है। आर्थिक गतिविधियों में प्रतिभाग की अनुमति मिलने के उपरांत वास्तविक आर्थिक उन्नति का प्रारंभ होता है, अथवा परिस्थिति के विपरीत होने पर इसमें संलग्न होने की प्रवृत्ति मिलती है। आजीविका के लिए कम भुगतान की समस्या या बलात्श्रम की समस्या इस क्षेत्र में अभी भी देखने को मिल जाती है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था भारत की राष्ट्रीय आय में महत्वपूर्ण योगदान करती है, इसलिए भी ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक गतिविधियों का आकलन आवश्यक होता है। हालांकि स्वाधीनता के उपरांत महिलाओं की सामाजिक आर्थिक सहभागिता के नवीन आयामों का विस्तार हुआ है और इसमें सुधार के प्रयास निरंतर गतिमान हैं। अनेक अध्ययन यह स्पष्ट करते हैं जिनमें महिलाओं के क्रियाकलाप उन सामाजिक अभिवृत्तियों एवं संस्थाओं से प्रभावित होते हैं जो किसी विशेष समय और किसी विशेष सामाजिक वैचारिकी से उत्पन्न होते हैं। वर्ष 1980 की पंचवर्षीय योजनाओं में महिलाओं के विकास को अलग समूह के रूप में मान्यता देकर उन्हें विकास की योजनाओं में उचित स्थान दिया गया। इसमें महिलाओं के प्रति कल्याणकारी दृष्टिकोण के स्थान पर उनके विकास तथा अधिक अधिकार देने पर जोर दिया गया। इसका उद्देश्य था महिलाओं को सामाजिक आर्थिक विधिक और राजनैतिक स्तर पर पुरुषों के समान स्थान देकर राष्ट्रीय विकास की मुख्य धारा में सम्मिलित करना। इसमें कोई संदेह नहीं है कि आर्थिक विकास के लिए स्वतंत्र निर्णयन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। परिवारों में आज भी महिलाएं स्वतंत्र निर्णय नहीं ले पाती हैं या इसके लिए उनकी भूमिका को न्यूनतम मान लिया जाता है, जो आर्थिक दृष्टि से कदापि उचित नहीं होता है। आर्थिक उन्नति के मार्ग में आने वाली बाधा को बहुत हद तक समाप्त करने में शिक्षा की महती अप्रत्यक्ष भूमिका होती है। इसके अभाव में आर्थिक विकास की कल्पना भी असंभव है। उचित स्तर की शिक्षा प्राप्त करने के उपरांत जब पारिवारिक निर्णयों में भागीदारी सुनिश्चित होने की प्रक्रिया प्रारंभ होती तो वहीं से आर्थिक विकास की नींव भी पड़ती है। ग्रामीण महिलाओं के लिए असंगठित क्षेत्र में रोजगार की बहुत संभावनाएं हैं। कृषि वानिकी मत्स्य पालन पशुपालन खादी कपड़े हथकरघा के क्षेत्रों में महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। कृषि के क्षेत्र में तो इनकी सहभागिता 50% के लगभग होती है, जिसे आर्थिक आधारों पर प्रायः कम ही आंका जाता है। राज्यों एवं केंद्र सरकार के समन्वित प्रयास से महिलाओं की आर्थिक उन्नति के अनेक कार्यक्रम समय समय पर चलते रहते हैं, जिनमें ग्रामीण स्तर पर महिलाओं की आर्थिक दशा में निश्चित सुधार होता है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, महिला सम्मान बचत पत्र, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, सामूहिक विवाह योजना, कस्तूरबा विद्यालय योजना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, सुकन्या समृद्धि योजना जैसी विविध प्रकार की सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान को सुनिश्चित करने वाली योजनाएं शिक्षा स्वास्थ्य सेवा और सामाजिक सुरक्षा तक पहुंच रखती हैं। इसके अतिरिक्त वन स्टॉप सेंटर, राष्ट्रीय महिला कोष, प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना, आंगनबाड़ी सेवाएं, महिला शक्ति केंद्र, उज्ज्वला योजना इत्यादि ने महिलाओं की दक्षता में वृद्धि की है, जिसने आर्थिक विकास को प्रोत्साहित किया है। इसके अतिरिक्त जनधन योजना और बीमा सखी योजना भी आर्थिक विकास का आधार बन रही हैं। इस प्रकार विभिन्न योजनाओं में सहभागिता के साथ शिक्षा और कौशलों के विकास पर ध्यान केंद्रित करके ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक विकास को सुनिश्चित किया जा सकता है। शिक्षा प्राप्ति के उपरांत अधिकारों और अवसरों की जानकारी तो होती ही है, साथ में सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, कताई, हस्तशिल्प और छोटे तकनीकी प्रशिक्षणों द्वारा कौशल विकास से स्वरोजगार के नए द्वार खुलते हैं। थोड़े से प्रशिक्षण और अनुभव के साथ ग्रामीण स्तर पर डेयरी उद्योग में कार्य और छोटे रूप में दुग्ध संग्रहण और विभिन्न उत्पादों का निर्माण करके अच्छा लाभ पाया जा सकता है। इस प्रकार स्वरोजगार का अवसर और उद्यमिता के माध्यम से मिलने वाला प्रोत्साहन परिवार की आय बढ़ाने का साधन बनता है। ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के लिए बैंकिंग सेवाओं की उपलब्धता और माइक्रो फाइनेंस द्वारा उनको छोटी राशि के ऋण प्रदान करके स्वयं का व्यवसाय या स्वयं का रोजगार प्रारंभ करने में मदद की जा सकती है। इससे आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलता है। मांगलिक अवसरों पर अथवा आवश्यकता के अनुसार ग्रामीण स्तर पर कुछ महिलाओं का समूह रसोई से संबंधित कार्य करने वाले समूह के रूप में चिन्हित हो रहा है, जिससे जुड़ी महिलाओं का आर्थिक उत्थान हो रहा है। जब महिला समूहों के गठन द्वारा ग्रामीण महिलाओं के एक दूसरे से जुड़ने और सहयोग की नवीन पृष्ठभूमि का विकास होता है, तो इससे आर्थिक विकास को पुनः बढ़ावा मिलता है, जिससे परस्पर समर्थन और सहकारिता की भावना का विकास होता है और आर्थिक रूप से ऐसा क्रियाकलाप मजबूती प्रदान करता है। परस्पर बातचीत से सरकारी योजनाओं का लाभ लेने की रणनीति आत्मविश्वास को बढ़ाती है, जो आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है। बातचीत से और विभिन्न कार्यों से प्राप्त अनुभव महिलाओं को आर्थिक दृष्टि से जागरूक और सूचनात्मक दृष्टि से उन्नत बनाते हैं। निजी स्तर पर महिलाओं द्वारा अपने घर पर स्वदेशी तकनीकों से विभिन्न खाद्य उत्पाद तैयार करना, घरेलू उपयोग की सामग्री तैयार करना और इनके विक्रय हेतु ऑनलाइन प्लेटफार्म का उपयोग करना भी आर्थिक विकास को बढ़ावा देने वाला कदम हो सकता है। समूह की कुछ अधिक शिक्षित महिलाएं इस कार्य में आगे बढ़कर पूरे समूह को आर्थिक रूप से उन्नत बना सकती हैं। यहाँ पर ग्रामीण महिलाओं का आर्थिक विकास सुनिश्चित करने के लिए सार्थक पहल अधिक योगदान कर सकती हैं। इस प्रकार की कुछ पहल ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक विकास यात्रा को निरंतरता प्रदान कर सकने में सक्षम है।
1: वहीं जब सुनत रही जानकारी ग्रामीण महिलाओं का आर्थिक विकास कैसे हो, ये पे जानकारी देते रही प्रोफेसर सुमित्रा सिंह जी, तो इनके दहल जत धन्यवाद। और ये के साथ हम इनके कार्यक्रम का समय भी हो रहा समाप्त, हमें दें आज्ञा। बहिन लोन नमस्ते।

अभी आप सुन रहे थे ग्रामीण बहनों का कार्यक्रम घर आंगन। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे भोजपुरी एवं हिंदी में क्षेत्रीय समाचार।

0: आकाशवाणी गोरखपुर से भोजपुरी समाचार। नमस्कार, समाचारन के साथ ही हम सुकीर्ति अस्थाना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज फिरोजाबाद में 658 करोड़ रुपया से बेसी लागत का कई गो विकास परियोजना का लोकार्पण और नई धैले। ये मौका पर वहां के कहाली की डबल इंजन का सरकार कारीगरन और उद्यमियन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनकर विकास और प्रोत्साहन बदे पुरहर प्रतिबद्धता के साथ कार्य कई रहा लवे। श्री योगी कहले कि फिरोजाबाद का ग्लास उद्योग नवाचार का एगो नया केंद्र बन के उभरल हो।
1: फिरोजाबाद का ग्लास का उद्योग नवाचार का एक नया केंद्र बना है। इसने चीन को पछाड़ दिया है। पहले होली, दीपावली, विजयादशमी कोई पर्व और त्योहार आता था, हम लोग देखते थे कि चीन से बने हुए उत्पाद ही मार्केट में पहुंचती थी। अब यहाँ के कारीगरों ने नई तकनीक ली, कारीगरों ने डिजाइन तय की, मार्केट की डिमांड क्या है उसके अनुरूप बनाना शुरू कर दिया। परिणाम है अब दीपावली हो या विजयादशमी, होली हो या कोई पर्व और त्योहार, जन्मदिन या कोई भी अन्य आयोजन, कोई अतिथि आता है तो ग्लास की एक सुंदर सी मूर्ति, सुंदर सी प्रतिकीर्ति जब अतिथि को मिलती है तो देख करके भौचक रहता और देखते ही रह जाता है कि बनाया कैसे और किसने बनाया है। तो मैं कहता हूँ ये फिरोजाबाद के हमारे कारीगरों ने बनाया है, वहाँ के उद्यमियों के परिश्रम का ये परिणाम है।
0: ये मौका पर मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लाभार्थियों के चाबी और कई गो योजना के लाभार्थियों के प्रमाण पत्र दिहाले और चेको बटले। लखनऊ के अलीगंज इलाका में आज एगो दुकान के ऊपर चलत कोचिंग सेंटर में भयानक आग लाग गई, जेकरा से ओइजा अफरा तफरी मच गई। दमकलकर्मी, पुलिसकर्मी और जिला प्रशासन के अधिकारी लोग मौका पर पहुंच के बचाव के कार्य में लागल बा। दुर्घटना में घायल भई लोगों के अस्पतालन में भर्ती करावल गई हौ, ओइजा उनकर इलाज चली रहल हौ। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक को घटनास्थल पर पहुँच गए और स्थानीय प्रशासन, पुलिस आ SDRF के टीम इनकी ओर से चलावल जा रहल बचाव और राहत कार्य का जायजा लेत बाटे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये दुर्घटना पर गहरा दुख जतौले हवे। वहां के एगो सोशल मीडिया पोस्ट में कहले हवे कि लखनऊ में आग लगी के दुर्घटना में भयल जनहानि बहुते दुखद बा, हमार संवेदना शोकाकुल परिवारन के साथे बा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एगो सोशल मीडिया पोस्ट में योगी कपाती साझा करत बरखा ऋतु के अहिले पर लोग इनसे खास सतर्कता बरतले का अपील कैले हवे। एगो रिपोर्ट।
2: मुख्यमंत्री ने कहा है कि वर्षा ऋतु नव सृजन, संवर्धन और समृद्धि का आगमन है। वर्षा ऋतु के साथ चतुर्मास का यह समय हमें प्रकृति के साथ सह अस्तित्व, संयम, संवेदनशीलता और संतुलित जीवन का संदेश देता है। श्री योगी ने कहा कि वर्षा के समय आकाशीय बिजली गिरने की घटनाएं भी होती हैं, इसलिए उस समय अनावश्यक रूप से घर से बाहर न निकलें और पेड़ों के नीचे खड़े न हों। उन्होंने कहा कि कई बार अतिवृष्टि के कारण नदियों एवं जलाशयों का जल स्तर तेजी से बढ़ जाता है, अतः इस दौरान नदियों एवं जलाशयों में स्नान करते समय विशेष सावधानी बरतें। श्री योगी ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत पेड़ लगाने, जल संचयन और जैविक खेती को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया। समाचार कक्ष से प्रेमचंद्र गुप्ता।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का एगो लेख साझा कैले। ये लेख में कानून व्यवस्था के मजबूत कैले, न्याय का प्रक्रिया के आसान बनौले और नागरिकन बदे सरकारी सेवा के ज्यादे सुलभ बनावे के सरकार के कोशिशन का उल्लेख कैल गई हौ। कुख्यात अपराधी ललन सिंह के काल ही रतिये सहारनपुर में उत्तर प्रदेश विशेष कार्यबल STF मुठभेड़ में मार गिरावल, ओपर 1,25,000 रुपया का इनाम रहल। बहराइच जिला का जरवल थाना क्षेत्र में आज भी नहीं एगो सड़क हादसा में दुगो भाई के सतही तीन लोग का मौत हो गई। हादसा मोटरसाइकिल के अनियंत्रित होके सड़क के किनारे बनल पुलिया से टकरा गई, लेकिन आते भाई दुर्घटना का सूचना पौते पुलिस मौका पर पहुंचलस और सज्जो सबके कब्जा मिले के पोस्टमार्टम खातिर भेज दिया। गोरखपुर, महाराजगंज और कुशीनगर के

0: समाचार पूरा भइल, नमस्कार। आकाशवाणी गोरखपुर से क्षेत्रीय समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकीर्ति अस्थाना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज फिरोजाबाद में 658 करोड़ रुपया से अधिक लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार कारीगरों और उद्यमियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनके विकास और प्रोत्साहन के लिए पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। श्री योगी ने कहा कि फिरोजाबाद का ग्लास उद्योग नवाचार का एक नया केंद्र बनकर उभरा है।
1: फिरोजाबाद का ग्लास का उद्योग नवाचार का एक नया केंद्र बना है। इसने चीन को पछाड़ दिया है। पहले होली, दीपावली, विजयादशमी कोई पर्व और त्योहार आता था, हम लोग देखते थे कि चीन से बनी हुई उत्पाद ही मार्केट में पहुंचती थी। अब यहाँ के कारीगरों ने नई तकनीक ली, कारीगरों ने डिजाइन तय की, मार्केट की डिमांड क्या है उसके अनुरूप बनाना शुरू कर दिया। परिणाम है अब दीपावली हो या विजयादशमी, होली हो या कोई पर्व और त्योहार, जन्मदिन या कोई भी अन्य आयोजन, कोई अतिथि आता है तो ग्लास की एक सुंदर सी मूर्ति, सुंदर सी प्रतिकृति जब अतिथि को मिलती तो देख करके भौचक रहता और देखते ही रह जाता है कि ये बनाया कैसे और किसने बनाया है। तो मैं कहता हूँ ये फिरोजाबाद के हमारे कारीगरों ने बनाया है, वहाँ के उद्यमियों के परिश्रम का ये परिणाम है।
0: इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लाभार्थियों को चाबी और विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र और चेक का वितरण भी किया। लखनऊ के अलीगंज इलाके में आज एक दुकान के ऊपर चल रहे कोचिंग सेंटर में भीषण आग लग गई, जिससे अफरा तफरी मच गई। दमकलकर्मी, पुलिसकर्मी और जिला प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचकर बचाव कार्य में लगे हुए हैं। दुर्घटना में घायल हुए लोगों को अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका उपचार चल रहा है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक भी घटनास्थल पर पहुंच गए हैं और स्थानीय प्रशासन, पुलिस और SDRF टीमों द्वारा चलाए जा रहे बचाव और राहत कार्यों का जायजा ले रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि लखनऊ में अग्नि दुर्घटना में हुई जनहानि अत्यंत दुखद और हृदय विदारक है। मेरी संवेदनाएं शोकाकुल परिजनों के साथ हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में योगी की पाती साझा करते हुए वर्षा ऋतु के आगमन पर लोगों से विशेष सतर्कता बरतने की अपील की है। एक रिपोर्ट।
2: मुख्यमंत्री ने कहा है कि वर्षा ऋतु नव सृजन, संवर्धन और समृद्धि का आगमन है। वर्षा ऋतु के साथ चतुर्मास का यह समय हमें प्रकृति के साथ सह अस्तित्व, संयम, संवेदनशीलता और संतुलित जीवन का संदेश देता है। श्री योगी ने कहा कि वर्षा के समय आकाशीय बिजली गिरने की घटनाएं भी होती हैं, इसलिए उस समय अनावश्यक रूप से घर से बाहर न निकलें और पेड़ों के नीचे खड़े न हों। उन्होंने कहा कि कई बार अतिवृष्टि के कारण नदियों एवं जलाशयों का जल स्तर तेजी से बढ़ जाता है, अतः इस दौरान नदियों एवं जलाशयों में स्नान करते समय विशेष सावधानी बरतें। श्री योगी ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत पेड़ लगाने, जल संचयन और जैविक खेती को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया। समाचार कक्ष से प्रेमचंद्र गुप्ता।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का एक लेख साझा किया। इस लेख में कानून व्यवस्था को मजबूत करने, न्याय की प्रक्रिया को आसान बनाने और नागरिकों के लिए सरकारी सेवाओं को अधिक सुलभ बनाने की सरकार की कोशिशों का उल्लेख किया गया है। कुख्यात अपराधी ललन सिंह को कल रात सहारनपुर में उत्तर प्रदेश विशेष कार्यबल STF ने मुठभेड़ में मार गिराया। उस पर 1,25,000 रुपये का इनाम था। बहराइच जिले के जरवल रोड थाना क्षेत्र में आज सुबह एक सड़क हादसे में दो भाइयों समेत तीन लोगों की मौत हो गई। दुर्घटना मोटरसाइकिल के अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे बनी पुलिया से टकराने के कारण हुई। दुर्घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। गोरखपुर, महाराजगंज और कुशीनगर सहित पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में गरज चमक के साथ हुई हल्की बारिश से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में देवरिया, गोरखपुर, संतकबीरनगर, कुशीनगर, महाराजगंज से

धारनगर और बलरामपुर सहित कई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना व्यक्त की है। हालांकि मौसम विभाग के अनुसार तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये मारा। डॉलकर ही नहीं, किनकर भी मिलता है, बच्चे भी खरीद सकते हैं। RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।
3: पंचो जय जवान जय किसान। हाँ, ये नारा के साथ अपन बैठ के शुरू भइल। पंच भाई, अपने किसान भाई लोग खेती में तरह तरह के फसलन के इसमें उगा रहल बाटे, जैसे धान के सीजन चल रहा बा, लेकिन एगो ऐसने फसल होके मूंगफली, जेकर उन्नत खेती करे बदे कहल जाला कि उचित जल निकासी के साथ साथ हल्की बलुई दोमट या रेतीली मिट्टी रहे तो सबसे अच्छा होखेला।
4: हाँ भैया, ये एक आर्थिक रूप से अपने किसान भाई लोगन के नगदी फसल कहल जा सकेला कि हवे, और एकर अगर नियोजित ढंग से हमन के खेती बाड़ी करत हैं तो हमन के एकर पुरहर लाभ मिली। जैसे कि तू कहला वना कि एकरे खातिर बलुई दोमट मिट्टी बहुत उपयुक्त होला, तो ये बातें के किसान भाई ध्यान रखें और साथ ही साथ नियोजित ढंग से एकर अगर खेती करी है तो ओकर पुरहर उन लोगन के लाभ मिली।
3: बिल्कुल सही बात है। और एक सबसे बड़ी चीज़ ये हो बाकी जौन कहल जाला कि जौन नगदी फसल के बात कैलू है वो तो हवे करे, एक सबसे बड़ी मात अच्छी चीज ही बा कि मूंगफली में प्रोटीन के मात्रा बहुत अच्छा होला। और अगर ये के जौन हवे एक तरह से कहा जाला कि भाई ये गरीबन के काजू भी हवे, तो बहुत लोग एक ही जना अगर एक सही से एकर खेती करें
4: जोन बुआई के समय होला ना भैया, वो जून और जुलाई के महीना
3: सही समय चल
4: समय चल रहा बा, ये समय अपन किसान भाई लोग एकर जोन बा बुआई का कार्य कई सके ना।
3: साथ ही
4: साथ वो लोग अपने भूमि के परीक्षण करवा लें, साथ ही साथ बीज का शोधन भी बहुत ही प्रमुख
3: बहुत जरूरी बा। उन्नत बीज के एक सबसे बड़ी चीज ही बा कि फफूंद नाशक से उपचारित करे के चाहिए, और पक्ति से पक्ति के जन दूरी हुई मूंगफली के जोन है बुआई में वो कम से कम 30 से 45 सेंटीमीटर रखे के चाहिए, इतने नहीं उचित मात्रा में जिप्सम के प्रयोग भी करे के चाहिए, जैसे जोन है एक उकर उन्नत खेती बड़े अच्छे तरीके से हो पावे। यही क्रम में जोन ये बात कह रहे कि उपयुक्त मिट्टी और जलवायु के तरह करी, साथ साथ जोन है एक कहा जाला कि जोन है एक उर्वरक प्रबंधन, सिंचाई और खरपतवार नियंत्रण भी में बहुत जरूरी होखेला।
4: हाँ भाई, ये सब के बातें के आप लोग ध्यान में रख के एकर पुरहर जोन बा उगा के आप लोग लाभ प्राप्त कर सके नहीं। और एक ही साथ अब हमन के अपने बैठकी में आगे बढ़ल जा और सुन लहल जाए एगो जानकारी। बरसात में मुर्गियन के होए वाले रोग के विषय में जानकारी दी है डॉक्टर लालचंद वर्मा जी, और उनसे बात करत हूँ विनय कुमार दाए। सुनल जा,
5: जल्दी टिफिन पैक करो राजू, मोबाइल छोड़ो।
6: अरे दीदी, वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
5: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
6: तो फिर सही नंबर
5: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
6: आपने तो बचा लिया दीदी।
5: काम से नहीं।
7: RBI कहता है,
8: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
9: मोट बीमारी से तो आप लोग पशुअन के बचा ले ला, लेकिन और तमाम ऐसा बीमारी है जौना के भनक भी आप लोगों के ना लग पावेला। ओकर सबसे अच्छा तरीका है कि ऐसा बीमारी का टीकाकरण करवावल जा, या जौन सबसे पहले लक्षण बा ओके तजवीज के

0: एकर समय से इलाज करावल जा। लेकिन हमन के का पता कौना तरह का बीमारी है, कौना तरह के एकर लक्षण होला। खास तौर से जब मुर्गियन का बात कल जा, तो आज अपने कार्यक्रम में फोन लाइन से जुड़ल हैं डॉक्टर लालचंद वर्मा। आप हैं वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष कृषि विज्ञान केंद्र पिलखी जनपद मऊ में। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका हमारे यह कार्यक्रम में स्वागत बा। बरसात में मुर्गियन के होखे वाली बीमारी कौन कौन है?
1: बरसात में मुर्गियों को बीमारी कुछ ज्यादा ही लगती है, लेकिन ये मुर्गी पालन सीमांत किसानों के या भूमिहीन किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण एक धंधा है, जिससे वो अपने बाल बच्चों का पालक पोषण कर सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं। लेकिन एक बीमारी लग जाती है तब ये घाटे का सौदा हो जाता है। इसके बचाव के लिए हमें ये ध्यान रखना पड़ता है, यदि मुर्गियां अपना गर्दन टेढ़ा करके बैठ जाएं और पैर पीछे की तरफ कर लें, उनके मुंह से नाक निकलने लगे और छींकने लगे, तब ये मान लेना चाहिए कि इनको रानीखेत जैसी बीमारी का आक्रमण हो गया है। ये एक वायरस से पहुंच होती है, तो इसका टीकाकरण जरूर करा लेना चाहिए। और रानीखेत बीमारी का टीकाकरण 5 से 7 दिन पर 2 बूंद, एक बूंद आंख में और एक बूंद नाक में करने से ये बीमारी नहीं आती है। और इसका बूस्टर डोज भी 28 दिन पर दे देना चाहिए। ये बूस्टर डोज अधिकतर अंडा देने वाली मुर्गियों में किया जाता है, ब्रायलर में सिर्फ एक ही डोज पर ही काम चल सकता है। दूसरी जो वायरस से बीमारी होती है उसको फाउल पॉक्स या चेचक कहते हैं। आप जैसा कि जानते हैं, चेचक होने पर उनके कलकी में, उनके आंख के भौं पर और जहां जहां भी उनके अंग दिखाई देते हैं, जहां बाल नहीं होते हैं, वहां पर छोटे छोटे दाने निकल जाते हैं, जिससे मुर्गियां बदरंग टाइप हो जाती हैं और मृत्यु दर भी 50% से ऊपर तक हो जाती है। तो इसके बचाव के लिए इसका एक फाउल पॉक्स का टीका आता है जो 42 दिन पर लगाया जाता है, एक बूंद पंख की चमड़ी में इसे लगाने से ये बीमारी से निजात पा सकते हैं। दूसरी एक जो खतरनाक बीमारी है वो है इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस के नाम से जाना जाता है, जो सांस की नली में ये पैदा कर देती है रुकावट, जिससे मुर्गी जो है वो छींकने लगती है, खांसने लगती है, हांफती है, उसकी आंखें नीली पड़ जाती हैं, नाक से स्राव निकलने लगता है, कान के पास चूजों को रखने पर क्रैकलिंग साउंड मालूम पड़ता है, जैसे घर घर की आवाज भी करने लगते हैं। ज्यादातर वयस्कों में भी मृत्यु दर 20% तक हो जाती है। ऐसी स्थिति में इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस के लिए हमें 14 दिन पर टीका लगाना होता है, जिसमें 2 बूंद, एक बूंद आंख में और एक नाक के माध्यम से लगा देने से इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस से बचा जा सकता है। एक बीमारी होती है गम्बोरो, जिसमें मुर्गियां अपने पीछे की तरफ चोंच मारती रहती हैं, तो ऐसी स्थिति में पानी में वैक्सीन को डाल देना चाहिए, जिसमें वो पानी पीते हैं उसमें करीब 2 ml वैक्सीन 10 लीटर पानी में डाल देंगे, तो जब मुर्गियां पानी पिएगी तो उनको इसका टीकाकरण हो जाएगा। और इस तरीके से एक बीमारी होती है माइकोप्लाज्मा से, जिसका निदान तो रासायनिक ही है, जिसको क्रोनिक रेस्पायरेटरी डिजीज बोलते हैं, ये गांव में CRD के नाम से जानी जाती है। और इसकी वजह से गैस बनता है और नाक से हमेशा टपकती रहती है सलाइवा जैसा, फेफड़े में निमोनिया हो जाता है, छींकते हैं, खांसते हैं, ये सब सामान्य सी चीजें उनके हमेशा होती रहती हैं। और मुर्गियों को जो अंडे होते हैं वो भी इन्फेक्टेड हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये फैलते भी हैं, जैसे एक मुर्गी में फैल गया तो अंडे के द्वारा फैल जाएगा, मुर्गी से मुर्गी में फैल जाएगा, नाक के द्वारा जो स्राव निकलता उससे फैल जाएगा, जो आगंतुक या नात रिश्तेदार मुर्गी पालक मिलने जुलने वाले आते हैं उनके पैरों में, उनके कपड़ों से भी ये एक दूसरे में फैल जाता है। इसलिए ये आवश्यक है कि स्वच्छ हवादार मकान हो, फर्श सूखा हो, चूजों को CRD फ्री स्रोतों से ले, मतलब ये बीमारी जहां हो उस ऐसी जगहों से ना खरीदें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और इसकी बीमारी में ज्यादातर हम देखते हैं कि सर्दी गर्मी के मौसम में जब स्ट्रेस होता है तभी हो जाता है, क्योंकि बरसात के मौसम में लीटर जो बिछावन है वो गीला रहता है, गीला रहने की वजह से अगर मुर्गियां उसको खा जाती हैं और उनके आंतड़ी में इन्फेक्शन हो जाता है, तो इससे नुकसान होता है। तो बचाव के लिए लीटर को यानी बिछावन को सूखा रखना आवश्यक है। पीने के पानी में जो बैक्टीरिया ई कोलाई होती है अगर उसकी संख्या ज्यादा है तो भी सीआरडी बीमारी आ जाती है, फार्म का प्रबंधन अगर गड़बड़ है तो भी आ जाती है। तो इसके बचाव के लिए ये एक सही तरीका है कि 100 लीटर पानी में 5 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर, 100 लीटर पानी में 25 ग्राम फिक्री, टीकाकरण और विटामिन के दिन को छोड़कर हर हफ्ते फार्मेलिन या अन्य दवाई का सेट के बाहर छिड़काव करने से ये बीमारी नहीं आ पाती है, और ये घोल बनाकर आप इसको भी छिड़क सकते हैं। एक बीमारी होती है जो खूनी पेचिस के नाम से जानी, जिसको काक्सीडियोसिस कहते हैं, ये परजीवी प्रोटोजोआ के कारण होती है। इसमें मुर्गियों के लैटिन जो होती है वो खून से सनी होती है। ऐसी स्थिति में कैसे उनको सुधार किया जाए, इसके लिए दवा आती है एम्प्रोलियम, नाइट्रोफ्यूराजान, सल्फा क्यूनोलिजान, सल्फा डाइडीन का राशन अथवा पानी के साथ अगर प्रयोग करते हैं तो ये बीमारी से निजात पा सकते हैं। ये बीमारी मुख्यतः बरसात में होती है जब लीटर गंदा होता है या हवा में नमी की मात्रा ज्यादा होती है, तो लीटर सूखता नहीं है और उनको इन्फेक्शन हो जाता है, तो इसकी वजह से प्रोटोजोआ अंदर पहुंच करके काफी नुकसान पहुंचाता है।
0: डॉक्टर साहब, बरसात में पानी का बर्तन जौन उनके दाना दिहल जात बा, आ यही तरह से आसपास जौना के आप लीटर कहतनी, जौना में चले ली टहले ली, तो एकरे सफाई खातिर और कौन कौन चीज करे के चाही, और नमी अगर हो गई बा तो ओके कौना विधि से सुखावे के चाही, और चूना का प्रयोग कल जरूरी है बरसात में लीटर पर?
1: हाँ, ये खास सवाल आपका कि यदि लीटर गीला हो गया है तो मुर्गियों को उसी में एक तरफ करके एक मुर्गी गार्ड होता है जो दूसरी तरफ जाने से रोकता है, तो उसको लगा दीजिए। और इसके बाद जो लीटर यानी बिछावन गीला हो गया है उसको रोज पलटिए, उसको रोज शाम को पलट देना चाहिए, जिससे वो लैटिन करती हैं और मौसम के गीला होने के वो गीला रहता है तो सूखता रहता है। फिर हफ्ते 10 दिन में बुझा हुआ चूना का छिड़काव कर देना चाहिए। बुझे हुए चूने के छिड़काव कर देने से जितने उसमें जर्म हैं वो मर जाते हैं और मुर्गियों को ये बीमारी नहीं लगती है। लेकिन ये तो आप उससे बचा रहे हैं लीटर को सूखा रखने के लिए। जो पानी के बर्तन हैं उनको भी हमें पोटेशियम परमैंगनेट, एक दवा होती है 10% की, उसको पानी में मिला करके बर्तन को साफ करना चाहिए। पीने वाले पानी में पोटेशियम परमैंगनेट 10% का आपको मिला करके उन्हें पिलाना चाहिए, जिससे अंदर के जो जर्म हैं वो भी नहीं होते हैं और मुर्गियां हमेशा स्वस्थ रहती हैं। तो बर्तन को भी साफ करें, पानी में डाल करके भी उनको पिलाएं, तो 10% वाले को पानी में डाल के पिलाएंगे कोई नुकसान नहीं है और मुर्गियों में मांस उत्पादन अच्छा होगा, अंडा उत्पादन भी अच्छा होगा। यदि मुर्गियां बैकयार्ड की तरह पाली जा रही हैं, जो घर के पिछवाड़े अगवाड़े में अगर वो चरती हैं, तो उनको भी हमें जब पानी पिलाते हैं तो उसमें पोटेशियम परमैंगनेट की दवा डाल करके ही पिला देने से वो स्वस्थ रहेंगी। और ज्यादा अच्छा ग्रोथ हो इसके लिए उन्हें पत्थर का पाउडर आता है, जो जीरो लेवल की एक गिट्टी होती है जिसको कहते हैं, उसको खिला देने से उनका हाजमा सही रहता है और वो स्वस्थ भी रहते हैं। अंडों के ऊपर का जो कवर है वो काफी मजबूत रहता है, कैल्शियम का उसमें भरपूर स्रोत है।
0: एक बार अगर लीटर बिछावन डाल दिहल गई बात, कितना दिन ले चलेला और कितना दिन बाद पूरा बदल देवे के चाहिए?
1: लीटर को अगर ब्रॉयलर पालन कर रहे हैं तो इसको एक बार डालने के बाद केवल पलटते रहना है, और जब तक 40 से 42 या 60 दिन में जब वो 1 से 2 किलो के हो जाते हैं तो जब बेच देते हैं, तो इसके बाद पूरा लीटर को निकाल करके उसकी कंपोस्ट खाद बना करके खेत में उर्वरा शक्ति के लिए डाल दें, और जो शेड है मुर्गी फार्म है उसमें चूने का छिड़काव करें या चूने की पोताई करें जैसे घरों में करते हैं, उसे पोताई

0: कर देंगे तो वो मर जाएंगे उसमें जो जर्म्स हैं। और दूसरा एक जर्म उसको मारने के एक फ्लैम आता है जो मिट्टी के तेल से केरोसिन आयल से चलता है, तो उसको जला करके जमीन को स्टेरिलाइज किया जाता है, यानी उसको ताप से मार दिया जाता है। इस तरीके से एक हफ्ता तक उसमें कुछ भी नहीं डालना चाहिए, कोई भी मुर्गा नहीं डालना चाहिए। जब एक बार खाली हो गया ऑल इन ऑल आउट सिस्टम में, इसके बाद एक हफ्ते तक वो फार्म आराम करना चाहिए। आराम करने का मतलब जब उसमें कुछ भी नहीं रहते हैं तो जो जीव हैं जर्म्स हैं वो अपने आप वहां से चले जाते हैं या तो मर जाते हैं, और फिर दूसरा चूजा ले आएंगे तब वो बढ़िया चलेगा।
1: डॉक्टर लालचंद वर्मा जी, आप इतना अच्छा जानकारी दिया ली कि बरसात में मुर्गी के कौन कौन बीमारी होला, ओकरे बचाव खातिर का करे के चाहिए, अगर हो गई बा तो ओकर नियंत्रण कैसे करे के चाहिए, ये करे खातिर आपके बहुत बहुत धन्यवाद।
2: बहुत निमन जानकारी देना है डॉक्टर लालचंद वर्मा जी कि बरसात में, बरसात के होए वाले मौसम में मुर्गियन के होए वाला रोग का होला, ओकर उपचार कैसे हुई, और ये जानकारी के आप सबके भाई दिए जाए धन्यवाद। और अब लगले हाथी सुनल जाए मन मनसाई को, दिन हम चल जाओ सुनल जाए गीत।

0: मनमनसाइन के बाद अब लिया जाएगी और जानकारी।
1: हाँ भैया बिल्कुल, जानकारी सुनल जा। मिट्टी में कार्बन की मात्रा कैसे बढ़ावल जा ए पे जानकारी देता हूँ डॉक्टर रामजीत यादव जी, ताई सुनल जा।
2: विद्यापति पाठक जी, आप पूर्व सहायक निदेशक कृषि विभाग गोरखपुर हैं। पाठक जी, सबसे पहले आपके अपने बैठकी में स्वागत बा। आपन किसान भाई लोग जब खेती करे के बारे में सोचेला तब सबसे पहले माटी के ऊपर उनका ध्यान जाला, और माटी के बारे में सोचला पे पता चलेला कि पंच विद्यापति पाठक जी
3: कौन कौन से तत्व अगर हो तो
2: हमें उर्वरक और कंपोस्ट वाली खाद या और कुछ छोड़ के जौन माटी के स्वास्थ्य भाव के बढ़ावल चाहेला, लेकिन कुछ चीज ऐसा होले जौन की माटी में न रहला से अपने उत्पादन पर प्रभाव पड़ेला, तो माटी स्वस्थ कैसे रहे, माटी स्वस्थ वा कि नहीं, ई कैसे जानकारी पंच भाई लोग करें।
3: आपकी मिट्टी स्वस्थ है कि नहीं है, इसके लिए ये जरूरी है कि उस मिट्टी के अंदर कौन कौन से तत्व अगर हों तो हम उसको स्वस्थ मानेंगे। सबसे पहले यदि भूमि का पीएच आपका 6.5 से 8.5 के बीच में है तो समझिए कि आपकी मिट्टी सामान्य रूप से स्वस्थ है, न वो ऊसर है न वो अम्लीय है। अब अगर उसका गठन, गठन का मतलब कि उसमें बालू की मात्रा कितनी है, उसमें अन्य आपकी चिकनी मिट्टी कितनी है, तो विशेष कर से जो बलुई से जो चिकनी दोमट मिट्टी होती है वो बिल्कुल स्वस्थ भूमि मानी जाती है, उसमें फसल बढ़िया होता है, उसमें ह्यूमस की मात्रा भी अच्छी।
2: पंच भाई लोग बलुई दोमट कहे,
3: हाँ, जो के बलुई दोमट से लेकर के दोमट, बलुई दोमट या चिकनी दोमट, अगर यह अगर इस टाइप की मिट्टी है तो अच्छा। समझिए कि आपकी मिट्टी आपके फसल के लिए अति उत्तम।
4: किसान भाइयों, आज हम चर्चा करेंगे कि मिट्टी में कार्बन की मात्रा को कैसे बढ़ाएं। सबसे पहले तो हम समझेंगे कि कार्बन होता क्या है। कार्बन वैसे तत्व हैं जो प्रकृति के द्वारा दिया हुआ चीज है, जो इन्वायरमेंट में उपलब्ध होता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड। इसे जो है पौधे किसी भी रूप में अपने मिट्टी में संशोधित करते हैं।

0: हैं ये फोटोसिंथेसिस के द्वारा। जब ये पौधों के द्वारा मिट्टी में इनकी मात्रा फिक्स हो जाती है तब पौधे उसे अपने मेटाबॉलिक प्रोसेस में ले करके पौधों के डिफरेंट भागों में पहुंचाते हैं। तो ये जो कार्बन है, इस कार्बन की मात्रा हम जो है दिन प्रतिदिन मिट्टी में डाल नहीं रहे हैं, जिससे हमारे मिट्टी का सेहत खराब होते जा रहा है। तो किसान भाइयों को चाहिए कि हम अपने मिट्टी में कार्बन की मात्रा को कैसे बढ़ाएं। जैसा कि सभी किसान भाइयों को जानकारी है कि पौधों के लिए 17 पोषक तत्वों की जरूरत होती है, जिसमें कुछ पोषक तत्व हैं जो प्रकृति ने इन्हें नेचुरली रूप से मिट्टी में देती है, जिनका नाम है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो आज हम विशेष रूप से कार्बन को ही फोकस करेंगे कि आज हमारे मिट्टी में दिन प्रतिदिन कार्बन की मात्रा क्यों घट रही है और इस कार्बन की मात्रा को हम मिट्टी में कैसे बढ़ाएं, उसका कैसे मैनेजमेंट करें जिससे हमारा सॉयल हेल्थ मेंटेन रहे। तो किसान भाई अंधाधुंध रासायनिक खादों का प्रयोग करते जा रहे हैं, हाई यील्डिंग वैरायटी लगा करके मिट्टी में जो पोषक तत्व हैं उनका दोहन करते जा रहे हैं। इससे हमारे मिट्टी का हेल्थ जो है खराब होते जा रहा है। तो किसान भाइयों को चाहिए कि हम जो है अपने मिट्टी में ये जो पोषक तत्व घट रहे हैं, जो दूसरे पोषक तत्व की अवेलेबिलिटी को बढ़ाते हैं, उन्हें पौधों को अवेलेबल कराने में या उपलब्ध कराने में सहयोग करते हैं, उनकी मात्रा अगर हमारे मिट्टी में कम हो जाएगी तो कहीं न कहीं ये हमारे हेल्थ के साथ साथ सॉइल के हेल्थ को भी खराब, और जो दूसरे पोषक तत्व हैं, जो 17 पोषक तत्व हैं, उनकी जो अवेलेबिलिटी है, जो उपलब्धता है, उनको भी ये कम कर देते हैं। तो किसान भाइयों को सबसे पहले ये चाहिए कि हम जो है अपने मिट्टी में ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनिक खाद, जैसे हम कह लें कि गोबर की शुद्ध सड़ी हुई खाद, या फिर हम कहें कि जो फसल हम उगाते हैं उस फसल का जो अवशेष है उस अवशेष को मिट्टी में इनकॉर्पोरेट करें, और इनकॉर्पोरेट करके उन्हें जो है सड़ा गला करके फिर से जो है जो पोषक तत्व मिट्टी से पौधे लिए हैं उन्हें जो है फिर मिट्टी में मिला करके उन्हें उपलब्ध कराएं। इसके लिए किसान भाई सबसे पहले ये करें कि जो भी फसल उगा रहे हैं उसका जो अवशेष है उस अवशेष को जलाएं नहीं, पहला चीज। दूसरा चीज किसान भाई ये करें कि ज्यादा से ज्यादा पशु का जो गोबर की खाद है, या मुर्गी पालन जो किए हुए उनका जो वेस्ट मटेरियल है वो, या फिर जहां पे हमारी चीनी मिल है उस चीनी मिल का जो मड होता है उस मड को ज्यादा से ज्यादा हम अपने खेत में प्रयोग करें, जिससे क्या होगा हमारे मिट्टी के जो पोषक तत्व हैं उनकी अवेलेबिलिटी बढ़ेगी। और किसान भाई सबसे ऑथेंटिक बात तो ये है कि वो लोग जो है हमारे पुआली जो होता है, जैसे धान के खेत में हमने धान की फसल उगाए और धान का जो बीज है उसे हम ले लिए, और बीज लेने के बाद जो उसकी पुआली बचती है उस पुआली को हम जला देते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारे मिट्टी के में जो कार्बन की मात्रा है वो घट जाती है, खराब हो जाती है, या जो जीवाणु है वो मर जाते हैं। इसलिए कतई कोई भी किसान भाई पराली न जलाएं, पराली को इनकॉर्पोरेट करके मिट्टी में मिलाएं, जिससे हमारे पोषक तत्व की उपलब्धता बढ़ेगी। दूसरा चीज है कि जितना ज्यादा से ज्यादा किसान भाई हेल्थ भी खराब होते जा रहा है और मिट्टी का भी हेल्थ खराब होते जा रहा है, इसलिए किसान भाइयों को चाहिए कि वो लोग ज्यादा से ज्यादा कार्बन की मात्रा को मिट्टी में इनकॉर्पोरेट करें और मिट्टी में कार्बन की मात्रा बढ़ाएं, जिससे उसका मिट्टी का हेल्थ भी अच्छा रहेगा और हमारा उत्पादन भी दिन प्रतिदिन अच्छा होगा।
1: मिट्टी में कार्बन की मात्रा कैसे बढ़ावल जाए पर जानकारी देते रहना डॉक्टर रामजीत यादव, और तो लगले हाथ इनके दिया जाए धन्यवाद कि निश्चित तौर पर किसान भाई लोग ये मिट्टी में कार्बन की मात्रा कैसे बढ़ावल जाए जानकारी से लाभ उठे हैं। और अब समय हो गई बा, घड़ी की सुई भी इशारा कर रहा बा कि अपन कार्यक्रम हम उनके समाप्त करल जा, चले कि जून भी हो गई बा, तो एक के साथ पंचों जय जवान जय किसान।

हम अभी आप सुन रहे थे किसान भाइयों का कार्यक्रम खेती बाड़ी। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना सुने। गिरधर यादव अपनी 15 वर्षीय पुत्री अंशु यादव के लापता होने की सूचना हमें दे रही हैं। गुमशुदा अंशु का विवरण कुछ इस प्रकार है। उम्र करीब 15 वर्ष, कद 5 फुट 2 इंच, रंग गोरा। इनके संबंध में किसी भी प्रकार की सूचना मिलने पर कृपया हमें इस पते पे सूचित करें। गिरधर यादव ग्राम बादलपुर थाना हल्दी जिला बलिया। दूरभाष संख्या है 8858837028। एक और सूचना सुने। मुखलाल राजभर अपनी 19 वर्षीय पुत्री प्रीति के लापता होने की सूचना हमें दे रहे हैं। गुमशुदा प्रीति का विवरण कुछ इस प्रकार है। उम्र करीब 19 वर्ष, रंग गोरा, कद 5 फुट। इनके संबंध में किसी भी प्रकार की सूचना मिलने पर कृपया इस पते पे सूचित करें। मुखलाल राजभर ग्राम बिशुनपुरा पोस्ट मानिकपुर थाना मनियर जिला बलिया। दूरभाष संख्या है 3 7 3 7 9 1 2 4 0 3 6। इसी क्रम में एक और सूचना सुने। बाल किशुन राजभर अपने 20 वर्षीय पुत्री प्रियांशु के लापता होने की सूचना हमें दे रहे हैं। गुमशुदा प्रियांशु का विवरण कुछ इस प्रकार है। उम्र करीब 20 वर्ष, कद लगभग 5 फुट, रंग गोरा। इनके संबंध में किसी भी प्रकार की सूचना मिलने पर कृपया इस पते पर सूचित करें। बाल किशुन राजभर ग्राम नावट पोस्ट मनियर थाना मनियर जनपद बलिया। दूरभाष संख्या है 6390114574। संजय राजभर अपनी पुत्री सुजीता के लापता होने की सूचना हमें दे रहे हैं। गुमशुदा सुजीता का विवरण कुछ इस प्रकार है। उम्र करीब 19 वर्ष, रंग सांवला, कद 5 फुट 2 इंच। इनके संबंध में किसी भी प्रकार की सूचना मिलने पर कृपया इस पते पर सूचित करें। अशोक राजभर अशोक राजभर पता बांसडी जिला बलिया। दूरभाष संख्या है 8573854363। एक बार और सुने। 8573854363। सुरेंद्र वर्मा अपनी 18 वर्षीय पुत्री रानी वर्मा के लापता होने की सूचना हमें दे रहे हैं। गुमशुदा रानी का विवरण कुछ इस प्रकार है। उम्र करीब 18 वर्ष, रंग गोरा, कद 5 फुट। गुमशुदा रानी के संबंध में किसी भी प्रकार की सूचना मिलने पर कृपया इस पते पर सूचित करें। सुरेंद्र वर्मा ग्राम केवरा थाना बांसडी जिला बलिया। दूरभाष संख्या है 8510930784। दूरभाष संख्या एक बार पुनः सुने। 8510930784। खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना समाप्त हुई। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। आपसे कुछ ही देर में आप सुनेंगे लोकगीतों का कार्यक्रम लोकधारा।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, हर टन में ज्यादा लंबाई ज्यादा फायदा, कम खर्च में ज्यादा निर्माण। RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।
3: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग।

अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbharatiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbharatiarchives.co.in।

0: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
1: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, आम सरिये के मुकाबले लगभग 20% ज्यादा ताकत।
2: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।
3: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
4: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
5: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे TV चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
4: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट,
5: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
4: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की,
5: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
4: For details, log on to www.ddindia.com।
6: दूल्हा

0: इस गीत के साथ ही लोकगीतों का कार्यक्रम लोकधारा यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है भोजपुरी बोली का कार्यक्रम देशमार। इसमें आज आप सुनेंगे वार्ता। वार्ता का विषय है भोजपुरी क्षेत्र का लोक कला। वार्ताकार हैं जयप्रकाश मिश्र जी।
1: भोजपुरी क्षेत्र का लोक कला लोक संस्कृति का अंग है। अभिजात्य कला ऐसन शास्त्री और खालिस सौंदर्य बोध से बदल नहीं रहेला। सहजता संदेश और उपदेश का प्रवृत्ति लोक कला में खास तौर से मिलेले। लोक कला का

आधार लोक विश्वास, लोक रुचि और लोक मत होला। कौनो समाज के सभ्यता, संस्कृति, अभ्युदय, आकांक्षा और विकास के समझे खातिर वहाँ के लोक कला के जानल समझल जरूरी होला। लोक कला समाज का सही आईना होला। लोक कला सामान्यतः भोजपुरी लोक कला के विभिन्न रूप के भोजपुरी लोक साहित्य के अंतर्गत रखल जाला। बाकी अपने ध्यान से देखल जा तो पायल जाई कि भोजपुरी कला का अधिकांश रूप एक दूसरे से जुड़ल बाटे। जौना रूप के लोक साहित्य मानल जाला ओके बिना गवले, बजौले, नचौले, कुदले प्रस्तुत नहीं कई जा सकेला। कोनो भोजपुरी लोकगीत का कल्पना बिना गवले नहीं कई जा सकेला। भोजपुरी लोकगीतन का हर भेद और रूप के राग अलग अलग बा। कोनो कोनो लोकगीत इतना मार्मिक और राग सम्मत बा कि ओके जस के तस शास्त्रीय संगीत में रख लिहल बा। इतने नाई कई गो भोजपुरी कथनों गा गा के कहल जाला। भोजपुरी चित्रांकन का अलग समृद्ध रूप बा। एकरा अलावा अनेक ऐसन कला रूप भोजपुरी समाज में बाटे कि ओके छोड़ के भोजपुरी समाज का पूरा तस्वीर सामने नाई आ सकेला। एमे सबके समाहित कह के सबकर संक्षिप्त विवरण कई जा सकेला। भोजपुरी लोक कला भोजपुरी माटी के अकृत्रिम अकुंठ अभिव्यक्ति है। भोजपुरी माटी के स्वभाव, सुख दुख, जीवन शैली सबके झांकी भोजपुरी लोक कला में मिली। अपना समाज के साथे भोजपुरी लोक कला हमेशा से जुड़ल बा। भोजपुरी समाज नेह छोह वाला समाज है, रिश्ता जोड़े वाला समाज है। भोजपुरिया आदमी अपने आप में कब्बो नहीं रह सकेला। वो अपन समाज और परिवेश से गहराई से जुड़ल रहेला। यहाँ एगो बात कहल जरूरी बा कि भोजपुरिया समाज में आदमी के साथे साथे प्रकृति भी रहेले। परिवेश के छोट से छोट चीज रहेला। आदमी, जीव, जंतु, निर्जीव, सजीव सब मिल के भोजपुरिया समाज बनावेला। यह से भोजपुरी लोक कला में पेड़, नदी, नाला, पशु, पक्षी, अड़ोसी पड़ोसी सब कौनो न कौनो रूप में आपके उपस्थित मिली। भोजपुरी लोक कला के विषय वस्तु का व्यापकता बहुते अधिक बा। एगो बात और कला के शायदे कौनो रूप होई जौना का नमूना भोजपुरी लोक कला में नहीं मिली। कहल जा सकेला कि भोजपुरी लोक कला व्यापकता और विविधता के लिहाज से अत्यंत संपन्न बा। भोजपुरी लोक कला के मूल स्वर लोक मंगल कहवे। भोजपुरी आदमी अपना से अधिक महत्व दूसरा के देला। वो अपने दुख सहल पसंद करेला और दूसरा के दुख नहीं दिहल चाहेला। भोजपुरी आदमी का स्वभाव भोजपुरी लोक कला में पग पग पर झलकेला। भोजपुरी लोक कला सबके साथे लेके सबके मंगल कामना का बात करेला। भोजपुरी संस्कृति उत्सव धर्मी संस्कृति हवे। भोजपुरी समाज खेतीहर समाज है, यही से एकर अधिकांश उत्सव खेती से जुड़ल होला। भोजपुरी समाज का रिश्ता प्रकृति से बहुते गहराई से भी जुड़ल अनेक उत्सव खेती में जुड़ल होला। भोजपुरी समाज का रिश्ता यह तरह से प्रकृति में बहुते गहराई से जुड़ल अनेक उत्सव भोजपुरी समाज में मनावल जाला। इतने नहीं, यहाँ खेती का काम धाम पूरी तरह प्रकृति पर निर्भर करेला। बरखा ना होई तो फसल सूखी जाई। भोजपुरी लोक कला में कब्बो फसल प्रकृति के मनावल जाला आ कब्बो ओकरा प्रशंसा में कसीदा काढ़ल जाला। वैसे तो भोजपुरी कला में जीवन का हर छवि के उतारल गईल बा। बाकिर श्रृंगार, वीर, करुण, हास्य, रस का प्रधानता यहाँ मिले ले। लोकगीत, कथा, चित्रांकन आदि में भोजपुरी लोक कला का विशेषता देखल जा सकेला। भोजपुरी लोक कला में एगो बहुत बढ़न खासियत ई है कि बहुत कलात्मक ढंग से कलाकार पहले उपयोगी चीजन के बनावेलन, फिर ओकरे छवि के कला विविध रूप में उतार लेलन। एगो उदाहरण से बात आसानी से समझ में आ जाई। कुदारी खेती के काम में आवे वाला उपकरण है। एके तैयार करे में

भोजपुरी कलाकार अपन हुनर दिखावेलन। अषाढ़ महीना में खेती के समहूत करे समय बनावल जाला जाए वाला चौक में

0: भाषा तो में बिना कोनो हेर फेर के मूल रूप में ही प्रयोग में ले लिहल जाई। प्राकृतिक रूप में उपयोग में एके लिहल जाला। चौक पूरे खातिर चौरठ त खाली चौरठ, आटा त खाली आटा, हरदी त खाली हरदी, नवग्रह के पूजा में चावल के अलग अलग रंग के रंगल जाला। भोजपुरी लोक कला यथार्थ अंकन के पक्षधर है। आरोपित आदर्श एकरा ना भावे। भोजपुरी लोकगीत यह तथ्य के भली बात उजागर करेले कि आदमी के मन का दुर्बलता, समाज में व्याप्त अत्याचार अनाचार का यथार्थ चित्रण करत उपदेश का प्रविष्टि भोजपुरी लोक कला में मिली। आदर्श यहाँ ऊपर से रोपल नहीं जाला। आगे भोजपुरी लोक कला का विविध रूप का वर्णन कैले में पीढ़ी दर पीढ़ी से जन जन के कंठ में रचल बसल भोजपुरी गीत जौना में जनजीवन का पुरहर छवि झिलमिला उठेले। भोजपुरी लोकगीत कहाला। भोजपुरी लोकगीत में मनोरंजन का भरपूर क्षमता होला। भोजपुरी सैकड़न बरिस में अनगिनत लोकगीत जनजीवन में प्रचलित बा। स्त्री पुरुष सब एके गावेलन, आनंद लेलन। ये सबके रचनाकार रचनाकाल के बारे में पता नहीं चलेला। हालांकि अब कुछ लोकगीतन में रचनाकार अपन नाव को उल्लेख करत बाटन। लोकगीत के पढ़ के इ पावल जाला कि यह में भाव और अनुभूति पर ज्यादा जोर दिहल गईल। अलंकार चमत्कार यहाँ ओढ़ले मिली। जितना बाकी खातिर जरूरी बा सुंदर सुंदर उपमा वक्रोक्ति यहाँ मिली, लेकिन प्रयोग में सहजता मिली। ये शब्द प्रयोग के लिहाज से यहाँ ऐसन शब्द मिली हैं जौन लोक व्यवहार में आवे ला। भले उस शब्द घिसल पीटल होखे, भाषा में कौनो बनावट काट छाट लोकगीत बर्दाश्त नहीं करेले। यहाँ एगो ध्यान देवे वाली बात बा कि लोकगीत गावे खातिर लोकगीत में गायता जरूरी होला। भोजपुरी लोकगीत में भोजपुरी समाज का तस्वीर पग पग पर मिली। जब से खेती बारी शुरू भई, स्त्री पुरुष रिश्ता के डोर में वहाँ बढ़ गई। ये सबसे जुड़ल भोजपुरी लोकगीत एक ओर से दूसरे ओर पहुँचे लगल। औद्योगिकरण के जमाना में पुरुष जब कमाए खातिर बहरा निकलेला तो भोजपुरी लोकगीत वियोग के वेदना में गावल जाला। जब या अंत में भोजपुरी लोकगीत अपन समाज के सावधान करे के रूप में अख्तियार कई गई बा। इतिहास के पन्ना में ये देखल जा सकेला कि भोजपुरी लोकगीत भारत के स्वतंत्रता संग्राम से हरदम अगुवाई चलल बा। भोजपुरी लोकगीत का खासियत है कि समय और समाज हर दौर के गूंज यहाँ मिली। भोजपुरी लोकगीत बहुत प्रकार का होला। ऋतु संबंधी गीत, संस्कार संबंधी गीत, पर्व संबंधी गीत और व्रत संबंधी गीत, श्रम संबंधी गीत, भक्ति संबंधी गीत, ऋतु संबंधी गीत भोजपुरिया मन अति संवेदनशील होला। वो उन्मुक्त होके प्रकृति के आंगन में खेलेला। ऋतु परिवर्तन के साथे प्रकृति में जौन बदलाव आवेला ओकर जमन रूप निखरेला। भोजपुरिया मन प्रकृति के रूप में वो सुघराई भर के निहारेला। प्रकृति के राग में राग मिलावेला। भोजपुरी लोकगीत के खजाना अनेक गीत ऐसन बा जमन ऋतु से जुड़ल बाटे। जैसे फगुआ फागुन में गावल जाला, फगुआ गीत में फगुआ त्योहार के जिक्र होला, एमे श्रृंगार रस का प्रधानता होला। भोजपुरी लोक चित्रांकन में ये देखल जाला कि ओमे चित्र बनावल जाला, ओके उठावल जाला, फिर बनावल जाला। आपन कला के प्रति कलाकार के ऐसन निर्लिप्तता का प्रणाम करे के चाहे। यहाँ एगो ध्यान देवे के चाहे कि कला खत्म नहीं होला, उठे ले बने ले वैसे ही जैसे जीवन खत्म नहीं होला।
1: अभी आप सुन रहे थे भोजपुरी बोली का कार्यक्रम देश हमार। इसमें आज आपने सुना वार्ता। वार्ता का विषय था भोजपुरी क्षेत्र के लोक कला। वार्ताकार थे जयप्रकाश मिश्र जी। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक संगीत का कार्यक्रम, इसमें आज आप सुनेंगे भोजपुरी लोक।

0: कौनसी बताऊँ जिसमें बोनस भी अच्छा मिले और भरोसे वाला भी हो।
1: PLI है ना?
2: सरकारी कर्मचारी के साथ साथ सभी प्रोफेशनल ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर्स ले सकते हैं PLI पॉलिसी का फायदा और साथ में पोस्टल डिपार्टमेंट का भरोसा भी। अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से आज ही संपर्क करें या लॉगिन करें indiapost.gov.in पर।
3: हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक।
4: बिल भरने के पहले तो आएगी ना।
5: सुगंध क्या हो रहा है?
4: बिल हो रहा है।
5: चल अपना कार्ड दे। पिन दे।
6: RBI कहता है अपना पिन OTP CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए सतर्क रहिए।
7: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। लखनऊ में बहुमंजिला इमारत में चल रहे एनिमेशन सेंटर में आग लगने से 14 छात्रों की मौत, 4 गंभीर रूप से घायल। घटना की उच्च स्तरीय जांच का दिया गया आदेश। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर जताया दुख। मुख्यमंत्री, पुलिस महानिदेशक और अपर मुख्य सचिव गृह ने घटनास्थल का किया निरीक्षण। मुख्यमंत्री ने फिरोजाबाद और अलीगढ़ में विकास परियोजनाओं का किया शुभारंभ। कहा नवाचार का नया केंद्र बना है फिरोजाबाद का ग्लास उद्योग। और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह गाजियाबाद में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी अनुसंधान

0: संस्थान के 92 स्थापना दिवस समारोह में हुए शामिल। कहा 2047 तक विकसित भारत बनाने में वस्त्र मंत्रालय निभाएगा बड़ा योगदान। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र, और अब समाचार विस्तार से। लखनऊ के अलीगंज इलाके में आज एक बहुमंजिला इमारत में चल रहे एनिमेशन सेंटर में आग लगने से 14 छात्रों की मृत्यु हो गई, जबकि 4 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए KGMU के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। मरने वाले छात्रों की उम्र 14 से 18 वर्ष के बीच है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। मौके पर पहुंचे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बताया कि आग इमारत के अंदर लगी और तेजी से फैल गई, जिससे छात्र अंदर फंस गए। आग पर काबू पाने के लिए दमकल विभाग की टीमें, पुलिसकर्मी और जिला प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और बचाव और राहत कार्य में जुट गए। श्री पाठक ने बताया कि घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए हैं। घटना के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
1: 14 बच्चे इस घटना में हताहत हुए हैं, कुल 4 बच्चे घायल हुए हैं, जिनको KGMC ट्रामा सेंटर भेजा गया है। घटना के उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दिए गए हैं। प्रमुख सचिव गृह महोदय और DGP महोदय मौके पर हैं, और प्राथमिकता भी है घायलों को अच्छे से अच्छा इलाज मिले, और घटना कैसे घटी, क्यों हुई, इसके जांच रिपोर्ट आने के बाद ही कह पाएंगे। पीड़ित परिवारों के साथ हमारी पूरी सरकार खड़ी है, हर स्थिति में हर संभव हम मदद करेंगे।
0: प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में हादसे पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि राहत और बचाव कार्य के लिए प्रशासन की ओर से हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि और घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने घटनास्थल का निरीक्षण कर पूरे मामले पर पुलिस महानिदेशक और अपर मुख्य सचिव गृह को विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। साथ ही KGMU पहुंचकर मुख्यमंत्री ने घायलों का हाल जाना और समुचित इलाज के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, बसपा प्रमुख मायावती सहित कई नेताओं ने आग की घटना में जनहानि होने पर दुख व्यक्त किया है। मायावती ने इस तरह की घटनाओं पर रोकथाम के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने पर जोर दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज फिरोजाबाद में 658 करोड़ रुपए से अधिक की 81 और अलीगढ़ में 462 करोड़ रुपए की 85 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लाभार्थियों को चाबी और विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र, चेक और उपकरण वितरित किए। मुख्यमंत्री ने फिरोजाबाद के उद्यमियों और श्रमिकों की सराहना करते हुए कहा कि फिरोजाबाद का ग्लास उद्योग नवाचार का एक नया केंद्र बना है, इसने चीन को भी पछाड़ दिया है।
2: सनातन धर्म के अंदर बात होती है, हर सनातन धर्मावलंबी फिरोजाबाद की चूड़ियों की ओर देखता है, और सुहाग की इस नगरी को आज यहाँ का कारीगर, यहाँ का उद्यमी एक नई ऊंचाई दे रहा है। मैं उन्हें आश्वस्त करता हूँ, ये डबल इंजन की सरकार उनके साथ मिलकर के कार्य करेगी, उन्हें हर प्रकार से प्रोत्साहन उपलब्ध करवाएगी।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नागरिक अलंकरण वर्ष 2026 के दूसरे समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। कल के समारोह में 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और उत्तर प्रदेश की 4 हस्तियों समेत 56 हस्तियों को पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। पेश है एक रिपोर्ट।
3: उत्तर प्रदेश की जिन हस्तियों को कल पद्मश्री मिलेगा, उनमें कला के क्षेत्र में अनिल कुमार रस्तोगी और चिरंजी लाल यादव, शिक्षा के क्षेत्र में मंगला कपूर के नाम शामिल हैं, जबकि कृषि के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए मुरादाबाद के रहने वाले रघुपत सिंह को मरणोपरांत ये सम्मान दिया जाएगा। इससे पहले पिछले महीने 25 मई को श्रीमती मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित पहले नागरिक अलंकरण समारोह में 66 प्रतिष्ठित व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान किए थे। इस वर्ष राष्ट्रपति ने 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कारों सहित कुल 131 पद्म पुरस्कारों को स्वीकृति दी है। आकाशवाणी समाचार कक्ष से दीपाली सिंह।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं।

0: केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए प्रधानमंत्री के विजन को पूरा करने में वस्त्र मंत्रालय बड़ा योगदान निभाएगा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आज गाजियाबाद स्थित राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान निट्रा के 52वें स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में संस्थान की उपलब्धियों पर विस्तार से प्रकाश डाला। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री पवित्र मार्गरेट भी उपस्थित थीं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि आज भारत प्रत्येक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के साथ ही अन्य देशों की जरूरतों को पूरा कर रहा है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार अनुसंधान पर जोर देने के साथ ही स्टार्टअप को भी प्रोत्साहन दे रही है, जिसमें निट्रा महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
1: 2.5 लाख स्टार्टअप हो गए हर सेक्टर में है। कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जिसमें स्टार्टअप नहीं। कभी पंजाब का पराली लोगों के लिए एक समस्या थी, चाहे सीबीजी प्लांट लगे चाहे निट्रा उसे फाइबर में परिवर्तित कर दे पराली।
0: पीलीभीत के सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र प्रसाद के अनुरोध पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कासगंज लखनऊ एक्सप्रेसवे ट्रेन को मंजूरी दे दी है। मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने कहा कि इस नई ट्रेन के चल जाने से पीलीभीत के साथ ही लखीमपुर खीरी सीतापुर सहित संपूर्ण तराई क्षेत्र की वर्षों पुरानी मांग पूरी हो गई है। उन्होंने कहा कि ये ट्रेन बदायूं, बरेली, इज्जतनगर, पीलीभीत, पूरनपुर, मैलानी, गोला, गोकर्णनाथ, लखीमपुर, सीतापुर, सिधौली, मोहिबुल्लापुर होते हुए पीलीभीत को राजधानी लखनऊ से जोड़ेगी। श्री प्रसाद ने प्रधानमंत्री और रेल मंत्री का आभार जताते हुए कहा कि इस ट्रेन के संचालन से यहां का कार्य, व्यापार और पर्यटन भी बढ़ेगा। रेलवे गोंडा से गोंडा कचहरी के बीच 5 किलोमीटर लंबी तीसरी रेल लाइन को कमीशन करने के लिए अगले माह प्री इंटरलॉकिंग और नॉन इंटरलॉकिंग की प्रक्रिया पूरी करेगा। इस कारण गोंडा रूट होकर चलने वाली कई ट्रेनों को 7 से 11 जुलाई तक निरस्त किया जाएगा। वहीं कई ट्रेनों के रूट बदलेंगे। 6, 7 और 10 जुलाई को छपरा मथुरा एक्सप्रेस लखनऊ नहीं आएगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा आज से शुरू हुई। ये राष्ट्रीय स्तर की पात्रता परीक्षा कंप्यूटर आधारित टेस्ट सीबीटी माध्यम से 30 जून तक प्रतिदिन 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। यूजीसी नेट परीक्षा उन अभ्यर्थियों के लिए आयोजित की जाती है जो जूनियर रिसर्च फेलोशिप, जीआरएफ, सहायक प्रोफेसर के पदों और पीएचडी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पात्रता प्राप्त करना चाहते हैं। कुख्यात अपराधी ललन सिंह को कल रात सहारनपुर में उत्तर प्रदेश विशेष कार्यबल एसटीएफ ने मुठभेड़ में मार गिराया। उस पर 1,25,000 रुपए का इनाम था। उसके एक फरार साथी की तलाश में पुलिस की कई टीमें संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही हैं। प्रदेश में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। वहीं गोरखपुर, महाराजगंज और कुशीनगर समेत पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में गरज चमक के साथ हुई हल्की बारिश से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में देवरिया, गोरखपुर, संत कबीरनगर, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर और बलरामपुर समेत कई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना व्यक्त की है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लखनऊ में बहुमंजिला इमारत में चल रहे एनिमेशन सेंटर में आग लगने से 14 छात्रों की मौत, 4 गंभीर रूप से घायल। घटना की उच्च स्तरीय जांच का दिया गया आदेश। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर जताया दुख। मुख्यमंत्री, पुलिस महानिदेशक और अपर मुख्य सचिव गृह ने घटनास्थल का किया निरीक्षण। मुख्यमंत्री ने फिरोजाबाद और अलीगढ़ में विकास परियोजनाओं का किया शुभारंभ। कहा, नवाचार का नया केंद्र बना है फिरोजाबाद का ग्लास उद्योग। और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह गाजियाबाद में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान के 52वें स्थापना दिवस समारोह में हुए शामिल। कहा, 2047 तक विकसित भारत बनाने में वस्त्र मंत्रालय निभाएगा बड़ा योगदान। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: पापा, कॉलेज की फीस ज्यादा है।
3: बेटा,
4: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे?
3: 2 साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है।

0: शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
1: तो अब बैंक जाके या वीडियो केवाईसी से केवाईसी अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव एकदम फ्री। चलो
2: कहाँ
1: एडमिशन कराने, खाता हुआ एक्टिव।
3: आरबीआई कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। आपसे कुछ ही देर में आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम। पहले सुनते हैं लता मंगेशकर और उदित नारायण की आवाज़ में इस गीत को।
6: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें रविवार सुबह 11 बजे मन की बात।
7: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
8: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
7: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
8: अब घर दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
7: डायल कीजिए 8700014242।
8: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।

शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।

0: या से इस गीत को आइए सुनते हैं उदित नारायण और महालक्ष्मी की आवाज़ में फिल्म दिल से इस गीत को इस अंतराल के बाद।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
3: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
4: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
5: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे TV चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
4: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट।
5: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
4: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की।
5: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
4: For details log on to www.ddindia.com।

0: गंदगी को दूर भगाएं, साफ सफाई को अपनाएं।
1: अखबार, प्लास्टिक, कागज सबका सही ढंग से निपटान, स्वच्छता का संदेश फैलाएं, यही है हमारी पहचान।
0: स्वच्छता है जीवन की धारा, साफ सफाई संकल्प हमारा।
1: स्वच्छता अभियान सबकी जिम्मेदारी, स्वस्थ जीवन की है ये तैयारी।
2: अभिजीत के गाए फिल्म जोश के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का सफर यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 8 बज रहे हैं। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी कार्यक्रम। इसमें आज आप सुनेंगे वार्ता। वार्ता का विषय है बढ़ते तनाव और घटती खुशियाँ। वार्ताकार हैं डॉक्टर हरिओम मिश्र जी। आइए सुनते हैं हिंदी कार्यक्रम।
3: मानव जीवन के वास्तविक स्वरूप, महत्व और अंतिम लक्ष्य के संबंध में विश्व इतिहास में सदैव ही दो परस्पर विरोधी विचारधाराएं देखने को मिलती हैं। एक विचारधारा यह मानती है कि इस विश्व में सब कुछ क्षणभंगुर और नश्वर है, अतः इसके पीछे दौड़ना व्यर्थ है। विश्व को मिथ्या मानने वाली इस विचारधारा को हम आध्यात्मिक कह सकते हैं। इसके विपरीत जो दूसरी विचारधारा पाई जाती है वो भौतिकवाद से संबंधित है और इस विश्व को ही सत्य मानती है एवं जो कुछ भी संसाधन या सामग्री उपलब्ध है उसके सर्वोत्तम भोग पर बल देती है। हमारे यहाँ

भारतीय संस्कृति में इन दोनों ही परस्पर विरोधी विचारधाराओं का अद्भुत समन्वय देखने को मिलता है, जिसके अंतर्गत मानव जीवन के लक्ष्य के रूप में एक ओर धर्म और मोक्ष को स्थान दिया गया तो दूसरी ओर इस जगत के संचालन के लिए अर्थ एवं काम को भी वरीयता दी गई। साथ ही साथ व्यक्तित्व विकास से सामाजिक विकास की ओर बढ़ने के लिए जीवन में विभिन्न प्रकार के संस्कारों का समावेश किया गया। भारतीय समाज की पूरी व्यवस्था इस प्रकार से बनाई गई कि इसके अंतर्गत व्यक्ति की सभी अनिवार्य आवश्यकताएं तनाव मुक्त वातावरण में पूर्ण हो जाएं और यदि जीवन में कभी प्रतिकूल परिस्थितियां आएं तो व्यक्ति अपने परिवार, पड़ोस, नातेदार इत्यादि के संपर्क से ही इन प्रतिकूल परिस्थितियों से मुक्त हो जाए, क्योंकि समाज की संरचना में प्रेम, करुणा, दया, सहानुभूति, समर्पण इत्यादि आधार के रूप में स्थापित थे। परंतु पिछले कुछ दशकों या वास्तविक रूप से कहें तो अंग्रेजों के भारत में आने के बाद पश्चिमीकरण के रूप में एक नवीन विचारधारा का भारत में प्रसार होना प्रारंभ हुआ, जिसने भौतिकवाद को खुलेआम प्रश्रय दिया और इसके परिणाम स्वरूप औद्योगिकरण, नगरीकरण, वैश्वीकरण की प्रक्रियाओं ने भारतीय समाज को अपने आगोश में ले लिया। इन प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप देश ने आर्थिक क्षेत्र में काफ़ी प्रगति की, परंतु साथ ही भौतिक प्रगति की इस आंधी ने प्रेम, करुणा, दया, सहानुभूति, समर्पण, समता, सामूहिकता जैसे आधारभूत तत्वों को धीरे धीरे खत्म कर दिया और इनके स्थान पर व्यक्तिवाद एवं स्वार्थ को प्रश्रय दिया, जिसके चलते आज व्यक्ति धीरे धीरे मशीन के रूप में परिवर्तित होता जा रहा है एवं समाज में चारों ओर एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ लगी हुई है। जीवन में तनाव बढ़ता जा रहा है। सच्चाई तो यह है कि भौतिक प्रतिस्पर्धा के युग में व्यक्ति अपने लिए भी खुशी के कुछ पल नहीं ढूंढ पाता। आज व्यक्ति के जीवन चक्र की सभी प्रमुख अवस्थाएं जैसे बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था एवं वृद्धावस्था तनाव एवं द्वंद्व से ग्रस्त हैं। उदाहरण के लिए यदि बाल्यावस्था को लें तो जन्म के पश्चात लगभग 6 वर्ष तक बालक तनाव मुक्त जीवन जीता था। संयुक्त परिवार के बीच उसका आदर्श पालन पोषण एवं समाजीकरण होता था। मित्र मंडली एवं पड़ोस का उस पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता था, परंतु अब धीरे धीरे इन चीज़ों से वह दूर होता जा रहा है, क्योंकि अब परिवार, पति पत्नी और बच्चों तक सिमटता जा रहा है। भौतिकता की चमक दमक ने पति पत्नी दोनों को कमाऊ बना दिया है। परिणामतः जन्म के पश्चात कुछ समय तक बच्चे को आया के संरक्षण में और फिर डे केयर होम में छोड़ा जाने लगा है। इसके पश्चात ज्यों ही वह अपने पैरों पर खड़ा होना प्रारंभ करता है, उसे ज्ञान की खोज में विद्यालय में छोड़ दिया जाता है। अब तो 3-3 साल तक के बच्चों का विद्यालय जाना आम बात हो गया है और इन विद्यालयों में दाखिले के समय बच्चे और उनके अभिभावकों का इस प्रकार से टेस्ट लिया जाता है जैसे बच्चा IAS के इंटरव्यू में बैठा हो। माता पिता भी दाखिले की इस प्रक्रिया को अपने मान सम्मान व प्रतिष्ठा से देखते हैं और बच्चे पर, जो अभी ठीक से खड़ा होना भी नहीं जानता, अपनी उम्मीदों का पहाड़ थोप देते हैं। अधिकांश बच्चों में तो दाखिले की इस प्रक्रिया के कारण विद्यालय जाने से पूर्व ही मस्तिष्क में विद्यालय के प्रति भय बन जाता है और वो पूरी पढ़ाई के दौरान इस भय से बाहर नहीं निकल पाता। इस प्रकार बाल्यावस्था से ही अब बच्चे तनावयुक्त जीवन जीने को बाध्य हो रहे हैं। विद्यालय की बैग का बोझ और उस बैग से जुड़ी क्रियाकलाप तथा माता पिता की उम्मीदें कहीं ना कहीं बच्चों से उसका बचपन तो छीन ही रही हैं, अपितु उसे एक मशीनी जीवन की ओर ढकेल रही हैं। सुबह अलार्म घड़ी की आवाज़ के साथ उठने वाले आज के बच्चे घर से विद्यालय, विद्यालय से घर, फिर विद्यालय का काम, फिर घर से ट्यूशन, फिर ट्यूशन का काम, मनोरंजन के नाम पर TV, मोबाइल, कंप्यूटर इत्यादि से

ऐसे घिर गए हैं कि धीरे धीरे भावना शून्य होते जा रहे हैं। जीवन की प्रारंभिक अवस्था की इस भागम भाग, विद्यालय का बोझ व परीक्षा परिणाम की चिंता

0: मस्तिष्क में संघर्ष और विरोध चरम पर होता है। इस अवस्था में बच्चा प्रत्येक वस्तु के बारे में स्वयं निर्णय लेना चाहता है तथा अपनी एक अलग विचारधारा बनाना चाहता है। इस अवस्था में बच्चे को परिवार, पास पड़ोस, मित्र मंडली की सर्वाधिक आवश्यकता पड़ती है, परंतु इसके विपरीत वह यह पाता है कि सभी लोग भौतिकवादी चीज़ों के संग्रह में लिप्त हैं और उससे भी इन चीज़ों के संग्रह की उम्मीद करते हैं। अतः इस अवस्था में भी वह लोगों की उम्मीदों के पहाड़ों के नीचे दब सा जाता है और असफलता के भय के बीच तनावपूर्ण जीवन व्यतीत करता है। किशोरावस्था के पश्चात बच्चा युवावस्था में प्रवेश करता है, जहां उसे अब स्वयं के परिवार को बसाना होता है तथा आत्मनिर्भर बनते हुए रोजी व रोटी की व्यवस्था करनी होती है। इस अवस्था में भी भौतिकता की प्रधानता सर्वोपरि होती है, क्योंकि पहले जहां विवाह में संस्कार प्रमुख होता था, तो वहीं अब दिखावापन व दहेज प्रमुख हो गया है। जीवन साथी के चयन में पैसा निर्णायक बनता जा रहा है, साथ ही साथ रोजगार के चयन में भी पैसे को वरीयता दिया जाता है। व्यक्ति जो कार्य करना चाहता है वह कार्य न करके उस कार्य को करता है जिसमें पैसा अधिक हो। इस प्रकार भौतिकता के प्रभाव में न तो मनोनुकूल जीवन साथी की प्राप्ति होती है और न ही रोजगार। ये दोनों ही चीज़ें व्यक्ति को आजीवन तनाव देती रहती हैं, क्योंकि इनका आधार ही स्वार्थ होता है। आज विवाहेतर संबंध, तलाक, घरेलू हिंसा, यौन शोषण, दहेज हत्या, भ्रष्टाचार इत्यादि का एक प्रमुख कारण योग्य जीवनसाथी का अभाव व मनोनुकूल रोजगार का न मिलना है। युवावस्था के बाद व्यक्ति प्रौढ़ावस्था में प्रवेश करता है और अब वह स्वयं में माता पिता की भूमिका में होता है। इस अवस्था तक आते आते व्यक्ति भौतिक जगत में इतना लिप्त हो जाता है कि वह बाल्यावस्था, किशोरावस्था और युवावस्था में जिस तनाव का अनुभव कर चुका होता है, उससे बाहर निकलने के बजाय अपने बच्चों को भी उसी जीवन प्रणाली का हिस्सा बनाने लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वह पाता है कि समाज भी इसी प्रकार की जीवन प्रणाली की उम्मीद करता है। प्रौढ़ावस्था के पश्चात व्यक्ति वृद्धावस्था में प्रवेश करता है, जहां वह दादा दादी, नाना नानी इत्यादि भूमिकाओं में होता है और इस अवस्था में उसका जीवन की वास्तविकता से संपर्क होता है, क्योंकि उसकी उम्र अब ढल चुकी होती है, रोजगार से सेवानिवृत्त हो गया होता है, पराश्रितता बढ़ती जाती है, परिवार के प्रेम की आवश्यकता महसूस होती है, लेकिन उसके बच्चे अपने भौतिकता की चमक धमक में उसे अपने साथ रखने के बजाय वृद्धाश्रम में रखना अधिक बेहतर समझते हैं। और इस अवस्था में स्वयं को पाकर जहां व्यक्ति में तनाव चरम पर होता है, तो वहीं उसे एहसास होता है कि वास्तव में जो भौतिक चमक धमक है वह एक सीमा तक तो उचित है, लेकिन उसके पीछे पागल होना मानव की सबसे बड़ी भूल और तनाव का प्रमुख कारण है। इस प्रकार भौतिकतावाद के प्रभाव में आज व्यक्ति का संपूर्ण जीवन चक्र तनाव से बढ़ता जा रहा है और व्यक्ति के जीवन से खुशियां घटती सी जा रही हैं। निष्कर्षतः कह सकते हैं कि मानव जीवन के लिए भौतिक सुख सुविधाएँ एक साधन के रूप में हैं, जिनसे हमारा जीवन सरल बनता है, लेकिन धीरे धीरे मानव भौतिक सुख सुविधाओं को ही साध्य बनाता जा रहा है और इसका परिणाम है कि व्यक्ति तनाव, चिंता, गुस्सा, सिरदर्द, हताशा, अनिद्रा इत्यादि विभिन्न समस्याओं से ग्रस्त नजर आ रहा है। अतः इन समस्याओं के निराकरण के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति वैचारिकी में परिवर्तन लाए और संतोष की भावना का विकास करते हुए स्वयं के लिए समय निकाले एवं परिवार, पास पड़ोस, मित्र मंडली इत्यादि के साथ प्रेम, करुणा, दया, सहानुभूति जैसे मानवीय गुणों के साथ रहते हुए दिन प्रतिदिन की छोटी छोटी खुशियों को सहेजने का प्रयास करे व तनाव मुक्त जीवन व्यतीत करे।
1: अभी आप सुन रहे थे हिंदी कार्यक्रम, इसमें आज आपने सुना वार्ता। वार्ता का विषय था बढ़ते तनाव।

और घटती खुशियाँ। वार्ताकार थे डॉक्टर हरिओम मिश्र। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। आपसे कुछ ही देर में आप सुनेंगे सुगम संगीत का कार्यक्रम। इसमें आज आप सुनेंगे रूना लैला जी को। आइए सुनते हैं सुगम संगीत।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फेरिए माना। हर टन में ज्यादा लंबाई, ज्यादा फायदा, कम खर्च में ज्यादा निर्माण। RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।
3: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की DVDs और CDs हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये मारा।
3: डॉलकर ही नहीं, किनकर भी मिलता है, बच्चे भी खरीद सकते हैं।
4: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
5: पूर्वांचल का पहला इनोवेशन सेंटर KIPM गीड़ा से करें अपने सपने साकार। BTech पॉलिटेक्निक MBA MCA BBA BCA B फार्मा M फार्मा और D फार्मा में एडमिशन्स ओपन। KIPM गीड़ा गोरखपुर।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार सुबह 11 बजे मन की बात।

0: अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत का कार्यक्रम। इसमें आज आपने सुना रूना लैला जी को, और इसी के साथ समय हो चला है समाचारों का, जो अब से कुछ ही देर में हमारे दिल्ली केंद्र से प्रस्तुत किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। उत्तर प्रदेश के लखनऊ कोचिंग सेंटर में आग लगने से 15 लोगों की मौत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। उद्धव ठाकरे गुट वाले शिवसेना के 6 लोकसभा सदस्य शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट में शामिल। भारतीय रेलवे ने पूर्वी तट रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच को मंजूरी दी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने लेबर पार्टी में असंतोष के बाद इस्तीफे की घोषणा की। आईएसएसएफ जूनियर निशानेबाजी विश्व कप में प्रीतम केंद्रे ने स्वर्ण पदक सहित भारतीय निशानेबाजों ने 4 और पदक जीते। तालिका में भारत शीर्ष पर। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात अर्जेंटीना का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। अब समाचार विस्तार से। लखनऊ के अलीगंज इलाके में आज दोपहर एक भीषण आग की घटना में 15 लोगों की मौत हो गई। इनमें ज्यादातर 16 से 18 वर्ष के छात्र थे। अलीगंज के पुरानिया इलाके में एक दुकान के ऊपर चल रहे एनिमेशन कोचिंग सेंटर में आग लग गई। 4 छात्र घायल हो गए हैं, जिन्हें लखनऊ के केजीएमसी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक रिपोर्ट।
2: आग इमारत में अंदर से लगी और तेजी से फैल गई, जिससे लोग अंदर ही फंस गए।

0: फायर ब्रिगेड, पुलिसकर्मी, SDRF और जिला प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और बचाव और राहत अभियान शुरू किया। कुछ लोगों ने पहली मंजिल से कूदकर अपनी जान बचाने की भी कोशिश की। बचाव दल दीवार तोड़कर इमारत में दाखिल हुआ और लोगों को बाहर निकालने में भी कामयाब रहा। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने कहा कि राज्य के DGP और अपर मुख्य सचिव गृह की उच्च स्तरीय समिति मामले की जांच करेगी।
1: घटना की उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दे दिए हैं। प्रमुख सचिव गृह DGP मौके पर बुलाया गया है और उनको निर्देश दिए कि घटना के कारणों की जांच और घटना ऐसे घटी भविष्य में न घटने इसके कड़ी कार्रवाई करें।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।
2: मैं उन सभी परिजनों के प्रति जिन्होंने अपने परिवार के उन नौजवानों को खोया है, उनके प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं और इस पूरे मामले के लिए मैंने उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक और अपर मुख्य सचिव गृह को भी कहा है कि वे स्वयं मौके पे जाकर के इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करें, जिससे इस पूरे मामले की तह में हम जाकर के दोषियों को सजा दे सकें।
0: अलीगढ़ और फिरोजाबाद जिलों का अपना दौरा अधूरा छोड़कर लखनऊ लौटे मुख्यमंत्री ने घटना स्थल का निरीक्षण किया और अस्पताल में घायलों से भी मुलाकात की। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय एक निजी समाचार चैनल के कार्यक्रम ग्रेट पावर इंडिया नेशन फर्स्ट को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
4: निभाया देश के नागरिकों को मैं सलाम करता हूं। साथियों, यहां हमारे साथी सिद्धर बैंबू जी बैठे हैं। जब हमारे उद्यमी नेशन फर्स्ट की भावना के साथ चलते हैं, जब वो देश की आवश्यकताओं को समझते हुए अपने लक्ष्य बनाते हैं, तो संस्थाएं भी बनती हैं और देश भी समृद्ध होता है। सिद्धार्थ बैंबू जी ने क्या काम किया है, शायद यहां बातों में कितना निकला होगा मुझे मालूम नहीं, लेकिन अभी मैं फ्रांस में विवाटेक में गया था। करीब 1.5-2 लाख नौजवान वहां होंगे। चलने के लिए भी मैं और फ्रांस के राष्ट्रपति अलग अलग स्टॉल पे जा रहे थे, देखने के लिए भी नौजवानों ने क्या काम किया है। तो हम जोहो के स्टॉल पे गए, मैं हैरान था जी और गर्व होता था कि जोहो के स्टॉल पर यूरोप के नौजवानों की जो भीड़ लगी थी और वो समझना चाहते हैं कि ये क्या है दुनिया में नई चीज। भारत में शायद उतनी चर्चा नहीं होगी जितनी मैंने वहां फ्रांस में देखी।
3: शिवसेना नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आज घोषणा की कि शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के 6 लोकसभा सांसद उनकी पार्टी शिवसेना में शामिल हो गए हैं। श्री शिंदे ने इन सभी सांसदों का पार्टी में स्वागत किया। मुंबई में संवाददाताओं से बातचीत में श्री शिंदे ने कहा कि आज का दिन शिवसेना के लिए ऐतिहासिक है।
5: आज का दिन शिवसेना के लिए ऐतिहासिक दिन है। हमारे 6,000 शिवसेना में शामिल हुए हैं, इससे शिवसेना की ताकत बढ़ रही है। शिवसेना सेकंड लार्जेस्ट पार्टी महाराष्ट्र में हो चुकी है और ये डबल इंजन की सरकार है। महाराष्ट्र को आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी बहुत बड़े पैमाने पे सहयोग कर रहे हैं, इसलिए विकास हो रहा है।
3: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। भारतीय रेलवे ने पूर्वी तट रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच को मंजूरी दे दी है। इससे सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार होगा।
6: रेल मंत्रालय ने बताया कि इस परियोजना में पूर्वी तट रेलवे के 6 महत्वपूर्ण खंड शामिल हैं। इनमें बागुआपाला बुद्धापंक, हरिदासपुर पारादीप, खुर्दा रोड बलंगीर, नौपाड़ा गुनुपुर, लांजीगढ़ रोड जूनागढ़ और बोबिल्ली सालूर शामिल हैं। इन मार्गों पर कवच की स्थापना से स्वचालित रेल सुरक्षा और किसी भी तरह की टक्कर से बचाव की क्षमता प्रदान करके रेलगाड़ी संचालन में उच्च स्तर की सुरक्षा प्राप्त करने में मदद मिलेगी। मंत्रालय ने कहा कि इस परियोजना से पूर्वी तट रेलवे द्वारा सेवा प्रदान किए जाने वाले ओडिशा और पड़ोसी क्षेत्रों के प्रमुख खंडों पर यात्री और मालगाड़ी दोनों के संचालन को लाभ होने की उम्मीद है। यह भीड़भाड़ और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मार्गों पर कवच का विस्तार करने के उद्देश्य से जारी रेलवे के अभियान को मजबूती भी प्रदान करेगा। सौम्या की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।

0: पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। रोजगार और जन कल्याण को बढ़ावा देते हुए राज्य के विभिन्न विभागों में 1,00,000 खाली पदों पर नियुक्ति की घोषणा की गई है।
1: वित्त मंत्री डॉक्टर शपन दासगुप्ता ने आज 4,00,000 करोड़ रुपए से अधिक का राज्य बजट प्रस्तुत किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने इसे विकसित भारत के साथ विकसित बंगाल के निर्माण का बजट बताया। बजट में राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को 18% से बढ़ाकर 38% करने की घोषणा की गई। महिला सुरक्षा के लिए सभी थानों में नारी सहायता डेस्क और दुर्गा सुरक्षा स्क्वाड बनाया जाएगा। दार्जिलिंग और गंगा सागर को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। काश्मीर नहार, आकाशवाणी समाचार, कोलकाता।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज मंगोलिया के उलानबतार में मंगोलिया के राष्ट्रपति खुरेलसुख उखना से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पिछले साल श्री उखना की भारत यात्रा ने भारत मंगोलिया रणनीतिक साझेदारी को मजबूती प्रदान की थी। उन्होंने मुलाकात के दौरान मंगोलिया के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुभकामनाएं दी। इससे पहले दिन में विदेश मंत्री ने उलानबतार में मंगोलिया के विदेश मंत्री बचनमुख से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चर्चाओं में भारत मंगोलिया रणनीतिक साझेदारी मजबूती और संभावनाओं पर बात की गई। दोनों नेताओं ने विकास परियोजनाओं, क्षमता निर्माण, संस्कृति, शिक्षा, सुरक्षा और बहुपक्षीय मंचों में द्विपक्षीय सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में इसराइल के रक्षा मंत्रालय के महानिदेशक सेवानिवृत्त मेजर जनरल अमीर बराम से मुलाकात की। रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि श्री बराम ने राजनाथ सिंह को दोनों देशों के विशेष रणनीतिक साझेदारी में भारत इसराइल रक्षा सहयोग को बढ़ाने के लिए इसराइल की प्रतिबद्धता से अवगत कराया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आज 16वीं ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बैठक से इतर नई दिल्ली में ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार परिषद के रक्षा मामलों के उपसचिव गादिर निजामीपुर से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्षों ने पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति की समीक्षा की। श्री डोभाल ने इथियोपिया की राष्ट्रीय खुफिया सुरक्षा सेवा के विश्लेषण कार्यकारी निदेशक मिलियन लेमा तेदेसा से भी मुलाकात की। श्री डोभाल ने ब्राजील के बहुपक्षीय और राजनीतिक मामलों के सचिव कार्लोस कोजेंडे से भी मुलाकात की। दोनों पक्षों ने ब्रिक्स ढांचे के तहत भारत और ब्राजील के बीच सहयोग का स्वागत किया। गृह राज्य मंत्री बंडी संजय कुमार ने कहा है कि राष्ट्रीय विकास में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF की बहुत बड़ी भूमिका है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र के आर्थिक विकास में CISF के जवानों का बड़ा योगदान होता है। नई दिल्ली में आज CISF के नए मुख्यालय भवन की आधारशिला रखते हुए उन्होंने ये बात कही। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज नई दिल्ली में पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के संवादात्मक सत्र में भाग लिया। श्री शेखावत ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र का विकास लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन का साधन है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार रोजगार, विकास और समृद्धि के नए अवसर पैदा कर रही है। केंद्र सरकार ने आज सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने उन निजी छात्रों के मूल्यांकन के लिए एक नई नीति बनाई है जो हाल ही में ईरान अमेरिका संघर्ष के कारण खाड़ी देशों में कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा रद्द होने से प्रभावित हुए थे। न्यायमूर्ति SVN भट्टी और विपुल एम पंचोले की पीठ को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि क्षेत्रीय संघर्ष के कारण खाड़ी देशों में परीक्षा रद्द होने से प्रभावित छात्रों की चिंताओं को दूर करने के लिए नई अखिल भारतीय नीति तैयार की गई है। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ NEFED के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। पोर्टल का शुभारंभ नीलामी प्रक्रिया में पारदर्शिता, दक्षता और सुगम संचालन को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। झारखंड में पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के विभिन्न हिस्सों में बिजली गिरने से 8 लोगों की मृत्यु हो गई और एक दर्जन से अधिक लोग घायल हुए। मृतकों में CPI के एक नेता, एक वार्ड सदस्य, एक किसान और अन्य निवासी शामिल हैं। घायलों को इलाज के लिए विभिन्न जिलों के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे NewsOnAIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने प्रधानमंत्री और लेबर पार्टी के नेता पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। अपनी ही पार्टी

0: के भीतर बढ़ते दबाव के बीच उन्होंने डाउनिंग स्ट्रीट में अपना कार्यालय समाप्त किया अपना कार्यकाल समाप्त किया। इस्तीफे का बयान देने से पहले स्टार्मर अपनी पत्नी के साथ 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर निकले, जहां लोगों ने उनका उत्साह के साथ स्वागत किया और तालियां बजाई। श्री स्टार्मर ने कहा कि सितंबर में संसद के सत्र के शुरू होने से पहले जब तक नया नेता नहीं चुन लिया जाता, तब तक वे पद पर बने रहेंगे।
1: Every decision I've taken,
2: मैंने जो भी फैसले लिए हैं उनमें हमेशा अपने देश को प्राथमिकता दी है, जिससे मैं प्यार करता हूं। इसीलिए मैं लेबर पार्टी के नेता का पद छोड़ रहा हूं। मैंने आज सुबह ब्रिटेन नरेश से बात करके उन्हें अपने फैसले के बारे में बता दिया है। अगर मुकाबले की स्थिति बनती है तो निश्चित रूप से सितंबर में संसद सत्र शुरू होने से पहले पार्टी का नेता चुन लिया जाए। प्रक्रिया पूरी होने तक मैं प्रधानमंत्री के पद पर बना रहूंगा।
0: कतर के औद्योगिक क्षेत्र रस लाफान में आज हुए विस्फोट में 13 लोगों की मौत हो गई, इनमें कुछ भारतीय नागरिक भी शामिल हैं। कतर के ऊर्जा मंत्री साद बिन श्रीदा अलकाबी ने बताया कि कल शाम बरजान स्थानीय गैस आपूर्ति संयंत्र में विस्फोट के कारण लगी आग में 66 लोग घायल हो गए। जर्मनी के सुहल में ISSF जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में आज भारत के प्रीतम केंद्रे ने 10 मीटर एयर राइफल पुरुष स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। वहीं 25 मीटर पिस्टल टीम स्पर्धा में महिलाओं और पुरुषों ने कांस्य पदक जीते। प्रतियोगिता में भारतीय निशानेबाजों ने आज अलग अलग स्पर्धाओं में 4 पदक हासिल किए। भारत 5 स्वर्ण 1 रजत और 6 कांस्य पदक के साथ तालिका में शीर्ष पर है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप जे के मुकाबले में आज अर्जेंटीना ऑस्ट्रिया आमने सामने होंगे। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 10:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं ग्रुप आई में फ्रांस का सामना इराक से होगा। प्रतियोगिता के अन्य मुकाबलों में मिस्र और स्पेन ने शानदार जीत दर्ज की। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक।
3: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 291 अंक बढ़कर 77,094 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 90 अंक बढ़त के साथ 24,103 दर्ज हुआ। और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया 35 पैसे कमजोर होकर ₹94.68 पर बंद हुआ।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के एक कोचिंग सेंटर में आग की घटना में 15 लोगों की मौत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था होने के साथ ही भरोसेमंद विश्व शक्ति के रूप में उभर रहा है। उद्धव ठाकरे गुट वाले शिवसेना के 6 लोकसभा सदस्य शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट में शामिल। भारतीय रेलवे ने पूर्वी तट रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच को मंजूरी दी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर की लेबर पार्टी में असंतोष के बाद इस्तीफे की घोषणा। ISSF जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में प्रीतम केंद्रे के स्वर्ण पदक सहित भारतीय निशानेबाजों ने 4 और पदक जीते। तालिका में भारत शीर्ष पर। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात अर्जेंटीना का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: नमस्कार श्रोताओं, पब्लिक स्पीक में आपका स्वागत है। आज मैं हूं आपके साथ प्रियंका अरोड़ा। रोजगार केवल आजीविका का साधन नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता, सम्मान और राष्ट्र निर्माण की आधारशिला भी है। जब युवाओं को अवसर मिलते हैं तो न केवल उनका भविष्य संवरता है बल्कि देश की प्रगति को भी नई गति मिलती है। इसी सोच के साथ सरकार ने रोजगार सृजन को बढ़ावा देने और युवाओं को औपचारिक रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा से जोड़ने के उद्देश्य से पिछले वर्ष प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना की शुरुआत की। पिछले सप्ताह ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना के अंतर्गत 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित की। ये योजना विकसित भारत के संकल्प को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। क्या है ये योजना, इससे युवाओं, कर्मचारियों और नियोक्ताओं को क्या लाभ होगा, इन्हीं सब महत्वपूर्ण सवालों के जवाब आज हम तलाशेंगे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में। हमारा विषय है प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर। इस पर हमारे साथ चर्चा के लिए स्टूडियो में उपस्थित हैं कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ में अपर केंद्रीय आयुक्त पूर्णेंदु भूषण वर्मा और क्षेत्रीय आयुक्त प्रणित जोशी। आप दोनों का स्वागत है कार्यक्रम में।
1: नमस्कार।
0: श्रोताओं, स्टूडियो की फोन लाइंस खुली हैं। आप हमारे स्टूडियो नंबर 011 जो दिल्ली का कोड है उसके बाद 2331-04-81 या 2371-7117 या 2371-7106 और 2331-44-44 पर फोन करके अपने सवाल पूछ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है 9289-09-4044। इस पर आप प्रश्न भेज सकते हैं और ट्विटर

0: हैंडल है @AIRNewsAlerts पर #AskAIR के जरिए आपके जो भी सवाल हैं और शंकाएं हैं पूछ सकते हैं। तो आगाज़ करते हैं कार्यक्रम का। सबसे पहले पूर्णेंदु जी, आपसे जानना चाहूँगी कि PM विकसित भारत रोजगार योजना क्या है और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी?
1: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना एक ऐसी योजना है जो कि यहाँ हमारे फॉर्मल सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए, वर्कफोर्स को फॉर्मलाइज करने के लिए, सोशल सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए और फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट को इनकरेज करने के लिए एक सरकार ने एक इंसेंटिव स्कीम जारी की है। ये इंसेंटिव स्कीम इनफैक्ट 1 जुलाई 2025 से शुरू होकर अभी अगले 2 साल के लिए रहेगी और इस इंसेंटिव स्कीम में एम्प्लॉयर एम्प्लॉई दोनों को इंसेंटिव दे रही है भारत सरकार, जिससे कि एम्प्लॉयमेंट जो भी जनरेट हो रहा है उसको एक बढ़ावा मिले और जो एम्प्लॉयज़ किसी भी एम्प्लॉयर के साथ जुड़ रहे हैं वो वहाँ पे कुछ 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए सस्टेन्ड एम्प्लॉयमेंट बनी रहे।
0: जी प्रणत जी, आपसे जानना चाहूँगी कि EPFO बहुत मेजर रोल निभा रहा है, क्या है, अपने श्रोताओं को इस बारे में बताएं।
2: हाँ, सो ये स्कीम जो है भारत सरकार ने इसकी जिम्मेदारी EPFO को सौंपा है। तो EPFO इंडिया एंड वर्ल्ड के वन ऑफ द लार्जेस्ट सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है। तो हमारे यहाँ जो फॉर्मल एम्प्लॉयज़ है, लगभग 8 करोड़ फॉर्मल एम्प्लॉयज़ हमारे यहाँ कवर्ड है। तो ये स्कीम में जो भी बेनिफिट्स हैं वो EPFO के थ्रू हम देने की प्रयास कर रहे हैं। तो इसमें कोई द बेस्ट पार्ट इज़ इसमें कोई एडिशनल कंप्लायंस की रिक्वायरमेंट नहीं है आइदर फॉर एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयर्स। डायरेक्टली EPFO एनरोलमेंट से ही सारे बेनिफिट्स हम लोग ऑटोमेटिकली सिस्टम कैलकुलेट करके इनको दी जाएगी।
0: ये तो एक तरह से मध्यस्थता का काम कर रहा है EPFO, नियोक्ता और जो कर्मचारी के बीच में। हमारे पहले श्रोता जुड़ गए हैं रायबरेली उत्तर प्रदेश से, रमा शंकर वाजपेयी जी।
3: नमस्कार,
0: सवाल पूछे अपना।
3: हाँ, विकसित भारत के अंतर प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत कितने लोगों को रोजगार मिला और किस तरह का रोजगार मिला?
2: हाँ रमाशंकर जी, ये स्कीम 1 अगस्त 2025 से शुरू हुआ है। तो अभी तक लगभग 70 लाख युवा फर्स्ट टाइम एम्प्लॉय जो पहली बार फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट में आए हैं, लगभग 70 लाख से ज्यादा लोग हमसे जुड़े हैं। इसमें लगभग 13.29 लाख तक का बेनिफिट अभी हमने उनको, इन्होंने 6 महीने कंप्लीट कर चुके हैं। तो इनका पहला किस्त का जो बेनिफिट है हमने उनको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से उनके डायरेक्टली बैंक अकाउंट्स में ट्रांसफर कर दिए।
0: जी पूर्णेंदु जी, आपने इंसेंटिव्स की बात की थी, तो इंसेंटिव्स जो, अगर मैं सबसे पहले कर्मचारी जो पहली बार जो नौकरी पाने वाले हैं तो उनको क्या मिलता है, किस तरह से मिलता है, ये बताएं।
1: कर्मचारियों के लिए जो यहाँ पे बेनिफिट मिलती है इस स्कीम में वो है जो पहले 6 महीने तक अगर कोई भी कर्मचारी किसी भी संस्थान को ज्वाइन करने के बाद वहाँ रह जाता है तो उनका जो एवरेज वेज होता है उसका आधा सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम ऑफ 15,000 रुपये, तो ये पूरा बेनिफिट हो गया। पहले 6 महीने में उनको 7,500 रुपये तक मिलते हैं और अगले 6 महीने तक अगर वो एक हमारे यहाँ पे वो लिटरेसी कोर्स उनको करना पड़ता है, 6 महीने के बाद अगर उन्होंने वो कंप्लीट कर लिया और लगातार वहीं एम्प्लॉयड रह गए तो उनको 12 महीने के बाद 15,000 रुपये तक की राशि दी जाती है।
0: तो 6 महीने के बाद और फिर 6 महीने,
1: 6 महीने के दो बार दिया
0: जाता है। आगे भी चर्चा करते हैं, पहले अपने श्रोता का सवाल पूछ लेते हैं। हिमाचल प्रदेश के शिमला से हैं राकेश जी।
4: जी नमस्कार।
0: नमस्कार
4: जी, तो मेरा एक प्रश्न ये है कि जो प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना है तो इसमें हमें क्या क्या प्रावधान रखना पड़ता है और इसके लिए हमें फॉर्म किस तरह से भरना पड़ता है, ये मेरा प्रश्न है।
1: राकेश जी, आपको कोई भी फॉर्म नहीं भरना पड़ता, आपको केवल EPFO के साथ जुड़ना पड़ता है। EPFO के साथ जुड़ने के लिए जो EPFO में कवरेज के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट है वो आपकी कंपनी जहाँ पे भी आप काम कर रहे हो, जो भी संस्थान हो जहाँ आप काम कर रहे हैं वो अगर EPF में कवर्ड हैं, और जो बिल्कुल नए लोग अगर आ रहे हैं उस कंपनी में जो 1 अगस्त 2025 के पहले कहीं भी हमारे EPFO से जुड़े हुए नहीं थे तो वैसे लोगों के लिए एक इंसेंटिव है। और इसलिए इसमें कोई अलग से आपको कार्रवाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर EPF में आप किसी भी एम्प्लॉई का कंप्लायंस हो रहा है तो वैसे लोगों को ऑटोमेटिकली इसका बेनिफिट मिल जाता है।
0: जी अगर हम नियोक्ता की बात करें तो उनको इस योजना से क्या लाभ मिलेगा और जो इसमें उनको भाग लेने के लिए कैसे प्रोत्साहित किया जा रहा है, खासकर जैसे अगर कोई कंपनी है।

0: अगर वो हाल फिलहाल में ज्वाइन किया, उसने EPFO में रजिस्टर किया है या स्टार्टअप है नया, तो उन सब के लिए क्या प्रावधान है?
1: कंपनी के लिए दो तीन चीज़ें आवश्यक हैं। पहला, अगर वो EPFO में कवर्ड नहीं है तो पहला तो उनका कवरेज ज़रूरत होगी यहाँ EPFO में। साथ ही उनके जितने भी एम्प्लॉई हैं, जो नए एम्प्लॉई आके ज्वाइन कर रहे हैं उनके बेसिस पे, और जो पुराने एम्प्लॉई जो भी हैं जो कहीं और से आके उनके यहाँ जुड़ रहे हैं, इन्हें हम कहते हैं फर्स्ट टाइमर एंड रीज्वाइनिंग, तो दोनों के नंबर को जोड़ा जाता है। और जो इंसेंटिव है, अगर 10,000 रुपये तक की सैलरी है एम्प्लॉई की तो उसमें 1,000 रुपये, अगर 20,000 रुपये तक की सैलरी है 10 से 20,000 तो 2,000 रुपये, और अगर 20,000 से लेकर और 1,00,000 रुपये तक की अगर सैलरी है तो 3,000 रुपये का इंसेंटिव एम्प्लॉयर को मिलता है। और ये एम्प्लॉयर को ये प्रत्येक महीने जैसे मिलता जाएगा, अभी पहले 6 महीने किसी का सस्टेंड एम्प्लॉयमेंट हुआ, फिर अगले महीने भी किसी न किसी का 6 महीने होगा, तो वैसे उनको बेनिफिट मिलता रहेगा।
0: DBT के थ्रू ही
1: ये सारे बेनिफिट एम्प्लॉयर को DBT के थ्रू मिलेगा। जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो केवल एक ही होती है, एक EPF में कवर्ड हो, दूसरा उनका जो पैन डिटेल्स है वो हम लेते हैं उनके, क्योंकि हम पैन से जो लिंक्ड उनका बैंक अकाउंट होते हैं उसमें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होती है, DBT एम्प्लॉयज के लिए होती है।
0: जी, हरिद्वार से जुड़े हैं रवि जी।
2: हाँ जी, नमस्कार मैम जी।
0: नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में।
2: हाँ जी, थैंक यू, और महानुभव विशेषज्ञ को भी नमस्कार।
1: नमस्कार
2: जी। सर, मैं जानना चाहता हूँ, सर ये प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना है सर, इसके लिए जो ये एक युवा है वो मतलब क्या क्वालिफिकेशन होकर मतलब इस योजना का हिस्सा बन सकता है, मतलब इस योजना से लाभ उठा सकते हैं, इसमें एक युवा की क्या मतलब क्वालिफिकेशन,
0: क्या पात्रता क्या होनी चाहिए? हाँ,
3: रवि जी, इसमें जैसे कि पूर्णेंदु जी भी पहले बताया कि इसमें कोई एडिशनल डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत नहीं है, आपको बस EPFO के साथ जुड़ना पड़ेगा। तो अगर पहली बार आपकी संस्था में आप ज्वाइन कर रहे हैं, पहली नौकरी में ज्वाइन कर रहे हैं, कोई युवा अगर कोई ज्वाइन कर रहे हैं, तो इनको फेशियल ऑथेंटिकेशन के माध्यम से उमंग ऐप जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उस ऐप में उनको एक नंबर दिया जाएगा, उसको हम लोग UAN कहते हैं, और उसके बाद 6 महीने अगर उसी संस्था के साथ आप जुड़े हैं और आपका जो जो ग्रॉस वेजेस है आपका जो सैलरी है वो 1,00,000 से कम होना चाहिए, उनके लिए एक स्कीम है, तो 6 महीने के बाद आपको पहला किस्त 7,500 तक दिया जाएगा, और उसके बाद एडिशनल 6 मंथ्स के बाद आपको दूसरा किस्त दिया जाएगा।
0: जब एम्प्लॉयर्स की बात आगे कंटिन्यू रखते हैं, जैसे मैंने पूछा कोई नया अगर स्टार्टअप आया है और 50 से कम अगर उसके एम्प्लॉयज़ हैं या 50 से ज़्यादा हैं, तो उन सब के लिए भी कुछ कंडीशंस हैं अलग अलग कि मिनिमम आपके पास अगर आपको इतने रखने होंगे, EPFO में रजिस्टर होना होगा, तभी आप इसका लाभ ले सकते हैं।
1: जी, एक स्कीम की सबसे प्राइमरी कंडीशंस में से एक ये है कि आपने एडिशनल एम्प्लॉयमेंट उस संस्थान ने कितना जनरेट किया है। तो उसने अगर किसी के पास 50 से कम एम्प्लॉई हैं, अगर उन्होंने मिनिमम 2 भी एम्प्लॉई को जनरेट कर दिया, एडिशनल एम्प्लॉयमेंट अगर नया आ गया, और अगर 50 से ज़्यादा उस संस्थान के सदस्य हैं, तो वैसे केसेस में 5 उनको कम से कम एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना होगा, तभी वो इसके लिए पात्रता के भागी होंगे। लेकिन साथ में एक और चीज़ बता दूँ आपको कि जहाँ पे एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयर का जो टोटल हमारा कॉन्सेप्ट है वो है हमारे ECR पे, जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक चालान कम रिटर्न होता है। तो न केवल ये कितना उसका थ्रेशोल्ड पॉइंट होगा, 2 आदमी होंगे या 5 आदमी होंगे, बल्कि इन लोगों के लिए कंप्लायंस भी रिक्वायर्ड होगा 6 महीने के लिए।
0: हाँ,
1: तो लगातार अगर कंप्लायंस आएगी 6 महीने, तभी EPFO को पता चलेगा कि ये एम्प्लॉय इनके साथ जुड़े हुए थे, उनका वेज कितना था और कितने रुपए के इंसेंटिव के हकदार हैं। जो थ्रेशोल्ड का एक और दूसरा भी कंपोनेंट है हमारा कि जो नेट एम्प्लॉयमेंट है कितना जनरेट हुआ, उसका हम लोगों ने एक रखा हुआ है, जो एक पर्टिकुलर पीरियड हमने माना हुआ है, राइट। एक पीरियड है कि अगर अगस्त के पहले, अगस्त 2025 के पहले अगर कोई भी इस संस्थान हमारे साथ जुड़ी हुई थी, तो उसको हम तभी मानते हैं, उसके पिछले 12 महीने का एवरेज देखते हैं कि कितने लोग थे, और वहाँ से फिर उसका वो एवरेज हो गया बेसलाइन जिसे हम कहते हैं, तो बेसलाइन से कितना बढ़ रहा है। अगर अगस्त 2025 के बाद कोई भी संस्थान है तो उसका बेसलाइन होगा हमारा वो 20 रहेगा मिनिमम, वहाँ पे एवरेज हो गया, यहाँ पे 20 हो गया, तो उस बेसलाइन के बाद फिर हम उसको आगे काउंट करते हैं।
0: छोटी छोटी चीजें देखी जाएंगी और तभी इंसेंटिव के आप पात्र बनेंगे। बिहार से जुड़े हैं।

0: हिमांशु जी, हिमांशु जी आप आवाज सुन पा रहे हैं? आपसे अनुरोध है कि अपने जो आपका रेडियो है सेट है उसकी आवाज कम कर दें।
1: मैडम कर दिया मैंने,
0: जी जी
1: कर दिया कर दिया।
0: सवाल
1: मैडम मेरा ये सवाल था कि क्या मैं अभी भी एम्प्लॉयमेंट में हूँ NIC मुजफ्फरपुर में, ठीक है
0: जी,
1: लेकिन थर्ड पार्टी जो मुझे पेमेंट कर रही है तो ये जो एम्प्लॉयमेंट के ये मेरा जो है EPF नहीं कट रहा है मैम, तो क्या हम लोग लेकिन पहले से जो कंपनी हमारी थी उनके द्वारा मेरा जो EPF कटा हुआ है तो क्या हम लोग इसमें इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं है?
0: जी पुनेंद्र जी,
2: हाँ इसके लिए सबसे पहली चीज़ है कि आपको बिल्कुल नए एम्प्लॉई होना पड़ेगा। आप चूंकि पहले से EPF से जुड़े हुए हैं तो जो एम्प्लॉयज़ को जो बेनिफिट मिलती है उसमें आप हकदार नहीं होते हैं, लेकिन जो एम्प्लॉयर है अगर आप कहीं भी और दूसरी जगह पे ज्वाइन करते हैं तो उसको एज रीज्वाइनी हम लोग उन आपके जो भी यहाँ पे ज्वाइन करने के हिसाब से तो एम्प्लॉयर को इंसेंटिव मिलेगा।
0: महाराष्ट्र के ठाणे से जुड़े हैं गुरुनाथ जी। हेलो,
3: हाँ जी मैम नमस्कार।
0: नमस्कार,
3: मैं गुरुनाथ बोल रहा हूँ ठाणे महाराष्ट्र।
0: जी जी,
3: हाँ मैम मेरा क्वेश्चन है जैसे EPFO में जो नई कंपनियाँ होती है जैसे ज्वाइंट होते लेकिन एम्प्लॉयज का पैसा तो कटता है, तो कभी कभी ये देखा गया है कि सही तरीके से पैसा वहाँ पे जमा नहीं हो पाया है, फ्रॉड कभी कभी फ्रॉड भी देखा जाता है, गड़बड़ी देखी जाती है उसमें, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए। और सही मतलब जो पैसा सैलरी से कट जाता है एम्प्लॉयज का जिस कंपनी से, तो वो जमा हुआ है कि नहीं ये जो ऑर्गेनाइजेशन में, तो ये कैसे चेक करें? थैंक यू
0: जी। प्रणय जी,
4: गुरुनाथ जी ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। जो एम्प्लॉयज से जो एम्प्लॉयर पैसे काटता है PF जमा करने के लिए, अगर वो एम्प्लॉयर PF जमा नहीं करता है तो वो एक क्रिमिनल ऑफेंस माना जाएगा एंड उस एम्प्लॉयर को एक क्रिमिनल ऑफेंस के अंदर उनको जेल भी भेजा जा सकता है। तो अभी इसमें ये सवाल है कि इसमें आप कैसे चेक कर सकते हैं, तो आपका जो पासबुक है आप अपने पासबुक में आप चेक कर सकते हैं हर महीने की जो आपका अमाउंट कट रहा है वो सही से जमा हो रहा है नहीं है, एंड उसमें पासबुक में आपको ये भी दिखेगा कि आपका इंटरेस्ट कितना जमा हुआ है और टोटल कितना अमाउंट है, तो आपके लॉगिन या फिर आप उमंग ऐप से भी आपका पासबुक आप देख सकते हैं इसमें।
0: जी, बिहार के सासाराम से जुड़े हैं अमित उपाध्याय जी।
5: नमस्कार, मेरा ये सवाल था, सभी विशेषज्ञों को मेरा नमस्कार, कि जैसे कि हम लोग जो अभी 2025 से जो अभी लागू हुआ है 1 अगस्त, उससे पहले जितने भी जैसे कि अलग अलग कंपनी में जो लोग जॉब करते हैं या बीच में कहीं छूट जाता है, तो कैसे वो मालूम चलेगा कि उनका PF जो कटता है या PF का जो इतना संभाग उनमें रहता है क्रेडिट, तो कैसे मालूम चलेगा कि वो कट रहा है कहाँ कैसे?
2: अमित जी, अमित जी नमस्कार। आपको एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर दिया गया होगा, आपने जहाँ कहीं भी काम किया होगा तो अपने यूनिवर्सल अकाउंट नंबर के थ्रू आप एम्प्लॉई पोर्टल पे जाके EPFO के आप लॉगिन कर लें। अगर आपके पास पासवर्ड नहीं है तो जो भी आपका आधार लिंक्ड फ़ोन नंबर है उसके थ्रू OTP से आप रीसेट कर सकते हैं, और जितने जगह पर भी आपने काम किया होगा जो UAN से लिंक्ड होगा वहाँ पे आपको सारे डिटेल्स दिख जाएंगे आपके अपने पोर्टल पे ही, आपके पासबुक में भी वो दिखने चाहिए, और जहाँ जहाँ से भी आपने काम किया है अगर आपने ट्रांसफ़र नहीं करवाया है तो आप उसको एक जगह पे ट्रांसफ़र करवा लें ताकि आपके लिए बाद में सुविधा होगी।
0: जी हाँ, जैसे अब कई लोगों की शंकाएं हैं, कई जो होते हैं जो कर्मचारी हैं उनको EPF खाते UAN नंबर जो अन्य सुविधाएं उनके बारे में जानकारी नहीं होती, तो उस लिहाज से आप क्या बताना चाहेंगे कि किन किन बातों का ध्यान रखना है जब आप कोई ज्वाइन कर रहे हैं, आपको क्या कदम उठाने हैं?
2: अभी हाँ प्रणीत,
4: सो जब भी कोई अभी जो हमने अगस्त 2025 से एक प्रावधान किया है, पहले ये होता था कि जहाँ पे जिस संस्था में कोई ज्वाइन करते हैं कोई एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉयर खुद वो उनका UAN जनरेट करते थे, तो अभी हमने वो हक सिटीजन को ही दिया है, एम्प्लॉय को ही दिया है जो खुद अपने उमंग ऐप से जो आधार ऑथेंटिकेशन करके वो खुद अपना UAN जनरेट करेंगे और फिर वो एम्प्लॉयर को देंगे, तो उससे जो उसको बेसिक तो उनके हाथ में है कि उनका EPFO का अकाउंट बना है या नहीं है, अभी एम्प्लॉयर के हाथ में नहीं है, तो उसके बाद उनको ये देखना है कि उनका हर महीने पासबुक उनको चेक करना है कि हमेशा वो हर महीने उनका एवरी मंथ डिपॉजिट हो रहा है।

0: जी उड़ीसा से जुड़े हैं देशदीप दास जी। दास जी आप आवाज सुन पा रहे हैं? हेलो दास जी, आपको हमारी आवाज मिल रही है
1: जी? नमस्ते।
0: नमस्ते
1: शर्मा जी और अरोरा जी, नमस्ते
0: जी।
2: नमस्ते
1: जी। पर मेरा सवाल है, क्या नियोक्ता को अलग से रजिस्ट्रेशन करना होगा और योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कौन से दस्तावेज आवश्यक है?
2: नियोक्ता को अलग से मैं नहीं कहूँगा कि रजिस्ट्रेशन करना है, उनके पोर्टल पे जाकर और आपको केवल नियोक्ता को अपना पैन देना होता है और जो एक बैंक अकाउंट उनका देना होता है जो पैन लिंक्ड होता है, उसी को हम इनफैक्ट इस स्कीम के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन मान सकते हैं। सेपरेट रजिस्ट्रेशन बस उसी तरह का होता है। उसके बाद नियोक्ता का जो भी बेनिफिट होता है, बिकॉज पैन के साथ हम इसको लिंक करते हैं, तो अगर मान लीजिए एक ही पैन के साथ बहुत सारी संस्थाएं जुड़ी हुई हैं, तो हम उन सबों को पैन एग्रीगेट करके जो बेनिफिट देते हैं वो पैन लिंक्ड बैंक अकाउंट में देते हैं। तो बेसिकली आपको पैन टैन का डिटेल्स होगा, नियोक्ता का जीएसटी नंबर आप दे सकते हैं वहाँ पे, और साथ में बैंक अकाउंट नंबर जो कि पैन के साथ लिंक्ड हो वो एम्प्लॉयर पोर्टल पे ही देना होता है। उसके लिए आपको और कहीं अलग रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं होती है।
0: और इन्होंने दस्तावेज के बारे में पूछा था,
2: और तो कोई दस्तावेज नहीं चाहिए,
0: ज़रूरत नहीं है, बार बार बता रहे हैं आपको इस कार्यक्रम के ज़रिए। ये जो योजना है, अगर आप फॉर्मल नौकरी के हिसाब से, रोज़गार सृजन के हिसाब से बात करें, तो बहुत बड़ी 99,000 करोड़ रुपए से इसका आउटले है। मेजर अगर बात करें जो असंगठित क्षेत्र से जो आते हैं लोग, उनको संगठित क्षेत्र में लेकर जाना, तो उनके लिए योजना किस तरह से आप लाभकारी होते देखते हैं?
2: इसमें दो तीन तरह से हम इसको देख सकते हैं। सबसे पहला, जो एम्प्लॉयज़ पहली बात की 6 महीने तक को रहेंगे एक जगह, तभी उनको बेनिफिट मिलेगा, तो उनके लिए एक बहुत बड़ा इंसेंटिव है कि वहाँ रुकें। एम्प्लॉयर के लिए एक बहुत बड़ा इंसेंटिव है कि कोशिश करें कि उनके एम्प्लॉई वहीं पर रह जाएं। एम्प्लॉई को एक अच्छा एक्सपीरियंस होगा। आपको पता होगा कि जैसे नए एम्प्लॉई अगर कोई भी ज्वाइन करते हैं तो लैक ऑफ एक्सपीरियंस एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो यहाँ एक ऐसी स्कीम है जहाँ पे एम्प्लॉयर को भी फ़ायदा हो रहा है, एम्प्लॉई को भी फ़ायदा हो रहा है। जनरली अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जनरली एक कॉन्सेप्ट था इंडिया में कि अगर एम्प्लॉयर हैं तो एम्प्लॉई के अगेंस्ट हैं, एम्प्लॉई हैं तो एम्प्लॉयर के अगेंस्ट हैं। यहाँ इन दोनों को साथ में लेकर चलने की बात हो रही है।
0: और ये होता था कि आपके पास कितना एक्सपीरियंस है, भाई आप हमें नौकरी पे रखोगे तभी एक्सपीरियंस मिलेगा,
2: और जब तक नौकरी में आएंगे नहीं तब तक एक्सपीरियंस होगा नहीं। तो एक बहुत अच्छी स्कीम है जहाँ उनको एक्सपीरियंस गेन करने के लिए भी सरकार प्रोत्साहित कर रही है और एम्प्लॉयर को भी प्रोत्साहित कर रही है कि आप ऐसे लोगों को रखेंगे
0: और
2: सस्टेन करें वहाँ 6 महीने 1 साल के लिए, तो आपको भी इंसेंटिव मिलेगा
0: जी। दिल्ली से जुड़े हैं धर्मवीर जी।
3: नमस्कार मैडम, मैं धर्मवीर गांधीनगर दिल्ली से बोल रहा हूँ। नमस्कार।
2: नमस्कार
3: सर, मैं ये पूछना चाहूंगा कि हमारे देश की जनसंख्या 140 करोड़ है, तो कुछ जो एम्प्लॉयर होते हैं जो उनकी एज लिमिट निकल जाती है, तो क्या सरकार को चाहिए नहीं कि उनकी एज लिमिट को थोड़ा बढ़ा के रखना चाहिए, जिसको जरूरत है वो ही इसमें भी आ सके, और इसमें जो एम्प्लॉयर है वो कितनी इसकी सैलरी इसको डिसाइड कर सकता है?
4: तो इसमें दो पार्ट आपने पूछा है, एक तो एज का पूछा है, तो स्कीम तो जनरली युवा एम्प्लॉयज़ को प्रोत्साहन मिलता है, बट ऐसा कोई एज क्राइटेरिया नहीं है। तो अगर कोई 40 साल में भी पहली बार संगठित क्षेत्र में नौकरी पा रहा है तो वो इस बेनिफिट के लिए एलिजिबिलिटी है। एंड दूसरा
0: सैलरी का पूछा
4: उन्होंने। सैलरी हाँ, तो इसमें मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये था कि जो हाई अर्निंग हाई इनकम ग्रुप है तो उनको ये बेनिफिट ना दिया जाए, तो 1 लाख से जो नीचे उनका जिसका ग्रॉस सैलरी है वो इस स्कीम के लिए एलिजिबल है।
0: अक्सर हम देखते हैं कि जैसे लोगों को सामाजिक सुरक्षा के बारे में जानकारी नहीं होती, तो इस योजना के ज़रिए सामाजिक सुरक्षा कवरेज को किस तरह मजबूत किया जा रहा है?
4: तो इसमें जो सामाजिक सुरक्षा EPFO हम लोग 3 स्कीम चलाते हैं, तो जो भी ये PMVBRY के तहत हमसे जुड़ते हैं तो उनको ये 3 स्कीम के बेनिफिट मिलते हैं। तो इनमें से प्रोविडेंट फंड है जो कि आपके लाइफ टाइम अर्निंग्स को वेरी गुड इंटरेस्ट रेट के साथ हम लोग रिटर्न करते हैं, और इसमें बहुत सारे पार्शल विड्रॉल्स के प्रावधान हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट पेंशन एक बहुत बड़ा चीज़ है इसमें, ना केवल उनका सुपर एनुएशन पेंशन बल्कि उनके डेथ केस, इन केस ऑफ डेथ एंड डिसेबिलिटी उनको फैमिली को भी पेंशन मिलता है, एंड इंश्योरेंस का भी एक कॉम्पोनेंट है लाइफ।

0: जा सके।
1: छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं इंद्र भान जी।
2: जिला छत्तीसगढ़ से इंद्र भान सिंह बोल रहा हूँ। प्रश्न ये है,
1: सवाल पूछे
2: जी, भारत रोजगार में कौन कौन से सेक्टर है?
1: कौन कौन से
0: इसमें
1: सेक्टर्स?
0: इसमें सारे सेक्टर्स इंक्लूडेड हैं जो भी ईपीएफओ के साथ जुड़े हुए हैं। ये स्कीम ईपीएफओ के थ्रू भारत सरकार चला रही है, वो भी इसलिए यहाँ पे हमारा आइडेंटिफिकेशन यूएएन के थ्रू करते हैं, कंपनीज कवर्ड हैं, तो बेनिफिट बिकॉज आइडेंटिफाइड लोगों को जाती है। तो जितने भी ईपीएफओ के साथ जुड़े हुए संस्थान हैं उनके थ्रू ये सारा कुछ, ये सारी बेनिफिट जाती है
1: जी। अगर किसी के मन में प्रश्न है कि या कोई कर्मचारी है नियोक्ता इस योजना के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहता है, तो कोई ऐसा पोर्टल या हेल्पलाइन नंबर है जिस पर सीधा संपर्क किया जा सकता है?
3: हाँ, तो ये स्कीम के लिए एक डेडिकेटेड वेबसाइट है हमारा, pmvbrv.labor.gov.in। इसमें सारे स्कीम रिलेटेड सारे आपको विशेष उसमें मिल जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको अगर कॉल करके पूछना है तो टोल फ्री नंबर है 1-44-80-1-44-80। इसमें आप मंडे टू सैटरडे 10 to 6 आप कॉल करेंगे तो आपको किसी भी तरह की डाउट है तो आप क्लैरिफाई कर सकते हैं।
1: जी हाँ, 1-44-80 हेल्पलाइन नंबर है, टोल फ्री नंबर है, आप इस पर संपर्क कर सकते हैं और अपनी शंकाओं का जो भी है निवारण पा सकते हैं। पूर्णेंदु जी, आपसे एक जाते जाते यही आखिरी प्रश्न पूछना चाहूँगी कि ईपीएफओ के आंकड़ों के आधार पर देखें तो पिछले कुछ वर्षों में औपचारिक रोजगार में क्या परिवर्तन देखने को मिले?
0: मैम, हमारे साथ काफ़ी लोग जुड़े हैं और ईपीएफओ के आंकड़े बताते हैं कि भारत में एक बहुत मेजर चेंज आ रहा है
1: जी।
0: वो जो इनफॉर्मल इकोनॉमी हुआ करती थी वो काफ़ी फॉर्मलाइजेशन की ओर बढ़ रही है और हमें उम्मीद है कि अगले कुछ दिनों में बिकॉज ऑफ दिस स्कीम हम ऐसे उम्मीद करते हैं कि काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी और हम सबों को एक फॉर्मल इकोनॉमी, एक विकसित भारत देखने को मिलेगा।
1: जी हाँ, हमें विश्वास है कि आज की चर्चा से युवाओं को रोजगार, सामाजिक सुरक्षा और प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के बारे में उपयोगी जानकारी मिली होगी। धन्यवाद आप दोनों का, पूर्णेंदु जी और प्रणय जी, आप स्टूडियो में आए और हमारे साथ चर्चा की। श्रोताओं, आपका भी धन्यवाद करते हैं जो हमारे साथ जुड़े। अगले सप्ताह फिर से मुलाकात होगी सोमवार को एक नए मुद्दे के साथ। तब तक प्रियंका अरोड़ा को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
0: नमस्कार।
3: नमस्कार।

0: नमस्कार।
1: मीडियम वेव 330.03 मीटर पर यह आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। से कुछ ही देर में आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम। पहले सुनते हैं जगजीत सिंह की आवाज़ में फिल्म तुम बिन से यह गीत।

अभी आप सुन रहे थे जगजीत सिंह की आवाज़ अभी आप सुन रहे थे जगजीत सिंह की आवाज़ में फिल्म तुम बिन से यह गीत। आइए सुनते हैं हरिहरन और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ में फिल्म हम दिल दे चुके सनम से अगला गीत।

अभी आप सुन रहे थे कुमार सानू की आवाज़ में, माफ़ करिएगा, अभी आप सुन रहे थे रूप कुमार राठौर की आवाज़ में तुमसा नहीं देखा से इस फिल्म से। आइए सुनते हैं कुमार सानू की आवाज़ में फिल्म जख्म से अगला गीत।

0: अभी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के अलीगंज इलाके में आज दोपहर आग दुर्घटना में 16 से 25 वर्ष की आयु के अधिकांश छात्र सहित 15 लोगों की मौत हो गई और 6 छात्र घायल हो गए। उन्हें लखनऊ के केजीएमसी में भर्ती कराया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। शिवसेना नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आज घोषणा की कि शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के 6 लोकसभा सांसद उनकी पार्टी शिवसेना में शामिल हो गए हैं। श्री शिंदे ने इन सभी सांसदों का पार्टी में स्वागत किया। मुंबई में संवाददाताओं से बातचीत में श्री शिंदे ने कहा कि आज का दिन शिवसेना के लिए ऐतिहासिक है।
2: आज का दिन शिवसेना के लिए ऐतिहासिक दिन है। हमारे 6,000 शिवसेना में शामिल हुए हैं। इससे शिवसेना की ताकत बढ़ रही है। शिवसेना सेकंड लार्जेस्ट पार्टी महाराष्ट्र में हो चुकी है और ये डबल इंजन की सरकार है। महाराष्ट्र को आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी बहुत बड़े पैमाने पे सहयोग कर रहे हैं, इसलिए विकास हो रहा है।
1: पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। रोजगार और जन कल्याण को बढ़ावा देते हुए राज्य के विभिन्न विभागों में 1,00,000 खाली पदों पर नियुक्ति की घोषणा की गई है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज नई दिल्ली में पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के संवादात्मक सत्र में भाग लिया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शेखावत ने कहा कि पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र का विकास लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन का साधन है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार रोजगार, विकास और समृद्धि के नए अवसर पैदा कर रही है। भारतीय रेलवे ने पूर्वी तट के रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच की मंजूरी दे दी है। इससे सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार होगा। रेल मंत्रालय ने बताया कि इस परियोजना में पूर्वी तट रेलवे के 6 महत्वपूर्ण खंड शामिल हैं। इन मार्गों पर कवच की स्थापना से स्वचालित रेल सुरक्षा और किसी भी तरह की टक्कर से बचाव की क्षमता प्रदान करके रेलगाड़ी संचालन में उच्च स्तर की सुरक्षा प्राप्त करने में मदद मिलेगी। केंद्र सरकार ने आज सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने उन निजी छात्रों के मूल्यांकन

0: के लिए एक नई नीति बनाई है जो हाल ही में ईरान अमेरिका संघर्ष के कारण खाड़ी देशों में कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा रद्द होने से प्रभावित हुए थे। न्यायमूर्ति SVN भट्टी और विपुल M पंचोली की पीठ को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि क्षेत्रीय संघर्ष के कारण खाड़ी देशों में परीक्षा रद्द होने से प्रभावित छात्रों की चिंताओं को दूर करने के लिए एक नई अखिल भारतीय नीति तैयार की गई है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने प्रधानमंत्री और लेबर पार्टी के नेता पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। अपनी ही पार्टी के भीतर बढ़ते दबाव के बीच उन्होंने डाउनिंग स्ट्रीट में अपना कार्यकाल समाप्त किया। श्री स्टार्मर ने कहा कि सितंबर में संसद के सत्र के शुरू होने से पहले जब तक नया नेता नहीं चुन लिया जाता तब तक वे अपने पद पर बने रहेंगे।
1: Every decision I've taken,
2: मैंने जो भी फैसले लिए हैं उनमें हमेशा अपने देश को प्राथमिकता दी है जिससे मैं प्यार करता हूं। इसीलिए मैं लेबर पार्टी के नेता का पद छोड़ रहा हूं। मैंने आज सुबह ब्रिटेन नरेश से बात करके उन्हें अपने फैसले के बारे में बता दिया है। अगर मुकाबले की स्थिति बनती है तो निश्चित रूप से सितंबर में संसद सत्र शुरू होने से पहले पार्टी का नेता चुन लिया जाए। प्रक्रिया पूरी होने तक मैं प्रधानमंत्री के पद पर बना रहूंगा।
0: जर्मनी के सुहल में ISSF जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में आज भारत के प्रीतम केंद्रे ने 10 मीटर एयर राइफल पुरुष स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। वहीं 25 मीटर पिस्टल टीम स्पर्धा में महिलाओं और पुरुषों ने कांस्य पदक जीते। प्रतियोगिता में भारतीय निशानेबाजों ने आज अलग अलग स्पर्धाओं में 4 पदक भी जीते। भारत 5 स्वर्ण 1 रजत और 6 कांस्य पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अभिनीत शुक्ला। Fifteen people, most of them students, lost their lives in a tragic fire incident in the Aliganj area of Lucknow in Uttar Pradesh this afternoon. The tragedy occurred when a massive fire broke out at an animation coaching center located inside a commercial complex. Several injured persons have been admitted to nearby hospitals. Chief Minister Yogi Adityanath has said a high-level committee comprising the Director General of Police and the Additional Chief Secretary Home will investigate the incident and those found responsible would face strict action. President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi have expressed grief over the loss of lives in the fire. In a social media post, Mr. Modi announced an ex gratia of 2 lakh rupees from the Prime Minister's National Relief Fund for the next of kin of each deceased. The injured will receive 50,000 rupees each. Prime Minister Narendra Modi has stated that India is a fast-growing and credible economy and has become a reliable power. Mr. Modi said this while addressing a summit organized by a private media house in New Delhi today. He noted that several initiatives have been launched in the last 12 years with the motive of Nation First. Mr. Modi asserted that Nation First is India's highest guiding principle today.
4: Bharat jo kar raha hai, wo aane wale 1000 varsh ka future likhne wala hai. और यही दुनिया के लिए सबसे बड़ी भारत की गारंटी है। भारत फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी है, एक क्रेडिबल इकोनॉमी भी है।
3: द प्राइम मिनिस्टर सेड द कंट्री हैज विटनेस्ड एंड एंड्योर्ड साइकल्स ऑफ ग्रोथ एंड डिस्ट्रक्शन। ही एडेड दैट इंडिया कैरीज द मेमोरी चिप ऑफ एजेस विद इन इट्स कॉन्शियसनेस। मिस्टर मोदी स्टेटेड दैट इंडियाज एक्शंस आर शेपिंग द फ्यूचर फॉर द नेक्स्ट 1000 ईयर्स। Highlighting the achievements of the NDA government over the past 12 years, Mr. Modi said, mobile connectivity has been extended to approximately 45,000 villages across the country. He also mentioned that around 75,000 banking correspondents and over 6,000 post offices were established. Shiv Sena leader and Maharashtra Deputy Chief Minister Eknath Shinde today announced the induction of 6 Lok Sabha MPs from the Shiv Sena UBT faction into the party. Addressing a press conference in Mumbai, Mr. Shinde welcomed the MPs Sanjay Dina Patil, Sanjay Deshmukh, Sanjay Jadhav, Bhav Saheb Bakachore, Nagesh Patil Ashtikar and Om Prakash Rajanimbalkar into Shiv Sena. Mr. Shinde said, the induction of the 6 MPs marked the second phase of the movement that began in June 2022 when 40 Shiv Sena MLAs rebelled.